0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 29 जुलाई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का स्वागत है। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।
3: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने की दिशा में कल राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा बजट में घोषित वित्तीय, आर्थिक और सार्वजनिक वित्त से जुड़े कदमों को लागू करना है। फाइनेंस बिल के तहत 26 कानूनों और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल के तहत 58 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इन दोनों विधेयकों पर संसदीय बहस शुक्रवार 31 जुलाई से शुरू होगी। पूर्व ब्रह्म बैंक के साथ हुई 80 मिलियन रुपए के धोखाधड़ी के मामले में सुनाई गई सजाओं के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन द्वारा दायर अपील पर 17 मई 2027 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष ने इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन द्वारा चंद्र प्रकाश दीप, मोहम्मद सैफुल्लाह मौलाबख्श और शेख मोहम्मद कदाफी जानी को दी गई सजाओं को चुनौती दी है। वहीं इसी मामले में दोषी ठहराए गए धर्मेंद्र मल्लू ने भी अपनी ओर से अपील दायर की। उनकी अपील पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। दोषियों पर कई जुर्माने लगाए गए हैं। अपनी अपील में डीपीपी का कहना है कि इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने कथित मास्टरमाइंड की पहचान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। गुरु पूर्णिमा आज है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु ही अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कारों से जीवन को सही दिशा देते हैं। इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें ज्ञान, विनम्रता और सदाचार के मार्ग पर चलने की

0: प्रेरणा देती है। और विदेश में जापान में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। कुमामोटो इलाके के एक मॉल के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पास के एक कारखाने की चिमनी भी ढह गई जिसके नीचे कई लोग दब गए। अन्य इलाकों में भी कई लोग लापता हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 की मापी गई। भारी माली नुकसान हुआ है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद भी पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश होगी। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से पूर्व की ओर से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह और आज दोपहर बाद को दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 और अधिकतम 21 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:41 पर, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: घोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
4: बुधवार 29 जून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ये RM Free है पर वीजा का साथ है उर्दू तशरीयात बनामे सबल खैर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ी सामीन, ये वो लम्हात है जब दिल जिक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताजगी नसीब होती है। तो आइए मज़ी सामीन इससे रू परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।

तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है, तुम उनको देखोगे कि वो उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए, सो करीब है कि अल्लाह फतह भेजे या अपने हाथ से कोई और अम्र नाजिल फरमाए, फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पेशेमान होकर रह जाएंगे।

ऐ ईमान वालों, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखे, और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों, अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है।

मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही है जो नमाज पढ़ते और जकात देते और अल्लाह के आगे झुकते हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है।

ऐ ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो।

और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या दे?

कहते हो सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं।

कहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं।

और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं, और जिन बातों को ये छुपाते हैं अल्लाह उनको खूब जानता है। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं, बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। भला इनके मशायख और उलमा इन्हें गुनाह की बातें कहने और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं।

और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है, इन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने के सबब इन पर लानत हो। असल यह है कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए नबी, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी कयामत के दिन तक डाल दी है। जब कभी इन्होंने लड़ाई की आग जलाई, अल्लाह ने उसको बुझा दिया, और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता।

अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह दूर कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते, और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम करते तो उन पर रिस्क मैं की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग मियाना राव हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके आमाल बुरे हैं।

ऐ पैगंबर, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाए रखेगा, बेशक अल्लाह मुनकिरों को हिदायत नहीं करता। कहो कि ऐ अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, किसी भी राह पर नहीं हो सकते। और ये कुरान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, इससे उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र और बढ़ेगा, तो तुम कौम कुफार पर अफसोस न करो।

0: जो लोग अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान लाएं और अमल नेक करें, ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको कयामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे।
1: सदकल्लाहुल अजीम। मजीद सामीन, कुरान मजीद की तिलावत खत्म नहीं होती बल्कि अपने असरात दिलों में छोड़ जाती हैं। उसकी हर आयत एक रोशनी, हर लफ्ज एक रहनुमाई और हर पैगाम बन नए मोमिन के लिए नई जिंदगी का उन्वान बन जाता है। मज़े सामीन, यही वसातें होती हैं। जब जबान खामोश हो जाए तो दिल खुद ब खुद अपने परवरदिगार की अजमत का इकरार करने लगता है, और जब दिल शुक्र से भर जाए तो फिर उसके जज्बात हम की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो आइए मज़ीद सामीन, इससे रूहानी कैफियत को बरकरार रखते हुए अपने रब करीम की बारगाह में अकीदत और सपास के फूल निछावर करते हैं। समात फरमाइए ये खूबसूरत हमदे बारी ताला।

0: तेरी जात पाक है ऐ खुदा, तेरा नाम रब जलील है। ये धमाका कुन फयकुन था कि ये कायनात सवर गई। ये हवा, ये आग, ये आब गुल तेरी हिकमतों की दलील हैं। कई आसमान बिखर गए मगर एक ज़मीन निखर गई। ये और एम फ्री है, परवीज़ा का साथ है उर्दू नशरियात सब अल खैर में दिन के 7 बजे तक। मजी सामीन, तारीख के बाज अबवाब सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि दिल पर रकम हो जाते हैं। अकीदतमंद सामीन, गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हम उस दर्दनाक मगर ईमान अफरोज सफ़र में एक साथ शरीक रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले की आखिरी नशिश में दाखिल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान का इख्तिताम नहीं बल्कि एक ऐसी अमानत है जिसे हमें अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा रखना है। तो आइए मज़े सामीन समात फरमाइए आज का ये बयान।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफका पर जुल्म सितम करने वाले जालिमों के अंजाम के बारे में सुना था। आज करबला के बाद के कुछ अदवार यानी दौर और खुलाफा के बारे में सुनेंगे कि करबला के वाकये के बाद चंद ऐसे दौर गुजरे जो खलीफा आए वो कैसे थे और करबला के बाद किस दौर में जाकर इस्लाम सही मायनों में स्टेबल हुआ। हमने सुना था कि यजीद के बाद मरवान और मरवान के मरने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा बना था। अब्दुल मलिक बिन मरवान 60 हिजरी में पैदा हुआ था और अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में अपने बाप मरवान ही की ज़िंदगी में वली अहद बन गया था यानी हाकिम बन गया था। इसकी पर्सनैलिटी के कुछ अच्छे पहलू भी हैं और कुछ बुरे, बल्कि अजीब और ख़तरनाक भयानक कहा जाए तो भी मुबालगा नहीं होगा। दरअसल ये खलीफा बनने से पहले अच्छा इंसान मारूफ था यानी मशहूर था। इसके बारे में मदीने में ये कहा जाता था कि मदीने में कोई जवान अब्दुल मलिक बिन मरवान से बढ़कर चालाक फ़िक्ह यानी दीनी मसाइल का जानने वाला, इबादत गुजार और कुरानी उलूम को जानने वाला नहीं है। इसके इल्म और फुकाहत की बुनियाद पर इसके बारे में बाज़ सहाबा के तारीफ़ी अकवाल भी मिलते हैं मगर अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर को ही नहीं जानता। तारीख की किताबों में आता है कि जब मुस्लिम बिन उकबा मदीने में आया तो वो पहले मस्जिद नबवी में आकर अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास बैठ गया तो अब्दुल मलिक ने उससे कहा कि तू भी इस लश्कर से है। उसने जवाब दिया हाँ। अब्दुल मलिक ने कहा कि तू बर्बाद हो जा, तू नहीं जानता तू ऐसे शख्स के खिलाफ हथियार उठाने का इरादा कर रहा है जो इस्लाम के जाहिर होने के बाद सबसे पहले पैदा हुआ। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के बारे में कह रहा था कि आप वो पहले बच्चे थे जिनकी विलादत मदीना हिजरत करने के बाद हुई थी और अब्दुल मलिक ने ये बात भी इसलिए कही थी क्योंकि मुस्लिम बिन उकबा पहले ही बता चुका था कि मदीने के बाद मुझे अब्दुल्ला बिन जुबैर से जंग करने जाना है। अब्दुल मलिक ने मजीद कहा कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हाकिम बनाया था। अगर तू दिन के वक्त इनके पास जाए तो इन्हें रोज़ादार पाएगा, अगर रात के वक्त जाए तो नमाज में मशगूल देखेगा। अगर तमाम लोग इसके कत्ल पर इत्तेफाक कर लें तो खुदा उन सबको ओंधे मुंह दोजख में डालेगा। देखें, ये अब्दुल मलिक है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के फ़ज़ाइल सुना रहा है, लेकिन यही अब्दुल मलिक जब अपने बाप के मरने के बाद ये खलीफा बना तो इसी ने अपनी खिलाफत को बचाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ के ज़रिए आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया। एक यूसुफ नामी यहूदी मुसलमान हुआ था और वो पुरानी आसमानी किताबों का इल्म रखता था। एक दिन वो मरवान के घर के पास से गुजरा और कहने लगा कि उम्मत मुहम्मदिया को इस घर वालों से बहुत सख्ती पहुँचेगी। ये शख्स अब्दुल मलिक बिन मरवान का बड़ा अच्छा दोस्त था। एक दिन उसने अब्दुल मलिक के कंधों पर हाथ मारा और उससे कहा कि जब तू बादशाह बन जाएगा तो उम्मत मुहम्मदिया के मामले में खुदा से डर कर काम करना। अब्दुल मलिक ने कहा छोड़ो भी, मैं कहाँ और वो बादशाहत कहाँ। उसने कहा मैं तुझे फिर कहता हूँ, इनके मामले में खुदा से डरना। जब यजीद ने अहले मक्का पर अपनी फ़ौज भेजी तो अब्दुल मलिक ने कहा खुदा ना करे कि मैं कभी हरम पर फ़ौज कशी करूँ। यूसुफ ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि घबरा नहीं, तेरा लश्कर जो वहाँ जाएगा वो इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। इसके दौर में मक्का मुकर्रमा पर जो हमले किए गए, पत्थर बरसाए गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और दीगर अहले मक्का शहीद हुए, वो सब इसके दौर में इसकी खिलाफत में हुआ था। अब्दुल्ला बिन जुबैर के शहीद किए जाने के बाद इसने 75 हिजरी में मदीने में खुतबा पढ़ा तो कहा, मैं उस्मान की तरह कमज़ोर खलीफा नहीं हूँ और ना मुआविया की तरह नाज़ो नेमत का असर दिखाने वाला हूँ और ना यजीद की तरह कमज़ोर राय रखने वाला हूँ। मुझे तो तलवार के अलावा और कोई दवा नहीं आती। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूँगा मगर मेरी मुखालिफत करना बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज के बाद तुम में से जिस शख्स ने मुझे खुदा से डरने के लिए कहा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये कहकर वो मिंबर से उतर गया। इसी के दौरे हुकूमत में हज्जाज ने काबा शरीफ को डिमोलिश करके इस सूरत में बना दिया जिस सूरत में काबा आज है। और इसी हज्जाज के हुक्म पर एक शख्स ने हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक जहर में भुजे हुए खंजर से ज़ख्मी किया जिससे आप बीमार होकर 74 हिजरी में फौत हो गए। इसके बाद हज्जाज ने मदीने में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम को तंग किया। ये सब इसी के दौर में हो रहा था लेकिन इसके दौरे खिलाफत के कुछ अच्छे काम भी मशहूर हैं। जैसे इसी ने सबसे पहले दीनार बनवाए और उन पर कुरान मजीद की आयात लिखवाई। इसी ने सबसे पहले रजिस्टर फारसी से अरबी में ट्रांसलेट करवाए। काबे पर रेशम का कपड़ा भी सबसे पहले इसी ने लटकवाया। लेकिन कितने ही अच्छे काम क्यों ना हो, उलमाए कराम फरमाते हैं अगर अब्दुल मलिक के गुनाहों में सिर्फ हज्जाज को मुसलमान और सहाबा पर हाकिम बनाना ही होता कि जिसने इनकी तौहीन और जिल्लत और कत्ल अजियत का कोई मौका नहीं छोड़ा और बेशुमार सहाबा कराम ताबईन को शहीद जख्मी अजियत पहुंचाई थी, सिर्फ इसका यही जुर्म ही अल्लाह पाक से इसकी शदीद नाराज़गी और अजाब के लिए काफ़ी है। यहाँ तक कि मरते वक्त इसने अपने बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक को बुलवाया, उसे वली अहद मुकर्रर किया यानी उसे हाकिम बनाया और उसे नसीहत करते हुए कहा कि हज्जाज की इज्जत करना क्योंकि उसने तुम्हें मिंबरों पर चढ़ने के मर्तबे तक पहुँचाया, उसको अपने दाएं हाथ और तलवार समझना, वो तुझे दुश्मनों से पनाह में रखेगा, उसके खिलाफ किसी की बात ना सुनना, उसकी मोहताजी तुझे ज़्यादा है बजाय उसको तेरी मोहताजी हो, जब मैं मर जाऊँ तो लोगों से बेयत ले लेना और जो शख्स इनकार करे उसे कत्ल कर देना। इसकी मौत के बाद इसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा बना। 36 साल की उम्र में दमिश्क में तख्ते खिलाफत पर बैठा। ये चूंकि नहायत नाजो नेमत से पला हुआ था लिहाजा ये पढ़ने लिखने में बहुत ही वीक था। अब्दुल मलिक के कफन दफन से फारिग होकर इसने जामा मस्जिद दमिश्क में आकर खुतबा दिया जिसमें इसने लोगों को धमकी देते हुए कहा कि याद रखो जो मेरी नाफरमानी करेगा उसका सर तोड़ दिया जाएगा और जो खामोश रहेगा वो अपने मर्ज में खुद ही हलाक हो जाएगा यानी वो घुट घुट कर खुद ही मर जाएगा। इसके बारे में तारीखी वाकियात में आता है कि अपनी मुखालिफत करने वालों के लिए ये बहुत जालिम और जाबिर था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा करते कि वलीद ने शाम की, हज्जाज ने इराक की, उस्मान बिन जब्बारा ने हिजाज की और कुर्रा बिन शरीक ने मिस्र की ज़मीन को जुल्म से भर दिया। लेकिन इसके दौर में भी कुछ अच्छे काम हुए। इसी के दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और हिंद की तरफ फतूहात हासिल की। वलीद ने अपने चचाजाद भाई उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मदीने मुनव्वरा का आमिल व हाकिम मुकर्रर किया। इसने जामा मस्जिद दमिश्क की तौसी व तामीर की और इसी के दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह के अंडर में मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को नए सिरे से तामीर कराया गया और अजवाज मुतहरात के जो रूम्स थे उनको भी मस्जिद में शामिल करके इसको मजीद वसी किया गया। वलीद ने लोगों की वेलबींग के लिए बहुत अच्छे काम किए। सड़कें निकलवाईं, शहरों और कस्बों में मदरसे बनवाए, मुसाफिर खाने बनवाए, कुएं खुदवाए, क्लिनिक्स खुलवाए, रास्तों की सेफ्टी और मुसाफिरों की हिफाजत के अरेंजमेंट किया। मदीने मुनव्वरा में पानी की कमी थी, वहाँ एक नहर लाकर अहले मदीना की इस तकलीफ़ को दूर किया। मोहताज खाने कायम किए, रियाया की तकलीफ़ दूर करने और लोगों को राहत पहुँचाने का इसको बहुत ख्याल था। इसके अहद हुकूमत में हर तरफ फतूहात का सिलसिला बराबर जारी रहा और कोई अंदरूनी बगावत और फितना फसाद जो काबिल तस्करा हो नहीं हुआ। वलीद ने फुकरा और उलमा के वजीफे इतने ज़्यादा मुकर्रर किए कि वो सब खुशहाल रहने लगे। इसकी मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। इसे इसके बाप अब्दुल मलिक ने ही वलीद के बाद वली अहद मुकर्रर किया था यानी हाकिम मुकर्रर कर दिया था। सुलेमान अपने भाई वलीद से उम्र में 4 साल छोटा था। वलीद की वफात के बाद इसके हाथ पर जमादियुस्सानी सन 96 हिजरी में बैत खिलाफत हुई। सुलेमान अदल इंसाफ और जिहाद का शौकीन था। इसकी खूबियों के बारे में इतना ही कहना काफ़ी है कि इसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपना वजीर और अपना मुशीर बनाया हुआ था और इन्हीं के मशवरों पर चलता था। यही वजह थी कि इसके अखलाक व आदात में अच्छी खूबियाँ पैदा हो गई थी। हजाज के आमिलों को इसने माजूल कर दिया था और इराक के कैद खानों में जितने शख्स भी कैद थे उन्हें रिहा कर दिया था। अहदे बनु उमैया में एक बुरी रस्म जारी हो गई थी कि वो कॉमनली नमाज लेट करके आखिर वक्त में पढ़ते थे। सुलेमान अब्दुल मलिक ने इस रस्म को मिटाकर नमाज अव्वल वक्त में पढ़वाने की तरकीब शुरू की। गानों वगैरह से इसको सख्त नफरत थी, चुनाचे इसने गाने बजाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसकी खुराक बहुत ज़्यादा थी। एक मरतबा ये 70 अनार, बहुत सी किशमिश, 6 महीने की उम्र का एक बकरा और 6 मुर्ग खा गया और ये बहुत खूबसूरत और हैंडसम शख्स था। इसने एक दिन आईना देखा तो अपनी जवानी और हुस्न जमाल को देखकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान हयादार थे और मुआविया हलीम यानी बुर्दबार थे और अब्दुल मलिक सियासत करने वाला था और वलीद जालिम था और मैं जवान बादशाह हूँ। इस बात को अभी 1 महीना ही नहीं गुजरा था कि ये मर गया। इसकी वफात जुम्मे के दिन 10 सफर 99 हिजरी में हुई। इसकी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा काम ये था कि इसने अपने बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाही ताला अलैह को खिलाफत के लिए नॉमिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से इस्लामी तारीख का एक यादगार दौर और एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा हुई थी। ये वही दौर था, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम को उनके हुकूक मिलना शुरू हुए, उनके लिए आसानियां पैदा हुई। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की वफात के बाद जब आप मुसलमानों के खलीफा बने तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने थी वो ये थी कि उमवी हुकूमत को खिलाफत राशिदा में बदला जाए, यानी सियासी निज़ाम को उसी पैटर्न पर लाया जाए जिस पैटर्न पर खुलफाए राशिदीन के दौर में था। लेकिन आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा था, आइडिया था कि जब आप पूरे सिस्टम को छेड़ेंगे, पूरे सिस्टम में चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे तो आपकी मुखालिफत में एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने पक्का इरादा कर लिया था, अज़म कर लिया था कि आप निज़ाम खिलाफत में ज़रूर तब्दीली लाकर इसकी असल पर उसको वापस लौटाएंगे। आपने इतनी बड़ी चेंजिंग लाने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए ये जानने से पहले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ जानते हैं। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की वालिदा हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की पोती थी। आप बड़े ही आबिद ज़ाहिद, बुर्दबार, आजी और इंकिसारी करने वाले, खौफ खुदा से लबरेज, अदल व इंसाफ कायम करने वाले, भलाई और नेकियों को महबूब रखने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से मना करने वाले थे। आपका शुमार उन खलाफा में होता है जो खलीफा होने के बावजूद शान व शौकत और ऐश व इशरत की ज़िंदगी से दूर रहे। आपने सिर्फ 29 माह के अरसे में दुनिया के एक बड़े हिस्से में खुशहाली का एक ऐसा इस्लामी इनकलाब बरपा किया जिसकी मिसाल सदियां गुजर जाने के बाद भी नहीं मिलती। आपने अहद खुलफाए राशिदीन की यादें ताज़ा की। आपको उम्र सानी यानी सेकंड उम्र भी कहा जाता है। बचपन में किसी चोट के लग जाने की वजह से आपके चेहरे पर एक दाग आ गया था। हज़रत उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला फरमाया करते कि मेरी औलाद से एक ऐसा शख्स होगा जिसके चेहरे पर दाग होगा और वो ज़मीन को अदल से भर देगा। जब आप खलीफा बने तो उस वक्त सोसाइटी की हालत बहुत बुरी थी। हुक्मरानों ने लोगों की जायदादों पर ना हक कब्जे किए हुए थे। इस मामले में बेहतरी लाने के लिए आपके सामने कुछ अहम टास्क थे। इनमें 2 टास्क ये भी थे कि लोगों की जो ज़मीनें हैं वो रियासत ने जो कब्ज़ा किया हुआ था वो छुड़ा कर वापस लोगों में तकसीम करनी है, और नंबर 2 बाग फिदक, ये वो बाग था जो जिसकी आमदनी जो आती थी, जिसकी जो कमाई आती थी वो अहले बैत में तकसीम होती थी। उसको कुछ उमवी खुलफा ने अपनी जागीर बनाया हुआ था, उसको उनसे छुड़ा कर उसे उसी जगह इस्तेमाल करना है जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर और दीगर खुलफाए राशिदीन ने इस्तेमाल फरमाया, यानी इसकी आमदनी पहले की तरह अहले बैत में तकसीम हो। आपसे पहले कुछ बादशाह ने रियाया के माल और उनकी प्रॉपर्टी पर जालिमाना कब्जा कर लिया था। आपने उस माल और उस प्रॉपर्टी को उनके

के असल ओनर्स तक वापस करने की ठान ली थी। चुनाचे इस सिलसिले में आपने सबसे पहले पहला स्टेप जो लिया वो अपनी जात और अपनी फैमिली से स्टार्ट किया। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी जो आपको विरासत में मिली थी। आपके चाहने वालों ने आपको मशवरा दिया कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस दे देंगे तो आप अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ेंगे। तो आपने बड़े कमाल की लाइन फरमाई, फरमाया कि मैं इनको अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ। इसके बाद आपने बनू मरवान यानी मरवान की औलादों को जमा किया और उनसे फरमाया, बनू मरवान तुमको शर्फ और दौलत का वाफिर हिस्सा मिला, यानी बहुत ज़्यादा दौलत मिली है। मेरे ख्याल में जो उम्मत का जो प्रॉपर्टी है, जो हिस्सा है दौलत का, उसका हाफ या हाफ से भी ज़्यादा तुम्हारे कब्जे में है। ये लोग इशारा समझ गए, लिहाजा इन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज से मुखातिब होकर कहा, खुदा की कसम जब तक हमारे सर तन से जुदा ना होंगे उस वक्त तक हम ये प्रॉपर्टी वापस नहीं करेंगे। खुदा की कसम हम अपनी औलाद को मुफलिसी की हालत में नहीं छोड़ेंगे। आपने बनू मरवान की जबानों से ये अल्फाज सुने तो फरमाया, खुदा की कसम अगर इस हक की अदायगी में तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम सबको जलील और रुसवा करके छोड़ूंगा। इसके बाद आपने आम मुसलमानों को मस्जिद में जमा होने का हुक्म दिया। जब अक्सर लोग जमा हो गए तो आपने उनके सामने स्पीच दी जिसमें कहा कि कुछ उमवी खुलफा हम खानदान वालों को ऐसी प्रॉपर्टियां और अतियात दिए हैं, खुदा की कसम, जिनके देने का ना उनका कोई हक था और ना हमें उनके लेने का कोई हक था। अब मैं इन सब को उनके असली हकदारों को वापस करता हूं और अपनी जात और अपने खानदान से सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। इस तकरीर के बाद आपने अपने एक गुलाम को हुक्म दिया कि वो शाही डॉक्यूमेंट लाए जिसमें प्रॉपर्टीज की अलॉटमेंट के अहकाम थे। चुनाचे गुलाम डॉक्यूमेंट ले आया, डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया जा रहा था और आप उन डॉक्यूमेंट्स को कैंची से काट कर फेंकते जा रहे थे। जोहर की नमाज तक आपने तमाम प्रॉपर्टीज असल हकदारों को वापस कर दी, यहाँ तक कि एक नगीना भी आपने अपने पास नहीं रहने दिया। और बागी फिदक के मामले में आपने क्या किया, ये बताने से पहले आपको बागी फिदक के बारे में बताते चले कि ये क्या है। फिदक असल में खैबर का एक इलाका था, उसमें खजूर के बागात और चश्मे थे। ये इलाका कुफार ने बगैर लड़ाई के मुसलमानों के हवाले कर दिया था। इसकी इनकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपनी अजवाज मुताहरात रदी अल्लाहु ताला अन्हुम के साल भर के अखराजात और फुकराओ मसाकीन और आम मुसलमानों की हाजात में सर फरमाते थे। मेहमान और बादशाहों के सफीर की मेहमान नवाजी भी इसी इनकम से होती थी। जिहाद के सामान, तलवार, ऊँट और घोड़े वगैरह भी इसी से परचेज किए जाते थे और असहाब सुफा की नीड्स भी इसी से पूरी फरमाते थे। जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो आपने बनू मरवान से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बागे फिदक था जिसकी इनकम से आप बनू हाशिम के बच्चों की खबरगिरी किया करते थे और इनकी बेवाओं का निकाह कर दिया करते थे। फिर हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में भी इसी तरह रहा, लेकिन फिर मरवान ने इसे अपनी जागीर में दाखिल कर लिया और अब वो मुझे विरसे में पहुँचा है। अब तुम गवाह रहो कि मैं इसको इसी हालत में छोड़ दिया जैसे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, यानी ये अहले बैत से मुतालिक वो हक था जो करबला के बाद उनसे छीन लिया गया था और उन्हें वापस लौटाया गया। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पहले लोग दीन से बहुत दूर हो गए थे। शराब नोशी आम होने के अलावा बहुत से नाजायज काम मुमलिकत इस्लामिया में राइज हो गए थे। आपने रिलीजियस, गवर्नमेंटल और सोशल सेक्टर्स में बेहतरी लाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठाए। आपने दीन इस्लाम की दावत आम करने के लिए तिब्बत, चीन और दूर दराज के ममालिक में डेलीगेशन रवाना किए और वहाँ के हुक्मरानों को दावत इस्लाम पेश की, जिसके असर से ईस्ट और वेस्ट में कई बादशाहों और राजाओं ने इस्लाम कबूल किया। आपने मजबूरों, मजलूमों और महरूमों को उनकी वो जायदादें वापस दिलाईं जिन्हें शाही ख़ानदान के अफराद, हुकूमती अहलकार और दीगर अमरा ने अपने कब्जे में ले रखा था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पहले खुलफाए बनू उमैया के दौर में बैतुल माल में बहुत खराबियां पैदा हो गई थी। आपने बैतुल माल की इस्लाह के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए। सबसे पहला काम आपने किया कि आपके दौरे खिलाफत से पहले तमाम आमदनियाँ, टैक्सेस और सदकात वगैरह एक जगह जमा होते थे, उनका अलैहदा से हिसाब नहीं रखा जाता था। आपने हुक्म दिया कि हर किस्म की इनकम अलग अलग जमा की जाए और उनका अलैहदा हिसाब रखा जाए। नंबर दो, आपसे पहले बैतुल माल से शाही ख़ानदान का वजीफा मखसूस था, आपने उसको कम्प्लीटली बंद कर दिया। नंबर थ्री, आपसे पहले के खुलफा शायरों को जो उनकी मदहा में कसीदे वगैरह लिखा करते थे उन्हें बैतुल माल से इनामात दिए जाते थे, आपने ये सब इनामात और वजाइफ बंद करवा दिए। नंबर चार, आपसे पहले खुलफा जब इशा और फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ

तरफ जाते थे तो एक आदमी रोशनी के लिए शमा लेकर साथ चलता था और शमा का खर्चा बैतुल माल पर पड़ता था। बैतुल माल की इस्लाह, हिफाजत और निगरानी का आप सख्ती से नोटिस लेते थे और उसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार यमन के बैतुल माल से एक दीनार कम हो गया तो आपने बैतुल माल के ऑफिसर को लिखा कि मैं तुम्हारी अमानत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन तुम्हारी लापरवाही और गफलत को जुर्म करार देता हूँ। मैं मुसलमानों के माल

0: हूं तुम पर फर्ज है कि कसम खाओ कि तुम्हारा इस नुकसान में कोई हाथ नहीं है। डिफरेंट किस्म के टैक्सेस किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी यानी अहम होते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं उसमें। इन्हीं पर मुल्क और हुकूमत की खुशहाली डिपेंड करती है। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे हुकूमत से पहले इन तमाम टैक्सेस का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और रियाया के लिए ये टैक्सेस देना बोझ बन गए थे और इनमें गैर ज़रूरी टैक्सेस भी लगा दिए गए थे। आपने इस जुल्म के दरवाजे को भी बंद किया। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा को जमा करने का एहतमाम फरमाया। शराब नोशी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई, मसलन शराबियों को सख्त सजाएं दी। आपको सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, इतना लगाव था कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नाज़ेबा अल्फाज बकने वालों को सख्ती से मना फरमाया। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों को आपने कोड़े लगवाए। आपने वेलफेयर्स के भी बहुत से काम सर अंजाम दिए। आपने एक लंगर खाना कायम किया जिसमें फ़ुकराओं, मसाकीन और मुसाफिरों को खाना पेश किया जाता था। इसी तरह मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने और उनकी सवारियों के लिए अस्तबल तामीर करवाए जहाँ पे घोड़े और जानवर बांधे जाते हैं। नाबीनाओं, फालिज जदा, यतीमों और माजूरों की खिदमत के लिए ग़ुलाम और अखराजात फिक्स किए और बच्चों के वज़ाइफ भी मुकर्रर किए। आफ्टर करबला ये वो दौर था, सुनहरी दौर था कि जब अहले बैत को मुकम्मल तौर पर उनके हुकूक दिए गए और मुसलमानों के हालात जो करबला के बाद हद से ज़्यादा बिगड़ गए थे, ख़राब हो गए थे, उनमें तब्दीली आई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अदल व इंसाफ और हुस्न इंतज़ाम से मुसलमानों की ज़िंदगियों में एक ऐसा इनकलाब आया कि ज़कात लेने वाला ज़कात देने वाला बन गया और ज़कात देने वालों को ढूंढने से भी फ़कीर नहीं मिलता था जो शरी फ़कीर होता है जिसे ज़कात दी जाती है। आपने इतने से शॉर्ट टाइम पीरियड में इस तमाम इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का खात्मा करके ये प्रूव किया कि किस तरह रियासत और सियासत और हुकूमत और मईशत को सुवारा और कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ढाला जा सकता है। आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: बिल यकीन व अज़ीज़ सामीन, करबला का मैदान हमें एक ऐसा अबदी सबक दे कर गया है जिसे वक्त कभी मिटा नहीं सकता। जुल्म वक्ती तौर पर ताकतवर दिखाई दे सकता है लेकिन उसका अंजाम कभी कामयाब नहीं होता। कुरान करीम बार बार ये हकीकत बयान करता है कि अल्लाह ताला जालिमों को मोहलत तो देता है मगर उन्हें भूलता नहीं। आखिरकार हर शख्स को अपने आमाल का हिसाब देना है और दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के इंसाफ से बच नहीं सकती। वज़ीज़ामीन, ये था यजीद और उसके साथ जुल्म में शरीक होने वाले अफराद का अंजाम। जुल्म, जबर और नाहक खून बहाना अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त तरीन गुनाहों में से एक है और हर जुल्म को अपने किए का जवाब देना होगा।

वाकया करबला का असल पैगाम किसी एक शख्सियत के अंजाम को जानना नहीं बल्कि अपने अंजाम की फिक्र करना है। हमें ये देखना है कि हम हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ, अदल के अलमदार हैं या जुल्म के खामोश तमाशाई। मज़ीद सामीन, करबला हमें नफ़रत नहीं बसीरत सिखाती हैं, इंतकाम नहीं इंसाफ का शऊर देती हैं और ये पैगाम देती हैं कि हक के लिए कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला हमें जुल्म से बचने, मज़लूम का साथ देने, हक पर साबित कदम रहने और इमाम हुसैन रदियल्लाह ताला और अहले बैते अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है। मशकूर ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अंटू विष्णु सहस्रनामलो व्यास महर्षिनी स्तुतिंचारू।

नमस्कार प्रिया श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। जी हां श्रोताओं, आज बुधवार 29 जुलाई 2026 और ये कार्यक्रम खास हम प्रस्तुत करेंगे क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और इसी संदर्भ में कुछ बातें हम करेंगे यहाँ पर। और मैं उषा कौर इस कार्यक्रम में आप लोगों का साथ दूंगी 11:30 बजे तक। जी हाँ, कहते हैं ना, गुरु सिर्फ हमें किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन की हर कठिन परिस्थिति में सही फैसला लेना भी सिखाते हैं। उनका जो मार्गदर्शन है हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर अपने सभी गुरुजनों को हृदय से प्रणाम।

11:10 हुए हैं। श्रोताओं कहते हैं ना गुरु पूर्णिमा जो है ये पवित्र पर्व हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। आइए इस शुभ अवसर पर इस संकल्प करें कि हम गुरु के दिखाए और सेवा संयम और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को उनके आदर्शों के अनुरूप बनाएंगे। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम।

0: अंतर्यामी है। बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।

癌症发病概率。不用追求该周强动运动，饭后通勤路上抽空走走，简单几步就能收获长久健康。

जारी कम्युनिके में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सूचित किया गया है कि एक आंतरिक जांच के चलते ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गाउर क्लोद निकोला जुफ्ले के खिलाफ अनुशासन को लेकर कार्रवाई चलाई जाएगी और इसी दिशा में उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है और जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती वे सस्पेंडेड रहेंगे। इस बीच ग्रुप के डिप्टी सीईओ मुनि सिंह जानान नाइक किनी को एक्टिंग सीईओ बनाया गया है। और त्रिबेका के फन पार्क द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें कुछ जानकारियां दी गई हैं। उद्घाटन से पहले सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई थी, फिर भी मनोरंजन का बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से फन पार्क ने पार्क की मूल योजना में कुछ

0: बदलाव किए हैं इस संदर्भ में इन नए बदलावों को शामिल करने और सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट में संशोधन के लिए आवेदन दिया गया है। जब तक नया संशोधित परमिट जारी नहीं होता तब तक फन पार्क की सभी गतिविधियां स्थगित की जा रही हैं यानी सस्पेंड की जा रही हैं। आज का दिन सभी गुरुओं को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु ही अपने ज्ञान मार्गदर्शन और संस्कारों से जीवन को सही दिशा देते हैं। इस शुभ अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हैं। विदेश में जापान में जोरदार भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए। कुमामोतो इलाके के एक मॉल के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पास के एक कारखाने की चिमनी के गिर जाने से कई लोग नीचे दब गए हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। कांहोश ओहियता में 83 साल की टिफ्री अजोल्ड की श्रीमती आचामा थुमिया पैदाशी नाम कोनायर कुनंदु और जो देवी उदनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके मकान कांहोश ओहियता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। मारी जानी रोस पेलमी 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम गांधी तोमल जो सुभाष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्धी से पहर 3 बजे उनके बेटे अजय कुमार तोमल के मकान मारी जानी रोस पेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे 3 PM। रॉयल रोड क्लीमोसिया में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पालिता बुधू पैदाशी नाम आगाक और जो फिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान रॉयल रोड क्लीमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर।
1: मैंने चांद देखा है झिलमिलाते सितारों में, लेकिन चांद के पास जो सितारा है शायद उसको आपने अच्छे से देखा होगा, है ना। 12:08 हुए हैं। नमस्कार, आप सबों का स्वागत करती हूँ मैं वेदिता। प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, और सुहाना सफ़र में बस गाने ही हैं हमारे पास जो आपके दिल को ठंडक पहुंचाएगी, और कुछ गाने ऐसे हैं जो बीते दिनों को याद करेंगे और उसके साथ थोड़ा मुस्कुराएंगे। तो स्वागत है हमारा। टिकटॉक थोड़ी देर में होगा लाइव, अगर आप चाहें तो हमें वहां पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और बहुत सारी बातें होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, गानों की बातें होती हैं, यादों की बातें होती हैं। अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो ज़रूर आपका हम वेलकम करते हैं। चलिए इसी के साथ एक और प्यारा सा गाना के लिए लता जी की आवाज में लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है पूनम की रात।
2: RM3 रेडियो।

0: सुहाना सफर।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र। तो सुहाना सफ़र में क्या होता है कि आप हमारे हम सफ़र बनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर खूबसूरत गीतों के इस सफ़र में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, आप हमारे टिकटॉक पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो कि लाइव है इस समय, और यहाँ पर आप चाहे तो कुछ अपने दिल की बात किसी को कोई डेडिकेट करना है तो मौका देते हैं हम कि आप लोग यहाँ पर अपने डेडिकेशन जो है हम तक पहुँचा पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए जो हम गाना अगला गाना चला रहे हैं वो हम हेलो ट्रैवल कैसे हो आपके लिए डेडिकेट करते हैं। यहाँ आयशा कहती है आ गई मेरी पैरट। हाँ जी आ गई। चलो डीवा गर्ल आपका भी हम वेलकम करते हैं। रेशमा राम किशन नमस्कार, और चलो आप आ गए हमें भी अच्छा लगा, परी का साथ है। और यहाँ पर सुनंद आपका भी वेलकम करते हैं। ऋतिक नमस्कार, माधुरी जी थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है। परी बहुत सारा प्यार आपके लिए एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। आयशा नीलिमा कैसी हैं जी, कहती हैं लता जी का ये गाना सुनकर मज़ा ही आ गया। चलो तो यहाँ पर आयशा से पूछा कैसे हो, बोला झगड़ा करने के लिए रेडी, ऑलवेज रेडी। चलो तो यहाँ पर साथ दे रही हमारी सुमिता, उनको बहुत बहुत बहुत सारा प्यार है, लॉट्स ऑफ लव टू यू, एंड साथ में यही गाना हम

डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए नाम. ओके, पूरा नाम लिखते तो अच्छा होता. प्रसाद प्रिया, आपका भी वेलकम है. सैंडी, हेलो, कैसे हो? तो दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग हो इस समय हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, भूलिएगा नहीं कि आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं और बाकी लोगों को भी यहाँ पर आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं. बस आप उनको बता दीजिए कि हमारा टिकटॉक लाइव है, रेडियो मनोरंजन. मिस्टर बुराही, हेलो, हाउ आर यू, आपका स्वागत करते हैं. और साथ में यहाँ पर एम जी इवेंट्स हमारे साथ हैं. नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. चलिए अभी जो हमारा अगला गाना होगा, मूड को थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं. अनिल चामरू जी, रवीना बंशी, स्वागत आप सबों का हमारे इस प्रोग्राम में. कैसी हो प्रतिमा गंगा, सब बढ़िया?

0: बहुत ही खूबसूरत गाना. एंड चलिए यहाँ पर हम वेलकम करना चाहेंगे ब्रिजित जो कि हैं फ्रॉम घोपो एंड कविता चन्नू साथ में हैं हमारे. डेडिकेट करेंगे गाने लेकिन लिस्ट काफ़ी लंबी है. चलिए देखते हैं और कौन है हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है.
1: सुहाना सफर.
0: हाँ जी, तो यहाँ पर तैयब भोला, फिया, लीना, रेखा, रूही और उनकी दादी सरोज के लिए गाना होगा. कैसे हो नूर, आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. हाय वानी, वानी हाँ वानी, कहीं कृष कपूर को तो नहीं ढूंढ रहे हो? तो वानी का भी वेलकम करते हैं. यहाँ पर हमारे साथ हैं रोशन, सरस्वती, राम राम आपको, विनाशा, जीना एंड गाना जाएगा लीना की तरफ से उनकी सिस्टर रेशमा के नाम. रेखा जी आप बताओ कैसे हो? और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए. मेरी ग्रेस, केशनी कुमार कहते कल आपको मिस किया. हमने भी किया, बहुत मिस किया, लेकिन आज आ गए ना. चलो आशना का स्वागत करते हैं, नजीमा गोवर्धन एंड वी हैव सलीसा फ्रॉम सुरीनाम. नमस्कार, वेलकम, स्वागतम. ओके, बबीता सोबरन कैसी हैं आप? बिल्कुल, हम तो यहाँ पर आ गए हैं साथ देने के लिए. एंड चलो जी, यहाँ पर गाना होगा फॉर जॉय, साथ दे रहे हमारे. एंड नास कैसे हो आप लोग? ना पूरा पूरा नाम लिखा करो, ये जो अल्फाबेट्स भेज दे मुझे समझ में नहीं आता कि किसने मैसेज किया है. तो ऐसा करते हैं आप पूरा नाम भेज देना मुझे, बस सेवंस लिखा है, समझ में नहीं आता कि नाम कौन सा है. अभी कौन सा गाना होगा? देखो आज होगी पूनम की रात, कल भी थी, फुल मून है ना. तो ऐसा करते हैं गाना जो होगा हम पूनम फिल्म से लेके आए हैं और ये गाना मैं खमन बोहरा के नाम भी डेडिकेट करना चाहूँगी. आ जरा मेरे हमनशी, थाम ले मुझे, थाम ले. और जब फुल मून होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े परेशान होते हैं, मूड स्विंग होता है उनका थोड़ा थोड़ा, तो आपके मूड को हम ठीक करेंगे. डोंट वरी, आप सेफ हैंड्स में हो. शैलेंद्र जी कैसे हैं आप? मैं कोशिश करूंगी. शैलेंद्र जी आपने बोला अभी जोशीले फिल्म का गाना, एक्चुअली ये जो जोशीले फिल्म का गाना है मैं खुद ढूंढ रही हूँ, जैसे मिलता है चलाएंगे. ठीक है,

0: जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं मुझे थामो
1: सुहाना सफर
0: चलिए जी सुहाना सफर यहाँ पे शुरू हो गया है। 30 मिनट भी निकल गए और पता भी नहीं चला कि अभी ऐसा लग रहा है कि अभी एक ही गाना तो सुना है हमने। ऐसे कई सारे गाने हैं, सुनते सुनते समय बीत जाएगा। तो यहाँ पर हम दुर्गा को कहेंगे वेलकम हमारे साथ है किंग यूज़र, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। एंड सुल्ताना खंडाई हमारे साथ हैं, तरुण राम राम राम कैसे हो, सीता पदारत भी हमारे साथ हैं, क्या बात है, इधर राम इधर सीता। एंड सुबी का भी हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। चलिए तो तरुण कहते हैं मैं हूँ ना, हाँ बिल्कुल मुझे पता है आप हैं और आपके आने से चार चांद लग जाता है हमारे शो में, क्या कहते हो आप। और चलो यहाँ पर थोड़ा सा जलाते हैं हम आयशा को भी, तो नेक्स्ट गाना जो होगा प्रिया से बालक के नाम डेडिकेट करते हैं। और साथ में यहाँ पर माधुरी जी एक दो तीन करती हुई आई, कहती आज बहुत खुश लग रही हूँ। राज क्या है, राज ये है कि कल नहीं आई थी ना, तो आज मिलने की खुशी डबल हो गई है। यहाँ पर आशा सुबह हमारे साथ हैं, गाना जाएगा उनकी फ्रेंड निष्ठा बाली सिंह के लिए और आल्डो के नाम। और साथ में यहाँ पर गाना होगा फॉर बेन, ओके थैंक यू सो मच बेन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अभी ऑस्ट्रेलिया से विशाल जमन हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, नमस्कार आपका स्वागत है, कैसे हो वहाँ

कि कंगारू वगैरह सब ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, गाना सुनते हैं और यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए वैसे तोहफा प्यार का, और ये गाना निजाम बहादुर जी आपके नाम। बैन भी हमें ऑस्ट्रेलिया से ही देख रहे हैं, हाय थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर कैटरबोन से वेदना भी साथ दे रही हैं, तो आपके दर्द दिल की दवा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाय पूजा कैसी हो, चलिए गाना सुनते हैं।

0: एक प्यार का तोहफा हम भी लेकर आते हैं आपके लिए, खूबसूरत गीतों का ये पिटारा लेकर आते हैं। और गाना हम अश्वी रिशान, जितन दुलवा, सारिका बनार सिंह साथ में हैं, अहमद मुस्तफा रामजून, उनके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। और हमारे साथ हैं शिमला विसाई, दीप्ति गंदौरी और नम्रता।
1: RM3 Radio.
0: और ये गाना हम श्यामा माहिराली के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, उनकी पोती यति, यजना और निवेश के नाम। चलिए जी, जोया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उनके लिए भी ये गाना डेडिकेट करते हैं। और यहाँ पर डबल धमाल कर रहे हैं हम सबके साथ मिलकर, थैंक यू सो मच देव भाई, मॉरिशस में हैं। तो चलिए शिमला जी, हम देव भाई के लिए और पूरे विशाल फैमिली के लिए डेडिकेट करते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

0: सुहाना सफर।
1: इस समय रेडियो मनोरंजन आप सुन रहे हैं और मॉरिशस में आप जहां से भी साथ दे रहे हैं, चलो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हो। लेकिन मॉरिशस से बाहर काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। नॉर्मली यहां पर सुरीनाम से बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं और कई सारे मैसेज आते हैं, कहते हैं मैं फिजी से हूं, कहते हैं मैं उलैन से हूं, कहते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका से हूं, कहते हैं कि मैं इस दुनिया के इस कोने से हूं। सो आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हैं अगर आप हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े हुए हैं।

प्लीज सेंड मी अ हाय और अ हेलो, या तो फिर ये बताते चलिए कि आप कहाँ से हमारे इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए कुमार हमारे साथ हैं, कहते हैं हरम्बा हो लगा दो अंशिका के लिए। समझ में नहीं आया आपका मैसेज। चलो कुमार, नेक्स्ट गाना आपके लिए, ठीक है। तेज सनातन आपके लिए गाना होगा, और साथ में ये गाना हम परी के नाम डेडिकेट करते हैं, हाई ट्रैवल। एंड साथ ही साथ ये गाना तरुण कहते हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ सबका प्यार है, इसीलिए तो मैं भागी भागी भागी भागी आती हूँ और आपके साथ होती हूँ रोज़ 12 से 2 एक्सेप्ट ऑन ट्यूजडेज। विनय हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर गाना होगा आपके लिए, हमारी डी बागल कहती है वाओ सच अ लवली सॉन्ग। हाँ गाना तो है। और काला ये कौन है भाई साहब, बता तो दो, नाम तो लिख दो, हमें भी पता चले कि कौन हमें कहाँ से सुन रहा है। तनुजा देवी रघु कहती है वाह क्या बात है, हाँ गाना है बहुत अच्छा लगा आपको मैं जानती हूँ। बबीता बुलाकी आपके लिए थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, गुरु कैसे हो गुरु, गाना होगा आपके लिए, पेरिस से याद कर रहे हो, और ये गाना जो होगा आपके पूरी फैमिली के नाम हम चला रहे हैं। सनवीर संध्या आपका भी वेलकम है। कवि सुरेश थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना जाएगा आपकी वाइफ रेशमी के लिए, और ये है कविश फ्रॉम बिलेअ। रैक्स कैसे हो। वृंदा सोहन इटली से हमारे तितली साथ दे रही हैं, और वहीं पे तीशा हाय मेरी क्वीन कैसी हो। तो वृंदा ने कहा है कि मेरे लिए भी कुछ चला दो, अरे सोहन फैमिली के लिए चलाएंगे आपके लिए, और इटली में अगर आप बैठे बैठे पिज्ज़ा खा रहे हो तो चलो कुछ हमें भी याद कर लो। अभी क्या करेंगे, शिवानी के लिए गाना होगा फ्रॉम बिलेअ। यस, कौन सा गाना सुनाऊँ मैं आपको कि आपका दिल चुरा लूँ, कुछ ऐसा गाना चलेगा।

0: सुहाना सफर
1: में सुहानी चांदनी रातें जो सोने नहीं देती, और मैं भी चाहती हूँ कि ये सोने का टाइम नहीं है, लंच टाइम है। बोना पीछे अगर आप लंच ले रहे हैं, और साथ में यहाँ पर चलिए कुछ डेडिकेशंस है। यहाँ हाउ आर यू कहती है, बिल्कुल बदली नहीं ना, नहीं जो बदल गई वो वेदिता थोड़ी ना होगी। चलो ये गाना होगा फॉर माई स्वीट एंजल के नाम, एंड वी हैव काला फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ओके नहीं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड से तो हमें अंतिश सुन रहे हैं। सो यू आर फ्रॉम सिंगापुर कहते हैं, पहली बार सुन रहे हैं हम, थैंक यू सो मच ललिता। एंड वी हैव केविन घगरू, एंड वी हैव शोभा, एंड हाशना नाइक को नितिन और पूनम के नाम गाना डेडिकेट करना चाहेगी। एंड वी हैव भरिंदर फ्रॉम जर्मनी, हेलो जर्मनी वालों कैसे हो। लता सुकवा कहती है भाई राजा का बर्थडे है, वहीं पे पैम ने हेलो भेजा है फ्रॉम ट्रिनिडाद, और रोहित आए हैं फ्रॉम सुरीनाम। दिवा गर्ल कहती है कि कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ना, पूरी दुनिया सुन रही है और हम सब एक साथ एक ही मंच पे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हर कोई कहीं ना कहीं से निकल कर आता है हमारे साथ, हमारे पुराने गीतों के साथ जुड़ जाता है, विच मेक्स दिस प्रोग्राम सो स्पेशल। ओके तो चलिए यहाँ पर लक्ष्मण सिकोविंद जी आपके लिए गाना होगा, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स, एंड यह गाना होगा फॉर संस्कृत जो साथ दे रहे हैं। अगर हो सके तो हेमंत कुमार का कोई गाना लगा दीजिएगा, ठीक है जी हम लगाएंगे। देखो भाई दुनिया भर से बात करें, और यहाँ पर आ गई है न्यूजीलैंड से हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी अर्चना डांडा, जिनका हम स्वागत करते हैं। अनिल राजन कुंजन जो नहीं चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ वो भी हमसे मिलने आ जाते हैं, चलो थैंक यू सो मच। और ऐसा करते हैं कि पूजा कहती है कि गाने तो एकदम कमाल के हैं, इतने कमाल के हैं कि मैं आपके स्टूडियो में आना चाहती हूँ। अरे भाई आ जाना किसी दिन, बैठ जाना, प्रोग्राम सुन लेना, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट गाना कृषिता, दिव्यांशी, जिवेश, सव्या, वेदिनी, हेयांश, कृति जनव के लिए, और वहीं पे हम गाना डेडिकेट करेंगे ओम कुमारी देवी दासी के नाम, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स, आई रियली फील ब्लेस्ड, थैंक यू। ऑस्ट्रिया से यहाँ पर अनूप सिंह हमारे साथ हैं, हेलो जी, और बेताब फिल्म का गाना वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं चलाती हूँ भी थोड़ी देर में आपको। अनूप जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू देवी, थैंक यू MSG, थैंक यू केवर साथ देने के लिए। और यहाँ पर गाना जो होगा पापा बिसुन मामा कमला के नाम।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। तूने कभी किसी से प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है, दिया है नहीं दिया है, चलिए आप बताएंगे हमें। और यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम का जो अगला गाना होगा वो हमें लेके जा रहा है समाचारों की ओर, जो आप सुनोगे 1 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर दीपक बिहारी कहते कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है भाई, कुछ मिसिंग नहीं है, अभी तो सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं, हाय डियर, नमस्ते जी, बर्थडे सॉन्ग फॉर माई ब्रदर, आपके भाई के लिए, ओके, तो आपके भाई के लिए गाना होगा। और यहाँ पर गाना होगा रीना के लिए, कविता जो दिफ्रे से हैं, बेटी रिया के साथ घूमने चली है कविता जी, राधिका बाचू और दीपक बिहारी, गाना आपके नाम।
1: RM3 रेडियो, रेडियो, रेडियो।

और ये गाना स्पेशली हमारे प्यारे से साहिल के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके बॉस अनिल के लिए जिन्होंने परमिशन दिया है कि बेटा सुन ले तू, दो घंटे देता हूँ तुझे, तू भी सुन गाने, मैं भी सुनता हूँ उधर चुपके से। थैंक यू सो मच बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। सरकार ने बजट 2026-2027 को लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर दूसरे चरण की बहसें चली। इन दोनों विधेयकों के जरिए टैक्स, सरकारी वित्त, अर्थव्यवस्था और पेंशन से जुड़े बजट कदम लागू किए जाएंगे। इनसे 84 मौजूदा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन सुधार जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा ताकि व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ बने रहे। राष्ट्रीय सभा में विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड C12 की सफाई को लेकर सवाल उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि निरीक्षण के दौरान वार्ड के भीतर चूहों और कबूतरों का कोई संक्रमण नहीं है। हालांकि परिसर में एक मृत चूहा पाया गया था और खुले रहने पर कभी कभी कबूतर अंदर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी कदम लागू किए जाएंगे। पूर्व ब्रेम बैंक से जुड़े 80 मिलियन रुपए की धोखाधड़ी मामले में DPP की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई 2027 को सुनवाई करेगा। DPP ने चंद्र प्रकाश सिंह दीप, मोहम्मद सैफ उल्ला मोलाबक्स और

0: शेख मोहम्मद कदाफी जानी को दी गई सजा को चुनौती दी है। वहीं इस मामले में दोषी ठहराए गए धर्मेंद्र मलू ने भी फैसले के खिलाफ अपील की है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अदालत ने कथित मुख्य साजिशकर्ता पर ज्यादा ध्यान दिया और अन्य आरोपियों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप में अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। बचाव अभियान लगातार जारी है और राहत दल एक शॉपिंग सेंटर तथा एक पेपर फैक्ट्री के मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी भी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं और प्रशासन के साथ मिलकर उनकी खोज जारी है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मारी जानी रोजबेल में 77 साल के 77 इयर्स ओल्ड श्री प्रेम गांधी तोमल जो सुभाष नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके बेटे श्री अजय कुमार तोमल की मकान माघी जानी रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। सिंगारों स्ट्रीट व्यू ग्रांड पोर्ट में 32 साल की 32 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शक्षा गंदावरी चितामन, पैदाशी नाम गंदावरी जो कीर्ति नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके पिता श्री राजेश गंदावरी के मकान सिंगारों स्ट्रीट व्यू ग्रांड पोर्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening RM Free Radio.

0: ना सफर हाँ ना सफर
1: कितना खूबसूरत गाना है ना। चलिए सारे गाने अच्छे हैं और मेरी लिस्ट भी धीरे धीरे करके लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पर गाना होगा फॉर डैड प्रीतम, मामू राज और नीस श्री के लिए जिनका बर्थडे है। तीन तीन बर्थडे एक ही दिन में, वाह क्या बात है। यहाँ पर रमजा हमारे साथ हैं, प्रेम की तरफ से शिखा और कुणाल के लिए जिनकी वेडिंग हो रही है, शादी हो रही या हो गई, चलो बहुत सारा प्यार है आपके लिए। आशा उनके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गाना मांग रही है। वहीं पे नाथ राम कलावन हमारे साथ हैं, कैसे हो जी, गाना आपके लिए होगा। प्रवेश सूबी और यहाँ पर दीपक जी कहते हैं मेरे लड्डू गोपाल कुकू का बर्थडे है, तो चलिए कुकू को हाई, कैसे हो, हैप्पी बर्थडे आपको। संजना माथी साथ में निशा लक्षिणा लक्षिका बेटी शिखा के लिए और ये हैं निशा की तरफ से। और चलिए तो जो लोग हमारे साथ अभी टिकटॉक पर जुड़े हुए हैं थैंक यू। यहाँ पर हर्ष नाइक को आरती बॉबी कुणाल और आयुष के लिए गाना मांग रही है। एंड वी हैव स्कॉटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हाई वेलकम। एंड प्रतिमा की तरफ से उनके हस्बैंड क्रिएशन, उनकी मम बसंती, दुखित और रामसरन फैमिली के लिए गाना। वी हैव सिमला गुरंग सिंह ऋषि जो साथ दे रहे हैं, प्रेमचंद जमन, गीता राम नारायण, रेशमा सुकरा ट्रिनिदाद से हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वनाथ प्रयाग स्वागत है आपका, पड़ी और माधुरी के लिए ये हैं साहिल की तरफ से, और सुमा हमारे साथ हैं मिहिका, लैला मुदारन, इन सब का वेलकम करते हैं। गंगाराम जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, थैंक यू सो मच विमी फॉर जॉइनिंग अस। और साथ में यहाँ स्वराज हमारे साथ हैं, थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड वेंसडे आपको भी। रोशन मोहन स्वागत है आपका, वैदेही नमस्कार, आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। एंड साथ में यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको फरमाइश अपने पसंद का गाना सुनना है, फिलहाल तो आज आप मेरी पसंद का ही गाना सुन लो। एवरग्रीन गाना है आपके लिए, फिल्म है चोरी चोरी, ये गाना माया रामदोस जी आपके लिए।

0: आसमां का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे लिसनर्स झूम रहे हैं हर एक गाने में, मस्ती हो रही है हर एक गाने में। 1:14 हुए हैं, विनीता का साथ दे रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए यहाँ पर जो गाना होगा हम डेडिकेट करते हैं अभी संदिल सुकन के नाम। आरजे मैक्स हमें सुन रहे हैं फ्रॉम मेलबर्न, हाय वेलकम, वेलकम टू मॉरिशस, वेलकम टू सुहाना सफर। चलिए इसी के साथ गाना होगा रोशनी के लिए और राज के लिए जो इस समय हमारे साथ हैं। एंड रोशनी हमें सुन रही है अभी, रोशनी कैसी हो?
1: RM Free Radio.

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: वैसे बात अलग है कि जो लोग हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो कहते हैं अब जवां कहां होंगे, अब तो पेंशन लेने का टाइम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, गाना है, गाने में क्या अर्ज है ना। आगे बढ़ते हैं, दिन के 1:22 हुए हैं। यू आर लिस्निंग टू रेडियो मनोरंजन विदिता के साथ। चलिए यहाँ पर गाना होगा अरविंद दौलत के लिए और गाना होगा संग के नाम रोशनी फ्रॉम निसियाना। अब ये कहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि आई एम फ्रॉम निसियाना। राकेश फ्रॉम फिजी, नमस्कारम राकेश, कैसे हो आप। करुणा है पीतों से। रीना उनकी मम्मी कुमारी के लिए गाना मांग रहे हैं जो मिडलैंड से हैं। वहीं पे विनय गुप्ता हमारे साथ हैं। अभी घर है टू करिश्मा जो साथ दे रही हैं। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट गाना राकेश हम आपके नाम डेडिकेट करेंगे। अभिनव गौरी शंकर आपका भी हम वेलकम करते हैं। एंड वी हैव रोबी रमेसर फ्रॉम सुरीनाम, नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए इसी के साथ गाना होगा हमारी स्वीट एंजल के नाम जो साथ दे रही हैं। एथा कैसे हो आप फ्रॉम फिजी, एस्था को हम कहेंगे वेलकम स्वागतम। चलिए आगे क्या होगा जानते हैं।

0: सफर।
1: वैसे हमारे इस प्रोग्राम को अभी वैंकूवर में भी सुना जा रहा है, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। वी हैव ललिता, दिनेश गोपी, अमृता हराधन, इंदिरा, राकेश और प्रकाश के लिए गाना मांग रही है, और अनसे हमारी मुलाकात भी हुई आज, वो स्टूडियो विजिट करने आई थी अपनी पूरी टोली के साथ, थैंक यू प्रिया ए के। एंड यहाँ पर गाना होगा आपके लिए आदित्य। वैसे आदित्य ये गाना मैं नहीं चला सकती क्योंकि ये नया गाना है, यहाँ पर हम बिल्कुल पुराने गाने चलाते हैं, बट द नेक्स्ट वन गो स्पेशली फॉर यू। ओके हाई जी एस, कैसे हो जी? और यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे प्रिया के लिए, उनकी बेटी के नाम भी। कहती हूँ मुझे भी प्लेन देखने का बड़ा शौक है, और बेटी कहती है तो पागल है। हाँ लोग ऐसे ही कहते हैं लेकिन हम तो हैं, क्या करें। चले इसी के साथ नेक्स्ट गाना आपको जरूर पसंद आएगा अनुराधा जी की आवाज में।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. चलिए हम सुहाना सफर में अगला गाना ललिता के नाम, दिनेश गोपी, अमृता हराधन, इंदिरा जी, राकेश और प्रकाश के लिए गाना मांग रही। वहीं पे प्रिया हमारे साथ है, ए के एंजल शी, और साथ में है सीना, जिनीता, उनके हस्बैंड संदीप, बेटे शिवान के लिए, और वहीं पे श्री हमारे साथ हैं। शाहिद इकबाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। एक और प्रिया है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका हम स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं हम विमला जी आपका। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो संस्कृत थैंक यू सो मच। और नव आपके लिए भी गाना होगा, और गाना होगा सावी के नाम। वैसे हमने ये गाने नहीं चलाते, सिर्फ पुराने गाने चलते हैं। सलीमा कैसे हो, वेलकम है आपका।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गाना होगा वो इंदिरा राज के लिए। नवीना कहती हैं कि भाई आज हमारा बर्थडे है, तो चलिए नवीना को हैप्पी बर्थडे। और शारदा लखनौत के लिए गाना होगा प्रतिमा, संजा, सुजाता, शर्मिला। और ये गाना जाएगा आदिल के लिए। शाहिद ने बोला भाई हमारे दोस्त भी आपको सुन रहे हैं, तो ऐसा करते हैं गाना आपके नाम।

0: RM3 Radio.
1: और चलिए यहाँ पर कविता भक्तवार हमारे साथ हैं, उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। माधुरी जी कहती हैं हमारे लिए भी कुछ चला दो, वहीं पे स्वीट एंजल कहती हैं हमारे लिए कोई गाना हो जाए, तो सबके लिए गाना डेडिकेट करते हैं भाई, क्यों नहीं। और थैंक यू सो मच, यहाँ पर साधना हमारे साथ जुड़ी हुई है। आदित्य नए गाने नहीं चलाते, सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं। विशेज हैं माधवी राम स्वामी के लिए, वेरी हैप्पी बर्थडे आपके सभी फ्रेंड्स की तरफ से, रिजवी से। मनोज पिर्ती हमारे साथ सेबास्तोपोल से हैं, उनके लिए भी हम गाना डेडिकेट करते हैं। अमृता जीतन नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।

उसी के साथ हम नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं नाज के लिए. और दीपक जी थैंक यू सो मच. कहते हैं हमने देखी है परवीन बाबी क्या एक्ट्रेस थी. हाँ बिल्कुल लगे रहो. आयशा थैंक यू सो मच. थैंक यू बेबो साथ देने के लिए. उमा नोयन आपका भी हम वेलकम करती हैं. थैंक यू जिमी. एंड यहाँ पर हमारा जो अगला गाना होगा सैयारा तो नहीं चला सकते लेकिन अगला गाना चला सकते हैं. शीला सिजादरी आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में. नेक्स्ट जो हमारा गाना है ये इसकी फरमाइश की गई थी और मैंने सोचा चला ही देती हूँ बल्कि शुरू में इस गाने की फरमाइश आई थी. सुनीता जी थैंक यू सो मच. रोहित हैव अ गुड डे आपको. अभी कहते हैं 6:50 AM हुआ है आपके यहाँ. चलिए तो आप काम पर जा रहे हो आप काम करें. हैव अ गुड डे. एंड रुकैया जी आपके लिए भी गाना होगा. दीपक जी थैंक यू. एंड इसी के साथ अब मुलाकात करेंगे कल 12 बजे. भूलिएगा नहीं आप ही के प्रोग्राम में जो कि है क्या सुहाना सफ़र.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पूर्व ब्रह्म बैंक से जुड़े 80 मिलियन रुपए की धोखाधड़ी मामले में डीपीपी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई 2027 को सुनवाई करेगा। डीपीपी ने चंद्र प्रकाश दीप मोहम्मद सैफ उल्ला मुला बुक्स और शेख मोहम्मद कदाफी जानी को दी गई सजा को चुनौती दी है। वहीं इस मामले में दोषी ठहराए गए धर्मेंद्र मुलू ने भी फैसले के खिलाफ अपील की है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अदालत ने कथित मुख्य साजिशकर्ता पर ज्यादा ध्यान दिया और अन्य आरोपियों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। त्रिबिका स्थितफन पार्क ने अपने स्थायी रूप से बंद किए जाने को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की है। मैनेजमेंट का कहना है कि पार्क के खुलने से पहले सभी आवश्यक सुरक्षा मंजूरियां, जिसमें फायर सिक्योरिटी से जुड़ी मंजूरी भी शामिल है, प्राप्त कर ली गई थी। सभी राइट्स और सुविधाओं का निरीक्षण एक अधिकृत मोशन इंजीनियर ने किया था और वे यूरोपीय सुरक्षा मानक के अनुरूप है। फन पार्क के अनुसार पार्क के लेआउट में कुछ लाभ किए गए थे, इसलिए बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट में सुधार के लिए आवेदन किया गया है। संशोधित अनुमति मिलने तक संबंधित अधिकारियों के सहयोग से पार्क को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया गया। मैनेजमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी समय राइट्स या अन्य सुविधाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में बफर जोन के कई निवासियों और संपत्ति मालिकों ने निर्माण नियमों को लेकर अपनी चिंताएं रखी। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन ने कहा कि यूनेस्को के दिशा निर्देश विकास में बाधा नहीं है, बल्कि विरासत संरक्षण के साथ

0: संभव है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व जो आज मनाया जा रहा है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आई 6.8 तीव्रता के भूकंप में अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत। बचाव अभियान लगातार जारी और राहत दल एक शॉपिंग मॉल तथा एक पेपर फैक्ट्री के मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मारी जानी रोजबेल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की प्रेम गांधी तुमाल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुभाष के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे अजय कुमार तुमाल के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सिंगारोन स्ट्रीट व्यू कॉम्पो में 32 साल की 32 ईयर्स ओल्ड की साक्षा गुदारी चितामन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गंदोरी, लोग उन्हें कीर्ति के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पिता राजेश गंदोरी के मकान व्यू कॉम्पो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए व्यू कॉम्पो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रिवायों रोड क्रेव क्योर में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के सुनील गोविंद की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें स्वामी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल गुरुवार को दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान क्रेव क्योर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेव क्योर की ही शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM3 Radio.
2: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।

0: RM3 Radio. Radio.
1: कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है जा तेजी से बुलनी जा कि हमनी कोशिश रहेला कि हमनी के दादी लोग हमनी के दादा लोग चाचा चाची लोग जो जाने लन जा वो लोग के कहानी वो लोग के जो जियल होवन जा वो सब तो लोग के सामने रखत जा एक हम उल्लेख कर ले रही है बात के पर आज हमारे सामने वो उनकर बोलल जो बोल ले रहा वो लिख के हम अन्य जा बहुत समय हो गल भाई सकेला आज से 2026 में है जा सकेला गो 10-15 बरिस के बाद हा जब हम है इंटरव्यू कर ले जा भेंट वार्ता पोस्ट डिफ्लाक में त हम ई जो भेंट वार्ता है और कहानी के नाम दले है हंसवा

मर कलम है हंसवा मर कलम है। तो दादी हमके बोले कि शादी होइला पर जब हम ऐनी तो लड़का के बुद्धि रहल, लड़का के बुद्धि रहल माने छोटा रहनी, कबो चल जाब खेले तक काम ढेर हो जाए तो सास खूबे डांटी। एक हला हमर सास हमके बोललक जाके देख लाकुजी यानी रसोई घर में हंसवा खोसल बा जाके लियान। हम तो नहीं जानत है नी हंसवा कौन ची है, नहीं लौकल हो जा परी कुछ। तब खीस में हमर सास आके बोललक कागे नहीं लौकेला तोहरा, नहीं दिखले है जा हंसवा बा, हम तो एकरा फूसी से जानत है नी। फूसी माने हंसवा के ऊपर क्रियोली। हंसवा पहला हला सुननी, हमर सास जाके घास काट के आए, फिर से हंसवा लाकुजिन में रख कर तब हम ओकरा निकाल के अपने आप बोलनी कि एकरे हंसवा बोला जला, हमर लगे ता एकरा फूसी बोली ले जा। जब बाद में लड़का बड़ा होल हमके परल जाके काम करे के ताकि बूढ़ा के कुछ सहायता हो सकी, तब जब पोपियते है यानी मालिक के लगी गई नी तब बुल्लक उबिजे प्रां फूसी विनी यानी हंसवा लेके आए के चाहेला दिपायास के काम बा। गन्ना के जोन पौधा में से कान में से वो लपाई जब निकाल लेन से उकरा का बोला जाए दिपायास। तब हम हंसवा लेके लाली धरनी है ना, रेगोल रहेला ना तो वो लाली धरनी, तब हम हंसवा लेके लाली धरनी। तब हंसवा के देख के हमके खूबे रोवाइल छुटल। एगो ऐसन समय रहल जब हम नहीं जानत थनी कि हंसवा कौन ची है। आज यही हंसवा हमर रोटी कमाई के जरिया है, हमर कलम है। शुरू में कारोकान में हमर संगतिया लोग खूबे हमर सहायता करलन सा, उन लोग दूध देने से लापाई खिचलन सा और उतनी बहुत दरी कोड़े के बतैलन सा। एक महीना दुख सहनी फिनो अपन काम करे लगनी निमन से, सब काम करनी, कान कटनी, दीपाइये करनी, गिलेबाज करनी, बगल विरे खातिर जस्ती पैसा मिले। हम हमेशा ई करे के तैयार हतनी, कबो रोज उठाए के परी बहुत काम होत रहल, कबो एक दिन में चार लतास करके फिर दूसर दिन जाप सा काम करी। कोनो दुख नहीं, कोनो मलाद नहीं, कोनो बीमारी नहीं, निमन से काम होत रहल। घरे हमनी जानवर वो पुसत हनी सा, हमर ससुर के बैल गाड़ी रहल, तब वो गाड़ी रहल और आकी गाड़ी, तंबो गाड़ी और आके गाड़ी, ये दुगो गाड़ी के नाम रहे लोग की। तंबो गाड़ी में छत्ता नियन काम भराल जात रहल यानी खूब घास तंबो गाड़ी में आनत सा। हम ताबिस्मो में नहीं एगो साहेब के काम करत है नी, सब सुविधा देवे, कोनो दुख नहीं, बहुते फैसिलिटी बहुते सुविधा देवे। जब हम छोड़नी तब मिलल तनिकुन पैसा लगभग 17,300 ले। तई सब जियल घटना है जिकर में घरे से कैसे महिला लोग के वो समय याल परल जाके काम करेगी। हो जा गेलन जाता ऐसा नहीं कि दूसर कोई बोली हम ये काम ले लाई आलबा, दूसर कोई बोली कि हाँ देखना चला बा हाँ काम करी, नहीं ये दालिया हमी के बोलन कैसे उनकर सहायता कर लन जा। ते कहानी सुनत हुए जा हमी के दादी लोग हमी के चाची लोग तो और लोग के भी अपन कहानी किस्सा याद आई, तो कहे नहीं एक दिन हमी के बोलिया हम यावब जा तोहर लगे तोहर कहानी किस्सा रेडियो भर में सुनाब जा, कहे कि ये गो धरोहर है, ऐसा गो धरोहर जो न समय के साथ लुप्त हो जाए। हमनी खोजत है जाकि सब

0: घटना ये सब जो जिले हुआ हमनी अखा मॉरिशस के बताब जा कि भोजपुरिया लोग में कितना दम्बा कितना शक्ति रहल कि बताब जा भोजपुरिया लोग कैसे अपन खून पसीना के बल पर इस देश के हैजा परी अन्नन जा।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलो कार्यक्रम के आगे बढ़ावते जा ई धरोहर के सरोवर कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से हम के सहयोगी संजुन के बुल्लक एक दुगो भोजपुरी शब्द सीख ले बाई कार्यक्रम में और ई और ऐसा भोजपुरी शब्द सीखे खोजत बा हैला जन संजू जियत भर कौन सी है जब ले जियत हुआ जियत भर इसे वो उदाहरण सब से दे तू ही बोलिया दीदी जे हमर कसूर होइता ई जिंदगी के कोनो ठिकान नहीं बा बोलनी जोन लेवे देवे के बा बेटा बेटी लोग अपन जियत भर में सरिया दियन स यानी लोग के जुगार कर दा अब जुगार शब्द को ची है जुगार शब्द मान लेगो उदाहरण दो थे का बोली चाची खाई के जुगार करे के बड़ी दुख हो गल बा घर में तो चाउर नहीं के बराबर रहेला फजीर के निकलन होवन जुगार करे के कहूं कटहर के कन या फिर कंचा बनान मिल जाए तो जुगार हो जाए अभी देखा संजू भी दो काम करता जुगार करता देखा ये है बहुत रिकॉर्डिंग चलत बा साथ साथ में हमने के महात्मा गांधी संस्थान के जो कारीगर लोग होवन जा भाई को नाम है गोकुल भाई अभी जुगार करत हुन यानी किसनो किसनो हम के स्टूडियो के सुंदर बनावत हुन संजू चला वो गीत सुना ले वो गीत सुन दे
0: RM3 Radio.

नमस्ते। धरोहर के सरोवर नामक हमनी के प्रोग्राम में टोहलोक के हार्दिक अभिवादन बाते। आज डुगो ललना गीत लेके आल हैं जोन अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मॉरिशन हेरिटेज वॉल्यूम 1 के सोहर बर्फ सॉन्ग्स फ्रॉम मॉरिशस एंड इंडिया के सीडी से लेनी। गायिका हवन सचिरिता गुप्ता और मंगला सलोनी। प्रोड्यूस बाय अर्चना कुमार फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ई डॉक्टर अर्चना कुमार और डॉक्टर पवित्रानंद रामुटा एमजीआई के भूतपूर्व अधिकारी के मिलल जुलल सहयोग से एगो प्रोजेक्ट रहल। मॉरिशस में सोहर या ललना पुत्र जन्म के मांगलिक अवसर पर गावल जाला। यूं तो हर संतान के जन्म के शुभ मानल जाला और लैका के जन्म पर ललना गावल जाला। सोहर गीत नारी शक्ति प्रायः प्रसूति गृह के बाहर बैस के गावे लंजा। आगे ई गीत लैकवा के छठी या बारही पर अर्थात 6 या 12वें दिन ले गावल जात रहल। बरही ले लैकवा प्रसूति गृह में परल रही। उनकर सेवा गाय के हाथ होवत रहल। ओ गृह में एगो बोरसी जोन पेड़ के 3 लकड़ी के जमीन खोद के उनमें अंगोरा जलावल जात रहल। उनकर बाद लैकवा के 6 दिन पर स्नान करल जात रहल। प्रसव काल में ही प्रसूता के खाय खातिर पौष्टिक पदार्थ देवल जात रहल, जैसे कसार जोन मेथी सौंप तथा चावल के पीस के लड्डू नियन गोल बनाए के खिलावे लंजा। इनकरा से प्रसूता के देह में पीरा तथा आदि व्याधि दूर भाग जाए। छठी बरही के प्रथा आजो हमनी के देश में प्रचलित बाटे और ऐसन विशेष अवसर पे सोहर गावल जाला। सोहर गीत नारी शक्ति के अपन रचना है। ई गीतवन में श्रृंगार तथा करुण रस के प्रधानता बाटे। सोहर गीत में पाठक गण प्रायः हर माता के सीता या यशोदा के रूप में देखी और शिशु के राम या कृष्ण के रूप में। एगो माँ खातिर उनकर लैका उनकर सबसे बड़ा निधि है। इनकर प्रमाण सोहर गीत में झलकेला। सोहर गीतवन में व्यापक भाव भरे परलबा। ए गीतवन में पुत्र जन्म संबंधित अनेक प्रकार के भाव से भरल है। प्रस्तुत गीत में गोकुल में बधाई बजता कारण के कन्हैया के जन्म यशोदा मैया और नंद बाबा के

यहाँ होल बाटे। कृष्ण के अवतार से गोकुल निवासी के तब भाग्य उजागर हो गलबा। पलना में घनश्याम जी के यशोदा मैया जुलावत हवन। हैजा के वातावरण रंगीन महर के वर्णन तथा खुशहाली के वर्णन से ई गीत सजीव हो जाला।

दूसर गीत एगो ललना है, केकर अंगनिया में झंझरिया बाझेला, केकर बहु पेट से हवन, केकर घर ललना बाजे के होई बा। तब बुलल गयल की दादा के आंगन पायल बजता, और घर आंगन में खुशहाली छाल बाती। समस्त परिवार आवेलन और ललना में शामिल होवेला, पायल के मीठे धुन से सबके मन खिल जाला। गीतवन के साथ तो लोग से आज्ञा लेवम, धन्यवाद, नमस्ते।

RM3 Radio. Radio. सिंह और चूहा।

0: कते जनावर रहत रहल। जंगल में एगो सिंह रहल, उतर रहल जंगल के राजा। एक दिन सिंह एगो शिकारी के जाल में फंस जाला। उ जाल से निकले के बहुते कोशिश करेला, बकिर उ नहीं सकेला निकले। अपन प्राण बचावे खातिर उस जोर जोर से दहाड़ेला।
1: बचावा सा हमरा, इस जाल से निकाल सा हमरा।
0: एगो बकरी उधर से गुजरत रहल। वो बकरी से विनती करेला,
1: ए बकरी बहिन, इस जाल से निकाला हमरा।
0: बकरी जवाब देलक,
2: बाप रे बाप।

0: बकरी डरते डरते हौजा से भाग जाला। तब एगो बांदर उधर से कूदते कूदते आवेला। सिंह बांदर का,
1: ए बांदर भैया हमरा निकाला इस जाल से।
0: बांदर जवाब देलक,
1: नहीं सी राजा तू हम से ठीक हवा।
0: बांदर मुंह बिरा के कूदते कूदते हौजा से भाग जाला। तब एगो चूहा अपन बिल से निकल के आवेला। उसी के बोलेला,
2: ए सिंह राजा ई जाल से तू न निकाला बाकी तू हमरा नहीं खाइयो।
1: चूहा मामू तू बहुत छोटा हवा कैसे निकलब ई जाल से हमरा।
0: सिंह के बोली चूहा मामू के तन को नहीं अच्छा लगल। उ न आओ देखलक न ताओ झट से जाल काट देलक। सिंह जाल से तुरंते बाहर निकलेला। उ बहुते खुशी हो जाला और बोलेला,
1: चूहा मामू छोटा समझ ली हम तोहरा पर तू ही प्राण बचैल आज हमर।
0: उ दिन से दुनो निमन संगतिया बन जालन जा। यही खातिर बोलल जाला कब्बो कोई के छोटा नहीं चाहेला समझे के। छोटा से छोटा जानवर भी बड़ा से बड़ा काम सकी करे।
3: RM3 Radio. Radio. Radio.
4: तो धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के अंत ले चलाई निजा। इस कार्यक्रम में काफी कुछ सुने के मिलल सीखे के मिलल। जैसे एगो किस्सा सुनी जा, एगो दादी की कहानी, फिर साथ में एक दुगो शब्द भोजपुरी के, और जो गीत भी आनल गल उधला भोजपुरी के परंपरा के आगे आने के। हमके सहयोगी जय संगे सुन्नी जा सोहर पर एक दुगो बातचीत और लंबा सोहर गीत।

और लोक कथा जो अभी सुन ला सिंह और चूहा ई हमनी के जो पाठ्यक्रम में है कक्षा पहली कक्षा के ऊपर में बा लड़का लोग के सुनैबा तो लोग ढेर कुछ सीखी ई कहानी से। तो चला संजू भाई के धन्यवाद देव अबजाज हमी के कार्यक्रम में हमेशा नियन हमी के सहयोग दिलन। एगो निमन गीत चुनत हुआन ई गीत गुनगुनाइते हम ये विदाब सा फिर मिलब जागो नवा कार्यक्रम संगे। तबले नमस्ते।

0: Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार, सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 4.8 बिलियन रुपए था। सबसे अधिक निवेश रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख निवेशक देशों में शामिल। वहीं मॉरिशस की ओर से विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। पानी और सीवरेज सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली नॉन डोमेस्टिक ग्राहकों को जल्द ही ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया था। सरकार का कहना है कि अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाएगा। मॉरिशस में कंपनियों के बीच एआई के इस्तेमाल को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। ये पहल मॉरिशस चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उत्तम और किप फॉर मॉरिशस ने मिलकर शुरू की है। इस अध्ययन के जरिए ये जानना जाएगा कि स्थानीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना और किस तरह उपयोग कर रही हैं। अध्ययन के नतीजों के आधार पर ट्रेनिंग और सहयोग की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकी। गुरु पूर्णिमा आज देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। ये दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनके मार्गदर्शन को नमन करने का अवसर है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। वहीं श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु को ज्ञान संसार और सही मार्ग दिखाने वाला माना जाता है। कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मॉरिशस के दोनों खिलाड़ियों ने लॉन्ग जंप की T20 रेस के फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। एडी कब्दो ने 5.5

0: 93 मीटर की छलांग के साथ पांचवा स्थान हासिल किया जबकि दुनवान गबाई ने 5.71 मीटर के साथ छठे स्थान पर वो रहा है। प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल मलेशिया के अब्दुल रोमी ने जीता। विदेश स्तर पर फ्रांस में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार अभियान चला रहे हैं। हालांकि कई इलाकों में आग फिर से भड़क उठी है और अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं। नए हीट वेव के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। वहीं स्पेन में भी भीषण गर्मी और जंगल की आग का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड प्लेन दी रोश में 82 ईयर्स ओल्ड के श्री रामदत्त सुमाका की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके बेटे दोमन सुमाका के मकान रॉयल रोड प्लेन दी रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुए की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। जागृति रोड सत्यामिल त्रियोलोई में 69 साल की जानकी गोकुला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पुनुसोमी, लोग उन्हें सोनी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनके बेटे सुरेंद्र गोकुला के मकान थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Centre 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। बुधवार का दिन है, 29 जुलाई तारीख है आज की। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आज की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। इस वक्त हम बने हुए हैं इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल आज हमारे सभी श्रोताओं को हम गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़ चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं स्वास्थ्य वर्धक बातें, स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी जानकारियाँ। और जैसे आज के समय में हम आधुनिकता की ओर इस कदर इस तेज़ी से दौड़ते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आधुनिकता, ये मॉडर्न जीवन हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है। पर आज भी कई सारी ऐसी प्राचीन पद्धतियाँ हैं जो अभी तक बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से उसकी सारवार भी करती है, देखभाल भी करती है और जड़ से बीमारी को हटाने का प्रण भी लेती है। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी डॉक्टर जो कि आयुर्वेदा चेयर है एट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और भारतीय सरकार द्वारा यहाँ पर अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए आज के इस मंच पर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पूजा सबरवाल का, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और आज हम कह सकते हैं कि इंडियन हाईकॉम के सहयोग से वे बहुत सारे ऐसे कार्य यहाँ पर मॉरिशस में कर रही हैं, और आज हमें सौभाग्य मिला है कि आयुर्वेदा पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। तो पहले तो सर्वप्रथम डॉक्टर पूजा, हम ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताएँ कि आयुर्वेदा क्या है, और साथ ही साथ आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा पद्धति और एलोपैथी की जो पद्धति है उसमें कितना अंतर है।
1: जी, सबसे पहले तो रत्ना जी धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और सभी श्रोताओं को आज, जैसा आपने बताया, आज बहुत पावन एक उत्सव है गुरु पूर्णिमा का, तो उसकी सबको ढेरों बधाइयाँ। तो आयुर्वेद की जो आपने बात पूछी कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु का वेद, मीन्स जो साइंस ऑफ लाइफ, जिस वेद में आयु का ज्ञान है, आयु जिस मतलब हमारी लाइफ, जिसका उसमें ज्ञान है उसको कहते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है एक चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका ओरिजिन भारत में हुआ, और ये पद्धति हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हमें किस तरह की अपना जीवन शैली को रखना चाहिए, दिनचर्या ऋतुचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। ये जो चिकित्सा पद्धति है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो चिकित्सा तो है ही है, पर उससे पहले स्वास्थ्य के रक्षा करना है, जिसका जिसमें बताया गया है आयुर्वेद में, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और उसके उपरांत अगर जरूरत पड़े तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब आतुर के विकार का प्रशमन करना, मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसका उपचार करना। तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि प्रिवेंशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और उसके उपरांत बहुत सारी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं इसके अंदर आयुर्वेद में, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा कि ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति से कैसे डिफरेंट है, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसका जो उद्देश्य मेनली जो रहता है वो एक्यूट ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी, वो सर्जरी में बहुत सारी

0: एडवांसमेंट है, तो कंपैरिजन किसी भी पैथी का किसी पैथी से नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक अपना बहुत कंट्रीब्यूशन है लोगों की जीवन में, उनकी स्वास्थ्य के लिए। और जो आयुर्वेद का जो चिकित्सा पद्धति है वो फोकस उसका रहता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। तो और जब ये दोनों पैथी मिल जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक पब्लिक जो हेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए ये दोनों पैथीज मिलके एक इंटीग्रेटिव जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाती हैं वो हमारी सोसाइटी को बहुत बहुत भारी जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है।
1: बिल्कुल, एक हम कह सकते हैं कि मिराक्यूलस आप देख सकते हैं कि अगर आप दोनों पद्धतियां पैरेलल तरीके से चले तो कहीं ना कहीं
0: जहां पर जिसकी जरूरत है हमें उसको जो है हम
1: बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि केवल आयुर्वेद को फॉलो करें या केवल
0: बिल्कुल
1: ये एक तरह से देखा जाए जैसे आपने कहा कि ये ज्यादा बल देता है प्रिवेंशन पर, यानी आपकी जीवन शैली
0: किस तरह की होनी चाहिए।
1: जी, तो आजकल जब हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमने शुरुआत में कहा कि मॉडर्न लिविंग, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से मॉडर्न बन चुकी है, बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है, और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है इस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। तो धीरे धीरे करते हुए हम जैसे कहते हैं पहले के जमाने में लोग योगी हुआ करते थे, पर आज रोगी का शब्द हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं डॉक्टर पूजा, तो रोग नहीं पर रोग का इलाज जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है, तो ये कैसे काम करता है?
0: जी, तो पहले तो मैं आपका जो है उस चीज का जवाब देना चाहूंगी कि आधुनिक मॉडर्नाइजेशन हो रही है और मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए बहुत किसी एक हद तक बहुत अच्छा भी है। जब ये चिकित्सा पद्धति लिखी गई, जब ये आचार्यों ने लिखा बहुत साल पहले, 5000 साल पहले की चिकित्सा पद्धति है, उस समय ये इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता था। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली पर उसका असर पड़ता है। उसको एक्सेप्ट करते करते हमारे उस चीज़ का असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी हेल्थ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक बैलेंस रखकर हमें मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाना चाहिए और उसके साथ साथ आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाते हुए जहाँ तक भी पॉसिबल हो एक मॉडर्नाइजेशन और एक बैलेंस रखते हुए उसको अपनाना चाहिए। रोगी और रोग की आपने बात पूछी, तो आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो एक यूनिक एस्पेक्ट है, वो है रोगी का ट्रीटमेंट। रोग का तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, रोगी का ट्रीटमेंट, रोगी मतलब एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच से चला जाता है आयुर्वेद में। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है प्रकृति का। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे नहीं करते कि आप ये आपको रोग है, आपको डायबिटीज़ है, आपको स्पेसिफिकली मेनली क्रॉनिक डिजीज़ेस के लिए, जो क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, उनमें मेनली जो हमारा जो टारगेट रहता है हम उसमें पहले उसकी पर्सनलाइज्ड अप्रोच से चलते हैं। पर्सनलाइज मीन्स लाइक उसकी जो प्रकृति होती है उसको हमें पहले हम जांचते हैं कि प्रकृति क्या है। ये भी एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, ऐसे नहीं कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हम किसी की प्रकृति, भारत सरकार ने, आपको बता दूं लास्ट ईयर भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक कैंपेन हुआ था, नेशनल कैंपेन देश का प्रकृति परीक्षण, जिसमें देशवासियों की प्रकृति की परीक्षा की गई थी। उसमें एक ऐप भी लॉन्च किया गया था और उस ऐप के थ्रू एक एक्सटेंड जो प्रोफेशनल्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं प्रकृति देखकर पेशेंट्स की उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए रोग का तो ट्रीटमेंट करना ही है, पर पहले रोगी को जानकर कि उसकी प्रकृति क्या है, वो वात प्रकृति का है, पित्त का है, कफ का है, वात पित्त का है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है।
1: तो जैसे आप प्रकृति परीक्षण की बात कर रही हैं, तो डॉक्टर जी जैसे कैसे पता चले, मतलब आप क्या ये देख कर पता चल सकता है या फिर आपको एग्जामिन करना पड़ता है या फिर उसकी केस हिस्ट्री जाननी पड़ती है?
0: एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा आपको कि ये एक एक्सटेंसिव एक डायग्नोसिस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं देखकर आपकी प्रकृति बता दूंगी। कुछ एक चीज़ें तो हैं जो इंस्टेंट पता चलती हैं, बट यस वहाँ इसका एक बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चनेयर होता है और जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बैठ के पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है क्वेश्चनेयर के थ्रू भी और भी चीज़ों के थ्रू, और उसके थ्रू जो है वो प्रकृति परीक्षण होता है।
1: तो जैसे बेसिकली आपने कहा कि तीन प्रकार की प्रकृतियाँ होती है, तो इस पर आप थोड़ा सा और खुलासा करके बता सकती हैं?
0: जी हाँ जी, तो मैंने जैसे बताया कि मेनली इसमें

0: आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जिसमें कि क्योंकि जो मॉडर्न जो साइंस है उसका जो प्रस्पेक्टिव है ह्यूमन बॉडी का वो डिफरेंट है, और जो आयुर्वेद का जो प्रस्पेक्टिव है जानने का एक मनुष्य के शरीर को, वो एक डिफरेंट प्रस्पेक्टिव है जिसमें ये बताया जाता है कि मेनली तीन दोष होते हैं, बायोलॉजिकल ह्यूमर्स जिसको बोलते हैं हम, तीन दोष होते हैं हमारे मनुष्य शरीर में, वात, पित्त और कफ। जो वात होता है उसका लिटरल मीनिंग होता है मूवमेंट। तो जो वात मींस जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, वात प्रकृति उसको कहते हैं। पित्त, पित्त जो है वो, पित्त का मतलब है पाचन क्रिया, तो पित्त रिफ्लेक्ट करता है पाचन शक्ति को। और कफ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है पोषण, तो किस तरह का उसका पोषण है। तो ये वात, पित्त, कफ के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उसको जांचा जाता है और उसके बेस पे प्रकृति निर्धारित की जाती है पर्सन की, कि उसकी प्रकृति क्या है। उस प्रकृति के अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीटमेंट और डाइटरी जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी जाती हैं, क्योंकि जो वात प्रकृति है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। बस एक जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। अक्सर आप वात प्रकृति के पेशेंट पर्संस देखेंगे जो कि जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से वो लीन एंड थिन होते हैं, बट अच्छा खाना खाते हैं। पित्त प्रकृति का जो पर्सन होता है उसकी पाचन शक्ति ठीक ठाक होती है मतलब, और जो कफ वाला होता है वो भरपूर मतलब उसका ऐसा होता है पोषण उसमें। तो ये एक मैं एग्जाम्पल छोटा सा दे रही हूँ। तो ये वात, पित्त और कफ, बट ऐसा नहीं है कि एक पर्सन में सिर्फ वात ही होता है। उसकी, उसको हम बोलते हैं द्वंद्वज प्रकृति भी हो सकती है और सन्निपातज प्रकृति भी हो सकती है। मींस दो दोष भी हो सकते हैं और तीन दोषों का भी अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है। दो दोषों से सम्मिलित होके ही प्रकृति का निर्धारित होता है कि ये पर्सन जो है वात पित्त प्रकृति का है या पित्त कफ है। वात पित्त का मतलब उसमें वात डोमिनेट कर रहा है और पित्त उससे कम है। पित्त वात का मतलब है पित्त डोमिनेट कर रहा है और वात उससे कम है। इस तरह से जो है वो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है। और भारत सरकार में इसके ऊपर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक हाई लेवल का प्रोजेक्ट भी आयुर्जेनोमिक्स करके जो है वो चल रहा है। उसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे, बताएंगे।
1: तो डॉक्टर जी, जैसे आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वात प्रकृति का हो, क्या उसमें ये वात की जो प्रकृति है ये फ्लक्चुएट हो सकती है या शिफ्ट हो सकती है, या कभी ऐसा होता है कि वात से वो चेंज होके फिर अब वो कफ की ओर बढ़े या कफ से चेंज होके?
0: जो प्रकृति होती है जब वो एक बार जन्म के बाद निर्धारित हो जाती है वो नहीं बदलती। प्रकृति जो है वो प्रकृति ही रहती है। जब कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसको हम विकृति बोलते हैं। तो वो विकृति जो है वो सर्टनली हो सकती है। और यही मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहा है कि प्रकृति जो है, अगर मैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट होता है। जीनोटाइप होता है आपका जो जेनेटिक कोड है वो जब निर्धारित हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता, और जो फिनोटाइप होता है वो चेंज हो सकता है, जिसको हम फिनोटिपिकल एक्सप्रेशनल चेंजेस कहते हैं, जो कि आज की जो मॉडर्न साइंस है एपिजेनेटिक्स, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, उसमें भी बताया गया है कि हमारी डाइट और हमारा एनवायरनमेंट और स्ट्रेस फैक्टर जो है वो किस तरह से हमारे जेनेटिक जो एक्सप्रेशन है उनको जो है वो चेंज करता है, कर सकता है। तो इसी तरह से जो प्रकृति है वो नहीं चेंज होती, बट विकृति जो है वो होती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स, अकॉर्डिंग टू डाइट और इस तरह से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है जो कि चल रही है, और उसमें काफ़ी पब्लिकेशंस भी और एविडेंसेस हैं।
1: तो डॉक्टर जी, जैसे हम खान पान की बात करते हैं और ऋतु की बात करते हैं, जैसे ही थोड़ा भी वेदर में चेंज आता है, खान पान में बदलाव आता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो क्या ये भी एक तरह से हमारी प्रकृति को बदलने में, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि विकृति को ये चेंज करता है, शिफ्ट करता है, तो इस पर आप थोड़ा
0: सर्टनली, यही मैंने आपको बताया कि आधार है आयुर्वेद का, जिसमें जो उसका बेस है आयुर्वेद का कि वो दिनचर्या और ऋतुचर्या, इस पे बहुत एम्फेसिस किया जाता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या का हमारी डे टू डे लाइफ का, हमारी बॉडी पे हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी खा लें, है ना, और बस पेट भरना है ना, तो और चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, है ना, ना ही हम अपना जो है वो बॉडी की बात सुनते हैं। बॉडी हमें सिग्नल्स देती है बीच बीच में, हम उसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते जाते हैं तो वो क्रॉनिक जो है वो डिपोजिशन हो जाती है टॉक्सिन्स की, चाहे वो फिजिकल टॉक्सिन्स हों या चाहे वो मेंटल टॉक्सिन्स हों। तो वो उसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना भी ज़रूरी है, उसके लिए बाद में हम चर्चा करेंगे। बट ये आपका जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, दिनचर्या और ऋतु

0: दिनचर्या, दिनचर्या का हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है. जिस तरह का भी हम दिनचर्या रखेंगे उस तरह वही इम्पैक्ट हमारी बॉडी में रहता है. और ऋतुचर्या, ऋतुचर्या मीन्स कि सीजन्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मॉरिशस में विंटर सीजन चल रहा है, अगर हम ठंडे पेय पदार्थ लेंगे या जो है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी पे उसका गलत इम्पैक्ट होगा. तो विंटर सीजन में अलग तरह का एक फॉलो करना चाहिए डाइटरी पैटर्न. उसके लिए स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं आयुर्वेद में, तो उसको फॉलो करना चाहिए और वो भी प्रकृति के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको फॉलो करना चाहिए. ये नहीं कि एक चीज़ अगर एक प्रकृति के लिए सही है तो वो सभी प्रकृति के लिए. हो सकता है आपकी प्रकृति मेरी प्रकृति से डिफरेंट है, तो मुझे विंटर सीजन में कुछ और डाइट लेना है और आपको कुछ और लेना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो स्वस्थ रहे,
1: अकॉर्डिंगली शिफ्ट होती है.
0: तो इसलिए इन दोनों चीजों का दिनचर्या और ऋतुचर्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, बहुत एक्सटेंसिव है. ऐसा नहीं कि मैं आपको एक कुछ शब्दों में बता सकती हूँ, बहुत एक्सटेंसिव इसके ऊपर जो है डेप्थ
1: है. और डॉक्टर जी, हम ये कह सकते हैं कि दिनचर्या जो है वैसे तो रूटीन जो हमारा काम होता है, पर क्या ऋतुचर्या के अनुसार दिनचर्या में भी परिवर्तन आता है?
0: ऋतुचर्या जब आप सीजनल चेंजेस होते हैं तो सीजन के साथ साथ हमारी दिनचर्या, कुछ एक चीज़ें तो बेसिक रहती हैं बट कुछ जैसे हमारा डाइटरी मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली ऋतु के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है
1: और वो होना भी चाहिए. होना भी चाहिए बिकॉज क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब मान लीजिए गर्मियों का सीजन है तो हमें उतनी भूख नहीं लगती, पर विंटर का सीजन आते ही हमारा जो खाने का टाइमिंग है वो बदलता है,
0: वो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है.
1: जी चलिए, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा पर, और आयुर्वेदा आज के जीवन में भी उतना ही आवश्यक है और उसकी जानकारी रखना. और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि चाहे वो प्राचीन पद्धति हो या फिर आधुनिक पद्धति, पद्धतियाँ हर एक पद्धति हमारे स्वास्थ्य को लगकर आगे बढ़ी हैं और आज भी आगे बढ़ती जा रही हैं. कई सारे ऐसे रिसर्च किए गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा असरकारक भी होती हैं, और साथ ही साथ इन दोनों की जानकारी रखना भी उतना ही आवश्यक है. और प्राचीन पद्धतियाँ आज भी उतना ही महत्व रखती हैं चाहे कितने भी हम मॉडर्न क्यों ना हो जाए. और आज के इस कार्यक्रम में, जी हाँ, हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पूजा सबरवाल जो भारतीय हैं और यहाँ पर बिल्कुल आयुर्वेदा चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में स्थित है. साथ ही साथ अभी अपनी सेवा दे रही हैं और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ साथ भारतीय सरकार द्वारा भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और हमारे मॉरिशस में आज वे आयुर्वेद को लेकर बहुत ही कार्य कर रही हैं. तो चलिए हमारे साथ बने रहें, अभी थोड़ी ही देर में गीत का ब्रेक लेते हैं और गीत के ब्रेक के बाद कार्यक्रम को जारी रखते हैं.

0: आज की चर्चा कार्यक्रम। और आज हमारे साथ डॉक्टर पूजा सबरवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि आयुर्वेदा चेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में। और आज हमारे साथ है यहाँ पर आयुर्वेद पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आज के आधुनिक जीवन में भी हमें उतना ही फायदा देती है। भले उसका कह सकते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर फिर भी कहते हैं ना कि जड़ से अगर किसी चीज़ को ठीक करना है तो आपको ये स्लो प्रोसेस में भी बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको इसमें मान्यता मिलती ही है। और इसी के साथ आज हमारे साथ डॉक्टर पूजा है, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर पूजा, जैसे हम थोड़ी देर पहले दिनचर्या की बात कर रहे थे, तो एक नॉर्मल जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, लेकिन जो एक नॉर्मल हेल्दी दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए आपके अनुसार?
1: रत्ना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हमें आयुर्वेद जो है वो मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और क्रॉनिक डिजीज़ेस पे काम करता है
0: जी।
1: तो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं वो एक दिन में उत्पन्न नहीं होती
0: हैं। सही बात।
1: जैसा थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे फिजिकल टॉक्सिन्स जो अकमुलेट होते हैं,
0: हाँ,
1: वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक स्लो प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी में
0: कितने
1: सालों से वो अकमुलेट होते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: और वो कैसे अकमुलेट होते हैं, जब हम अपनी दिनचर्या को, आपके क्वेश्चन के साथ इसको मैं आपके
0: जोड़ रही हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आयुर्वेद जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता
1: जी,
0: है
1: जी, ऐसा धीरे धीरे जरूर करता है, बट वो धीरे धीरे उसी पे काम करता है जो धीरे धीरे उत्पन्न हुई है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जैसे हम यंग होते हैं या फिर जब हम भागम भाग में जिंदगी में अपनी काम पे लगे होते हैं, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ जो है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं रखते। हम क्या खा रहे हैं, हम जो उपयुक्त मात्रा जो हमें चाहिए उस पर खा रहे हैं या नहीं खा रहे, सही तरीके से जो भोजन करने का जो टाइम पीरियड है जिसको काल भोजनम बोला गया है कि सही वक्त पे जो है हमें खाना चाहिए, या फिर जो स्ट्रेस एक फैक्टर है जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, या फिर जो भी एक्सरसाइज हमें बताई हुई है योगा के फॉर्म में करना चाहिए या कोई भी एक्सरसाइज, तो ये जब चीज़ों का हम नियमित रूप से पालन नहीं करते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी में वो अकमुलेट होती हैं टॉक्सिन्स के फॉर्म में, जिसको हम आज की डेट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो जब ये धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं स्लो, मतलब ओवर द ईयर्स ये हमारी बॉडी में
0: जमा होती जाती हैं
1: और डिजीज़ का जो है वो फिर मैनिफेस्टेशन जो है वो होता है। तो इसलिए जो आयुर्वेद है, इसीलिए आयुर्वेद स्लो इसलिए है क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड अप्रोच से चलता है, और पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ साथ वो रोगी को ठीक करता है। रोग को तो ठीक करता ही करता है, तो रोगी को ठीक करता है, तो इसलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, बट ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। दूसरी बात दिनचर्या, तो दिनचर्या में जो बेसिक आपने कुछ बोला है कि टिप्स दें, तो दिनचर्या में बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं सही वक्त पे जगना, एक सही वक्त पे अपना जग कर, अपना जो नियमित जो चीज़ें हैं स्नान करना, और अच्छे से जो भी आपका एक

0: पौष्टिक आहार है उसको लेना, कुछ कोई ना कोई एक एक्टिविटी दिन में हमारी होनी चाहिए फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी। फिजिकल हेल्थ के लिए जैसा मैंने बताया योगा जो है, जिसके लिए आपको कोई किसी भी तरह की जिम की आवश्यकता नहीं है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। डीप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए दिन में। आप गाते हैं तो गाना गाइए, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। और एक दो चीज़ें जैसे कि कुछ एक चीज़ों को जैसे अगर हम अपनाते हैं, मैंने देखा कि माइग्रेन का इशू मॉरिशस में कई लोगों से सुना कि माइग्रेन है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक टिप है आयुर्वेद में, एक प्रतिमर्श नसे मीन्स डेली जो हम नसे लेते हैं, मतलब नेज़ल जो एक ऑयल होता है तो उसको ऑयल को नोज़ में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग ये करते थे, कर्ण पूर्ण हो गया, नसे हो गया, तो ये चीज़ें हमें लगता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है बट इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है बहुत अच्छा होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, इनसोमनिया की प्रॉब्लम, जैसे नींद ना आना है ना, ये बहुत एक नॉर्मल आजकल
1: पर बहुत सारे लोगों को, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली और यहाँ पर शुगर फील्ड बहुत ज्यादा है
0: जी,
1: तो जैसे ही वो पोलिनेशन होता है तो बहुत सारे लोगों को साइनस जैसी एलर्जी जैसी
0: प्रॉब्लम होती है। तो उसमें इंस्टेड ऑफ हैविंग हैवी डोज ऑफ मेडिसिन है ना, और आप अपने लिवर को जो है वो परेशान करें, अच्छा है कि आप एक लोकल एप्लीकेशन जो ऑयल्स होते हैं, मेडिकेटेड ऑयल होता है, नहीं भी होता तो आप घी भी ले सकती हैं, घी घरों में उपलब्ध होता है, तो घी को भी हल्का हल्का जो है वो नस्से के फॉर्म में लगा सकते हैं नेजल अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली टिप्स में, और किचन को तो आयुर्वेद में कहा गया है कि वो फार्मेसी है हमारी, तो किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं बट वो नियमित जो है एक कैलकुलेट बैलेंस वे में उसको, ये नहीं कि हल्दी अच्छी है तो उसको हमने बहुत एक्सेस मात्रा में यूज़ करना है। हल्दी है, जीरा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अजवाइन है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके, और फिर अगेन वो प्रकृति के अनुसार, तो दिनचर्या को अपना अच्छा रख के, अच्छा काम जब भी हम वर्क प्लेस पे हों तो अपना एक हेल्दी एटमोसफियर बनाकर, और इंडिया में तो एक वाई ब्रेक भी इंट्रोड्यूस किया गया, वाई ब्रेक मीन्स योगा ब्रेक 5 मिनट का, अभी आप अपने चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर ही वाई ब्रेक लेके 5 मिनट का, तो एक अपने आप को रिलैक्सेशन, तो मतलब ये नहीं कि हर वक्त काम तो करना ही करना है, तो उसके बाद शाम को जैसे कुछ भी आपका जो हल्का रूटीन है एक्सरसाइज का वो करके, और समय से खाना खाकर, और नींद प्रॉपर लेना। नींद जो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आयुर्वेद में 3 जो हैं वो बताए गए हैं चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार मीन्स डाइट, निद्रा ब्रह्मचर्य। तो निद्रा जो है वो एक मीन्स साउंड स्लीप। यहाँ देखा मैंने मॉरिशस में डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट्स हैं, तो डायबिटीज़ में भी निद्रा का और आहार का बहुत ही एक इम्पैक्ट है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपनी दिनचर्या को करना चाहिए।
1: बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमने ज़्यादा कर लिया, एक्सेस फॉर्म में ले लिया, यानी आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, या बहुत जितना खाना चाहिए उतना ना खा के हमने बहुत कम मात्रा में लिया, या फिर ज़्यादा सोना, अधिक भी सोना या बहुत कम सोना।
0: देखिए हर चीज़ जो है ना वो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न उसमें होनी चाहिए, बैलेंस उसमें होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मैंने आपको बताया कि कुछ भी जो हम लेते हैं, कुछ जो भी चीज़ होती है, एक मात्रा उसके लिए होना आवश्यक, निर्धारित आवश्यक है। कुछ जो बहुत अच्छी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हम उसको लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिन, विष का रूप धारण कर लेती है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर मात्रा में चीज़ को लेते हैं तो वो अमृत है, और अमृत को भी अगर हम बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है विष का,
1: शरीर का नुकसान करता है। तो बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी ऐसा ही है कि जैसे हम, आप मान लीजिए जब हम आधुनिक पद्धतियों वाली जो दवाइयाँ हैं उसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के या फिर अधिक मात्रा में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है, तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसा होता है कि जो नेचुरल चीजें हम ले रहे हैं अगर कहीं अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या उसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम पहले इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि जो भी आयुर्वेद में नेचुरल चीजें भी अगर जो बताई गई हैं वो भी एक एक्सपर्ट के परामर्श से ही उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक चीज कोई अच्छी है तो हम बहुत ज्यादा एकदम से हेल्दी हो जाएं और इमॉर्टल कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए जो भी चीजें हैं, जो भी आयुर्वेद में भी नेचुरल जो रिकमेंडेशंस बताई गई हैं उनको भी एक सही मात्रा में और एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ ही जो है वो लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आयुर्वेदिक चीज़ है या नेचुरल चीज़ है तो ये बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता।
1: तो जैसे हमारी जो रूटीन है, जो हम खाना खाते हैं,

0: हैं, भोजन लेते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग मांसाहारी भी हैं, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, और आज अभी एक नया वर्ड भी आया है वीगन, यानी कम्प्लीटली वेजिटेरियन में भी एक अलग सा फॉर्म है जहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लिए जाते या एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लिए जाते, तो इसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जैसे डॉक्टर जी, जब हम खान पान की बात करते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे लोग आज रोगी हैं, जैसे खान पान भले हम सही मात्रा में लेते हैं, नींद भी जैसे तैसे ले लेते हैं, पर फिर भी हम रोगी बनते जा रहे हैं। जैसे हम इस पर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि जैसे खान पान भी किस तरह से हमें रोग की ओर धकेलता है।
1: देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो निर्धारित होते हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप जो हैं वो रह रहे हैं, खान पान अगर अच्छा है आपका तो कहीं ना कहीं वो हेल्प तो करता ही है आपको स्टे अवे रहने से जो डिजीज़ेस हैं। ऐसा नहीं है कि खान पान अच्छा होने के बावजूद भी, नींद भी अच्छी होने के बावजूद रोगी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग। तो कुछ ना कुछ अदर फैक्टर्स होंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर हो गया, या फिर कुछ जेनेटिक इशूज़ भी होते हैं, जेनेटिकली आप जो हैं वो इंक्लाइंड हैं उन डिजीजेस की तरफ, तो वो फैक्टर्स को भी जो है वो मद्देनजर रखना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना कि जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो है वो फैमिली हिस्ट्री उसके जो है वो बहुत उसका एक इम्पैक्ट रहता है। तो अगर आपकी फैमिली में इस तरह की कोई हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या इवन कुछ एक और कुछ ड्रेडफुल डिजीजेज हैं, ब्रेस्ट कैंसर है ना, तो ऐसी चीज़ों को अगर आप जानकारी आपके है आपके पास, तो आपको एक सही वक्त पे ही, हम सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम 40s के पार हो जाते हैं, तो तब हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको एक बहुत एक अच्छा सुंदर कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद में बताया गया है वो, और जो मॉडर्न साइंस भी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, कि जो डिजीज़ की उत्पत्ति होती है ना, वो फीटस में ही लिख दी जाती है। जब फीटस की उत्पत्ति होती है, जब वो बन रहा होता है, पल रहा होता है, आयुर्वेद में उसके लिए 6 भाव बताए गए हैं, मातृज, पितृज, रसज, सत्वज, सातमय, आत्मज, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि जब वो पैदा हुआ तब उसको रोग हुआ, नहीं, उसको कहते हैं वो एडल्ट में जब चला जाता है तो वो मैनिफेस्ट करता है, और इसके लिए बड़ी सुंदर टर्म जो है वो मॉडर्न साइंस में बताई गई है, FOAD, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेज। तो इसलिए जो प्रेगनेंट जो महिलाएँ हैं उनको भी, और सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं, जो पिता है मतलब उसको भी अपनी, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट गर्भ संस्कार का है, फीटल प्रोग्रामिंग का है, वो आयुर्वेद में बहुत प्रचलित है भारत में, फीटल प्रोग्रामिंग, कि हमें माता पिता को तैयार करना है, कपल प्रेपरेशन, कि वो इस तरह का हो कि उनको, चलिए जेनेटिक जीन्स जो हैं वो नहीं चेंज होंगी, बट येस क्वालिटी जो है, जो उसका एनवायरनमेंट है, रस रसज है, आत्मज, सत्वज, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी। तो कहने का मतलब, जो आपने फैक्टर पूछा कि सब कुछ सही होते हुए भी कैसे ये हो जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं एक तो जेनेटिक्स में रन करती हैं, और प्लस जो फीटस पैदा होता है उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला, माता की तरफ से, पिता की तरफ से, तो वो फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस, मतलब जब एडल्ट हुआ वो, तो फीटल लाइफ में उसके क्या ऐसे एपिसोड्स हुए जिसका इम्पैक्ट उसकी फीटल ग्रोथ पे पड़ा। तो ये भी एक फैक्टर्स होते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता। इस तरह की एक स्टडी हमने करी, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भारत में, हमने नैश रिलेटेड जो एक लिवर सिरोसिस होता है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था कि वो पेशेंट्स जो नॉन अल्कोहलिक हैं, जो
0: हेल्दी
1: खाते हैं, उनको कैसे ये सिरोसिस प्रॉब्लम, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली हमने स्टडी करी, तो वो पता चला कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, एनवायरमेंटल, कुछ मदर ने कुछ ऐसी मेडिसिंस खाई जो आगे चल के या फैमिली में रन कर रहा था, तो ये एक उसमें फैक्टर होता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें लगता है कि एक अप्रोप्रिएट इवेंट 25 की एज में ही जाकर हमने अपने आप को एक अच्छा डाइटरी पैटर्न, एक अच्छा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपकी वो जीन्स में भी कहीं ना कहीं वो अगर है, तो उसको हम कंट्रोल कर सके।
0: बिल्कुल, यानी एक तरह से देखा जाए तो ना केवल फिजिकली बट मेंटली भी आपको हेल्दी रहना होगा।

और जैसे एक मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि एक फीटर्स के ग्रोथ के लिए भी ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली भी कहीं पर अगर कुछ ना कुछ इधर उधर होता है तो ये उस पर इम्पैक्ट जरूर करता है। तो ये आगे चलकर जैसे एक बच्चे की जो जीवन होती है, जीवन शैली होती है, वो उसमें परिवर्तित होती है और धीरे धीरे करते हुए कहीं ना कहीं ये जरूर आगे चलकर दिखाई देता है कि क्यों ये रोग हुआ, या इतना सारा हेल्दी रहने के बावजूद, इतना हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कनेक्शन हुआ जो बहुत पहले जब उनके जन्म के समय ये सारा कुछ हुआ, इसीलिए ये सारा कुछ इम्पैक्ट। बट इसमें भी एक लंबी सी रिसर्च, जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि रिसर्च से ही इसे पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, आज हमारे साथ डॉक्टर पूजा सबरवाल है और बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में हम ये भी जानेंगे कि जीवन है आजकल जैसे डिटॉक्स शब्द, डिटॉक्स करना हमारे शरीर को, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन का भी डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस पर थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में।

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम में आयुर्वेद पर आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं जो इस प्राचीन पद्धति के साथ जुड़ी हुई हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं। पर अगर आपको अचानक से ये चीज़ें सामने आ जाए तो लगता है कि ये आज की बात है, लेकिन प्राचीन पद्धति जो है वो हमारे बहुत हज़ारों वर्ष पहले लिखा गया ये ग्रंथ है। और एक तरह से देखा जाए तो आयुर्वेद जो है वो बहुत पहले, जहाँ पर आधुनिक पद्धति ने जन्म भी नहीं लिया था, वो उससे भी बहुत पहले। और जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूजा जी ने एक शब्द यूज़ किया, लंघन करना। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मॉडर्न साइंस इसे प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन आयुर्वेदा इसे बहुत पहले सहमति दे चुका है। आइए जानते हैं डॉक्टर पूजा जी से। पूजा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने लंघन का शब्द प्रयोग किया, तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बताएं।
1: जी, तो लंघन जो है, देखिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसका एक बहुत ही भारी इसका जो है इम्पैक्ट बताया गया है। लंघन पद्धति है मींस फास्टिंग करना। आप जानते हैं आज के युग में इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना, ये जो कॉन्सेप्ट है इन है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारी डिजीजेज में जो है हेल्पफुल करती है। ऑफकोर्स ये हेल्प करती है, और यही चीज़ जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में लंघन के रूप में बहुत पहले बताई गई कि अगर आप कुछ एक जो डिजीजेज हैं, जैसे कि ज्वर है मींस फीवर, प्रतिशाय हल्का सर्दी जुकाम है ना, और साथ में अगर अजीन मींस एसिडिटी अक्सर हमें रहती है, कुछ ना कुछ इधर उधर से खा लिया पी लिया, तो उसमें लंघन जो है वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति बताई गई है जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, और फास्टिंग। सो फास्टिंग से हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बीमारियों को हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। डिजीज़ मतलब एक, अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब फीवर, नॉर्मल फीवर जैसे हमारा होता है, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है, हल्की फुल्की एसिडिटी होती, ये भी नहीं मैं कहती कि हाँ भाई आपको जो है उसको इग्नोर करना है, आपका परसिस्टेंट फीवर चल रहा है या परसिस्टेंट जो आपकी एसिडिटी चल रही है कंसिस्टेंटली अगर आपको बनी हुई हैं वो चीज़ें, सर्दी जुकाम भी बना हुआ है उसमें नहीं, जो एक सीजनल जो चीज़ें होती हैं कि सीज़न चेंज हुआ, हल्का फुल्का फीवर हुआ।

0: अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब फीवर नॉर्मल फीवर जैसे हमारा होता है, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है, हल्की फुल्की एसिडिटी होती है, ये भी नहीं मैं कहती कि हाँ भाई आपको जो है उसको इग्नोर करना है, आपका परसिस्टेंट फीवर चल रहा है या परसिस्टेंट जो आपकी एसिडिटी चल रही है कंसिस्टेंटली अगर आपको बनी हुई हैं वो चीज़ें, सर्दी जुकाम भी बना हुआ है उसमें नहीं, जो एक सीजनल जो चीज़ें होती हैं कि सीज़न चेंज हुआ, हल्का फुल्का फीवर हुआ, ऐसा चल रही है, तो गट ब्रेन एक्सिस की बात होती है, वेगस नर्व की बात होती है, तो अगर आप अपनी गट को रेस्ट देते हैं लंघन के थ्रू, फास्टिंग के थ्रू, तो आप देखिएगा, आप इसको आज़मा के देखिए, एक दो महीना आज़मा के देखिए, आपको एक मेंटल क्लियरेंस भी मिलेगी और आपकी गट को रेस्ट मिलेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक बहुत अच्छा होगा, और जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण साबित होगा अगर वो करते हैं तो।
1: बिल्कुल, और मैं समझती हूँ

0: बात से सहमत होंगे कि ये जो फास्टिंग की जो पद्धति है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, और जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हर एक पर्व में कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि आज हमारा व्रत है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन कुछ नहीं खाना ये एक तरह से देखा जाए तो फास्टिंग, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं आज के ज़माने में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और एक तरह से देखा जाए तो आज हम ये कहते हैं कि आज मेरा व्रत है, लेकिन आज भरपेट खाना खाते हैं, व्रत के दिन कुछ ज़्यादा खाना खाते हैं। आज उसका जो सिग्निफिकेंस है वो पूरी तरह से हमने बदल दिया कि आज तो व्रत है।
1: फास्टिंग जब भी बताई गई वो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक जो है वो बैकग्राउंड था, रीजन था कि आप अपना जो है वो पाचन तंत्र को आराम दीजिए कुछ वक्त के लिए। और हम जो है वो अभी आजकल क्या
0: समझते हैं कि व्रत है तो मतलब आज के दिन हम मतलब जो नमकीन खाना है वो नहीं खाएंगे, बट मीठा तो खा ही सकते हैं या फिर कुछ ऐसा तो ले ही सकते हैं, मतलब भूखा नहीं रहना है। लेकिन एक तरह से फास्टिंग जो है वो हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ऊर्जा जनक बनाना है।
1: जो अभी जो नोबेल प्राइज एक मिला वो ऑटोफेजी पे मिला कि जो खुद की जो आपकी जो बॉडी है वो आपको डिजीजेस से बचाती है, और तो ये एक बहुत साइंटिफिक चीज है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दिया गया उसको।
0: उसके पीछे जो मतलब हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जब वो उस पर भी रिसर्च किया गया था बाकायदा, उस पर जो जो ग्रंथ लिखे गए या जो भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो भी रिसर्च की उस पर उन्होंने लिखा है,
1: जो भी उनके पास उस टूल्स थे या जो भी उनके पास जानकारी थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको जो है वो एक्सपेरिमेंटल
0: तरीके से
1: उन्होंने उसको लिखा है।
0: बिल्कुल
1: जी, जिसको आज के युग में हम जो है सरकार भी बहुत रोबस्टिक रिसर्च के थ्रू उसको डॉक्यूमेंट कर रही है एविडेंसेस के थ्रू।
0: जी, तो आज के बिल्कुल हम कार्यक्रम के समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं। डॉक्टर पूजा, हम जरूर आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक शब्द में अगर हम वाइंड अप करना चाहें आज के इस प्रोग्राम को, तो आप इस पर आप क्या जानकारी?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी प्रकृति को जानिए, प्रकृति के अकॉर्डिंगली और अपनी ऋतु के अकॉर्डिंगली, सीजन के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, और एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए, आयुर्वेदा एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए, और उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करते हुए, स्ट्रेस भी इनएविटेबल है डेली लाइफ में, हमारे स्ट्रेस होता ही होता है, मैं ये नहीं कह सकती कि स्ट्रेस नहीं होता, तो अपनी फिजिकल हेल्थ जो कि आपके हाथ में है, फिजिकल हेल्थ, अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल, जितना भी हो सकता है एक्सरसाइज, योगा, जो भी करते हैं, मेंटल हेल्थ को अपने जो है वो उसके ऊपर भी वर्कआउट करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो सकता, उसको मैनेज कीजिए, और जो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाइए, अपनाते हुए स्वस्थ रहिए और अपना खुशहाल जीवन जो है अपना बिताएं।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर पूजा सभरवाल जो आयुर्वेदा चेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और भारतीय सरकार द्वारा भी यहाँ पर स्थित हुई हैं और यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ आज जुड़ी। तो इसी के साथ जितने भी श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुना आपको भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डॉक्टर पूजा को दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ एक और अन्य कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: Check your time. It's exactly 4 p.m. आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. नमस्कार.
1: नमस्कार. 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में 22% की बढ़ोतरी, ये बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 4.8 बिलियन रुपए था. सबसे अधिक निवेश रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है. फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख निवेशक देशों में शामिल हैं. वहीं मॉरिशस की ओर से विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पता चलता है कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है. पानी और सीवरेज सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को जल्द ही ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया. सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाएगा. मॉरिशस में कंपनियों के बीच AI के इस्तेमाल को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है. इसके जरिए ये जाना जाएगा कि स्थानीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना और किस तरह उपयोग कर रही हैं. अध्ययन के नतीजों के आधार पर ट्रेनिंग और सहयोग की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके. गुरु पूर्णिमा आज देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है. ये दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनके मार्गदर्शन को नमन करने का अवसर है. मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है. वहीं श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं. भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि गुरु को ज्ञान, संस्कार और सही मार्ग दिखाने वाला माना जाता है. फ्रांस में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं. कई इलाकों में आग फिर से भड़क उठी है और स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं. नए हीट वेव के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं स्पेन में भी भीषण गर्मी और जंगल की आग का खतरा बना हुआ है, जहाँ पिछले एक हफ्ते में 70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ.
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening.

0: दिल से मिले दिल हमारा ये प्रोग्राम जहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल गाने, कुछ गाने ऐसे जो आपको 90s की महक दिलाते हैं और कुछ गाने ऐसे जो शायद आपके दिल में कहीं छुपकर बैठे हुए हैं। सो उन्हीं गानों को एंजॉय करने का टाइम आ गया है और वक्त ये हो चला है जहाँ पर आपने भी काम ख़त्म कर लिया है। मोस्ट ऑफ हमारे लिसनर्स इस वक्त काम ख़त्म करते हैं और कुछ दोस्त जो घर से ही हमारा साथ निभाते हैं। सो जहाँ कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, गुड म्यूज़िक आपके लिए और कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को हम बहलाएंगे। मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। चलिए कुछ गाने आपके लिए हम चलाने वाले हैं और अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो नंबर आप जानते हैं, इट्स 5250-6200-5250-6200।
1: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है,

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: जैसे कहते हैं दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी और बिल्कुल निभाएंगे दोस्ती मरते दम तक हमारे से बिजनेस जो साथ दे रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर आपके लिए कुछ खूबसूरत गीतों का कारवां 4 से लेकर 5 बजे तक लेकर आए हैं प्रोग्राम दिल से मिले दिल और सीधा आपके दिल तक पहुंचने हमारे गाने भी है ऑल सेट ऑल रेडी फ्रॉम द फिल्म जुड़वा ये गाना आप सभी के नाम कविता कृष्णमूर्ति कुमार सानू की आवाजें नरसिम्हा फिल्म का गाना आपने सुना और उसमें सुनी आपने आवाज़ें उदित नारायण अलका याग्निक की And now it's time to celebrate ये एक beautiful duet जो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं चलिए दोस्तों साथ निभाने के लिए शुक्रिया messages dedications 5250 6200 5250 6200

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. साजन चले ससुराल के बाद इट्स टाइम कि हम ये एक प्यारा सा गाना आपके लिए चलाए. फिल्म है जीत, आवाज़ है विनोद राठौड़ अलका याग्निक की. दैट्स यारा ओ यारा हमारे सभी लिसनर्स के नाम. रेडियो मनोरंजन पर आपके लिए प्रोग्राम दिल से मिले दिल साथ रहेगा आपका और मेरा शाम के 5 बजे तक. अभी के लिए चला रहे हैं ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, अब इसी गाने के साथ वक्त हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा, और आपने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया ऑन रेडियो मनोरंजन, तो प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे।

और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बस आपका साथ है खास एंड स्पेशल जैसा हम हमेशा कहते हैं सो यहां पर हमारा साथ निभाने के लिए धन्यवाद ऑन रेडियो मनोरंजन मुलाकात होगी आपसे जल्द इसी प्यारे रेडियो स्टेशन पर तब तक के लिए कुछ प्यारे गाने कुछ प्यारे शोज फॉर नाउ उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजें और राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम दिल से बस यही कहना चाहते हैं कि

0: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे ही श्री से युक्त गुरु को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। श्रोताओं, गुरु को ब्रह्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा के समान जो ज्ञान का सृजन करने वाले हैं। गुरु विष्णु तुल्य है क्योंकि वे ज्ञान का पालन करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले हैं। गुरु को महेश्वर कहा गया है क्योंकि वे अज्ञान का नाश करने वाले हैं। सच्चे गुरु ही ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अपने शिष्य का पथ प्रदर्शन करते हैं और उनके लक्ष्य की प्राप्ति कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकहिए कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राज भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकहिए कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। पिछले कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर हमने महर्षि वेद व्यास के जीवन, उनके अद्भुत ज्ञान और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अमूल्य योगदान की प्रेरणादायक कथा सुनी थी। महर्षि वेद व्यास ने वेदों का विभाजन कर महाभारत, पुराणों और अनेक ग्रंथों की रचना कर ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया था। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज उसी पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम स्मरण करेंगे ऐसे गुरु का जिन्होंने केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया बल्कि एकाग्रता, अनुशासन, सत्य निष्ठा और कर्तव्य का भी पाठ पढ़ाया। वे गुरु थे महर्षि द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य केवल हस्तिनापुर के राजगुरु नहीं थे बल्कि ऐसे आदर्श शिक्षक थे जिनकी शिक्षा

0: ने अर्जुन जैसे शिष्य को इतिहास का महानतम धनुर्धर बनाया। उनके प्रसिद्ध चिड़िया की आंख वाली परीक्षा आज भी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रहस्य प्रतिभा में नहीं बल्कि लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्रता और निरंतर अभ्यास में छिपा है। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी अनकही कहानी महर्षि द्रोणाचार्य के जीवन और उनके शिक्षण दर्शन पर आधारित है। एक ऐसी प्रेरक कथा जो बताती है कि एक महान गुरु केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि अपने शिष्यों के चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन का निर्माण भी करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अनकही एक कहानी में हम जानेंगे कि गुरु का मार्गदर्शन और शिष्य की एकाग्रता मिलकर कैसे असंभव को भी संभव बना देती है। तो महर्षि द्रोणाचार्य की कथा इस प्रकार शुरू होती है। हस्तिनापुर के राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का भार महर्षि द्रोणाचार्य के कंधों पर था। आचार्य द्रोण केवल अस्त्र शस्त्र की कला ही नहीं सिखाते थे बल्कि अपने शिष्यों के चरित्र और मानसिक बल को भी गढ़ते थे। जब कौरव और पांडव कुमारों की प्रारंभिक धनुर्विद्या शिक्षा पूरी हुई तब गुरुदेव ने उनकी एकाग्रता और लक्ष्य भेद की क्षमता को परखने का निर्णय लिया। आइए उसी ऐतिहासिक आश्रम में प्रवेश करते हैं जहां द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्यों की परीक्षा ले रहे हैं। आश्रम का शांत वातावरण है। गुरु द्रोणाचार्य वृक्ष के नीचे खड़े हैं और सभी कौरव पांडव राजकुमार हाथ में धनुष बाण लिए सामने पंक्तिबद्ध खड़े हैं। वृक्ष की ऊंची शाखा पर एक नकली चिड़िया रखी हुई है और उस नकली चिड़िया की ओर उंगली से उन सभी कुमारों को दिखाते हुए गुरु द्रोणाचार्य करकदार और गंभीर स्वर में कहते हैं,
1: मेरे प्रिय राजकुमारों, आपकी शस्त्र शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। आज आपकी अंतिम परीक्षा का समय है। वह सामने वृक्ष की शाखा पर स्थित कृत्रिम पक्षी चिड़िया को देख रहे हो। तुम्हें बाण से ठीक उसकी आंख में बींधना है। युधिष्ठिर, आगे आओ और निशाना साधो। बाण चलाने से पूर्व मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है?
0: गुरुदेव, मुझे वह चिड़िया, यह विशाल वृक्ष, आप और मेरे सभी भाई स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
1: हटो हटो युधिष्ठिर, तुम इस लक्ष्य को नहीं भेज सकते।
0: इसके बाद दुर्योधन और भीम भी आगे आते हैं, परंतु वे भी वृक्ष, फल और पत्तियों को देखने की बात कहते हैं। द्रोणाचार्य उन्हें भी हटा देते हैं। अंत में वे अर्जुन को बुलाते हैं।
1: अर्जुन, धनुष पर बाण चढ़ाओ और निशाना साधो। बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
0: अर्जुन उस चिड़िया को बहुत एकाग्र होकर देख रहा है। वह कहता है, गुरुदेव, मुझे केवल वह चिड़िया और उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
1: क्या तुम्हें यह वृक्ष, मैं या तुम्हारे भाई दिखाई दे रहे हैं?
0: नहीं आचार्यवर, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
1: अति उत्तम, चलाओ बाण, चलाओ।
0: गुरु का आदेश पाते ही अर्जुन बाण छोड़ता है और वह बाण चिड़िया की आंख में जा लगता है और उसके साथ ही चिड़िया का सिर कटकर नीचे गिर जाता है। अर्जुन को गले लगाते हुए गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं,
1: वत्स अर्जुन, यही धनुर्विद्या का मूल मंत्र है। जब तक साधक का ध्यान लक्ष्य के अतिरिक्त हर दूसरी वस्तु से हट न जाए तब तक सफलता असंभव है। एकाग्रता ही हर योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति।
0: लक्ष्य भेद की परीक्षा में अर्जुन की अद्भुत एकाग्रता देखकर आचार्य द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु एक श्रेष्ठ गुरु की दृष्टि में केवल अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ही संपूर्ण शिक्षा नहीं होता बल्कि बालक का नैतिक चरित्र, आचरण और सत्य निष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आचार्य

0: द्रोण चाहते थे कि उनके शिष्य न केवल महान योद्धा बने बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले आदर्श मनुष्य भी बने। इसी नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य एक दिन अपने सभी शिष्यों को आश्रम में एकत्र करते हैं। आश्रम का प्रांगण सजा हुआ है, द्रोणाचार्य आसन पर विराजमान हैं और सभी बाल राजकुमार उनके समीप बैठकर पाठ याद कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं,
1: शिशुओं, कल मैंने तुम सभी को नीति शास्त्र का पहला पाठ पढ़ाया था, सदा सत्यम वद, यानी सदा सत्य बोलो और क्रोध मत करो। क्या तुम सब ने यह पाठ स्मरण कर लिया है, याद कर लिया है?
0: वहीं पर दुर्योधन भी खड़ा था। उत्साह और अहंकार में दुर्योधन ने तुरंत गुरु को संबोधित करते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे तो यह पाठ पूरी तरह याद हो गया है। सदा सत्य बोलो, इसमें है ही क्या? कभी असत्य मत बोलो और क्रोध का त्याग करो। देखा गुरुदेव, मैंने एक ही बार में पूरा पाठ सुना दिया ना। पासी भीम और दुशासन भी खड़े हैं, वे भी कहते हैं, गुरुदेव, हमें भी यह पाठ कंठस्थ हो गया है, आप जब चाहें सुन सकते हैं। द्रोणाचार्य बहुत ही संतोष के साथ सिर हिलाते हुए कहते हैं,
1: अति उत्तम। अब युधिष्ठिर, तुम बताओ, क्या तुमने पाठ याद किया?
0: युधिष्ठिर सिर झुकाकर वहां खड़ा है और बड़ा ही विनम्र भाव से कहता है, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे अभी यह पाठ पूरी तरह याद नहीं हो सका है, मैं केवल पहला अंश ही याद कर पाया हूं। समीप खड़े दुर्योधन हंसने लगता है, गुरुदेव, युधिष्ठिर तो इतने छोटे से पाठ को भी याद नहीं कर पाया और लोग इसे बुद्धिमान कहते हैं। आश्चर्यचकित होकर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं,
1: युधिष्ठिर, तुम तो अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले बालक हो, इतने सरल और एक पंक्ति के पाठ को याद नहीं कर पाए, क्यों, क्या हुआ, समय नहीं मिला क्या?
0: युधिष्ठिर बहुत ही गंभीर है, हाथ जोड़कर वह पुनः कहता है, हे आचार्यवर, केवल मुख से श्लोक या वाक्य दोहरा देना पाठ का याद नहीं होता है। जब तक मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में भी क्रोध पर विजय ना पा लूं और मन वचन तथा कर्म से सत्य का पालन ना करूं, तब तक मैं कैसे कह दूं कि मुझे पाठ याद हो गया है? मैं प्रतिदिन सत पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु पूर्ण निष्ठा साधने में मुझे समय लग रहा है। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की बात सुनकर खुशी से झूम उठते हैं और युधिष्ठिर को गले लगाते हुए कहते हैं,
1: अति उत्तम, अति श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने आज विद्या का वास्तविक मर्म समझ लिया। तोते की तरह रट लेना शिक्षा नहीं है, बल्कि ज्ञान को अपने आचरण और जीवन में उतारना ही सच्ची विद्या है। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल विद्वान ही नहीं बल्कि धर्मराज बनने योग्य हो।

युधिष्ठिर द्वारा सत्य और धर्म की वास्तविक परिभाषा समझने पर आचार्य द्रोण का हृदय गदगद हो उठा। आश्रम में जहाँ एक और कौरव और पांडव राजकुमार विद्या अध्ययन कर रहे थे, वहीं द्रोणाचार्य की महानता और धनुर्विद्या की ख्याति संपूर्ण आर्यावर्त

0: वर्त में फैल रही थी। उनकी इसी कीर्ति से प्रभावित होकर दूर वन में रहने वाला निषाद बालक एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा लिए द्रोणाचार्य के समीप आया। यद्यपि परिस्थितियों वश आचार्य उसे अपना शिष्य ना बना सके, किंतु एकलव्य की गुरु भक्ति ने एक नया इतिहास रचा। आइए देखते हैं कि एकलव्य के निष्काम त्याग की वह अमर गाथा कैसी थी। घनघोर वन था, मिट्टी की बनी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने एकलव्य हाथ जोड़े खड़ा था। अचानक गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन वहां आते हैं। आश्चर्य से प्रतिमा और एकलव्य को देखते हुए गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं,
1: युवक तुम कौन हो और घने जंगल में रहकर इस प्रकार अद्भुत धनुर्विद्या का अभ्यास कैसे कर रहे हो? कौन हो तुम?
0: सादर भूमि स्पर्श कर प्रणाम करते हुए एकलव्य कहता है, गुरुदेव मैं निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य हूं। यह दासानुदास आपके ही श्री चरणों में वंदन करता है।
1: परंतु मैंने तो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था, फिर तुमने यह अद्वितीय बाण विद्या किससे सीखी?
0: भक्ति भाव से प्रतिमा की ओर संकेत करते हुए एकलव्य कहता है, हे गुरुवर, यद्यपि आपने मुझे आश्रम में स्थान नहीं दिया, परंतु मेरे मन ने आपको ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। आपकी इस माटी की मूरत को साक्षात मानकर मैं नित्य अभ्यास करता रहा और आपकी कृपा से ही यह विद्या प्राप्त की है। वहीं अर्जुन भी खड़ा था। एकलव्य की बात सुनकर वह चिंतित हो उठा और खिन स्वर में कहा, आचार्यवर, आपने तो मुझे संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, परंतु यह निषाद बालक तो मुझसे भी अधिक निपुण जान पड़ता है। अर्जुन की बात सुनकर एकलव्य को देखते हुए द्रोणाचार्य गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं,
1: वत्स एकलव्य, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो शिष्य का कर्तव्य है कि विद्या पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा दे। क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे?
0: गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य बहुत ही प्रसन्न होता है और हाथ जोड़कर कहता है, आज्ञा दीजिए भगवान, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित ना कर सकूं।
1: यदि ऐसा है तो मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दो।
0: गुरु का आदेश सुनते ही बिना क्षण भर विलंब किए एकलव्य अपनी कमर से कटार निकालता है और मुस्कुराते हुए अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख देता है और कहता है, स्वीकार करें गुरुदेव यह मेरा अंगूठा, मेरा यह जीवन और मेरी विद्या सब आपके ही चरणों में समर्पित है।
1: धन्य हो एकलव्य, तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा ने सिद्ध कर दिया कि संसार में गुरु भक्ति का तुमसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। इतिहास तुम्हें सर्वदा अमर रखेगा, अमर रखेगा।
0: एकलव्य के निष्काम त्याग और अंगूठा दान की अभूतपूर्व घटना ने आचार्य द्रोण को भाव विभोर कर दिया और गुरु भक्ति का एक अमर अध्याय लिख दिया। परंतु इस घटना के पश्चात कौरव और पांडव राजकुमारों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि आचार्य द्रोण अर्जुन को ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि उनके अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी यही लगता था कि गुरुदेव पक्षपात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आचार्य द्रोण ने किस प्रकार अपने आचरण से सिद्ध किया कि एक श्रेष्ठ गुरु कभी पक्षपात नहीं करता। संध्या का समय था, द्रोणाचार्य अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। दूर धनुष की टंकार सुनाई देती है। वे उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि अंधकार में भी अर्जुन निरंतर बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है। अंधेरे में अर्जुन के समीप पहुंचकर गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं,
1: कौन अर्जुन? रात्रि के इस घने अंधकार में भी

0: तुम बिना विश्राम किए यह धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हो?
1: गुरुदेव को सामने देखकर अर्जुन चौंक पड़ता है, तुरंत ही झुककर गुरु का चरण स्पर्श करता है और कहता है, क्षमा करें गुरुदेव, आपकी निद्रा में विघ्न पड़ा। परंतु एक रात भोजन करते समय जब वायु चलने से दीपक बुझ गया, तब भी मेरा हाथ स्वतः मुख तक जा रहा था। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि अभ्यास यदि पक्का हो तो जो कार्य प्रकाश में हो सकता है वह अंधकार में भी संभव है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य गदगद हो गए और उसे गले लगाते हुए कहते हैं,
0: अद्भुत वत्स, अद्भुत, अत्यंत शोभनम, तुम्हारे इस लगन और परिश्रम ने मेरा हृदय जीत लिया।
1: उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां आता है और थोड़ा खिन्न भी दिखाई देता है, गुस्से में भी है। वह पिता को देखकर कहता है, पितृदेव क्षमा कीजिएगा, परंतु आश्रम के सभी शिष्य और कौरव पांडव यही मानते हैं कि आप अपने पुत्र की अपेक्षा अर्जुन पर अधिक स्नेह उड़ेरते हैं। क्या विद्या देने में आप पक्षपात कर रहे हैं?
0: अश्वत्थामा, एक गुरु के लिए उसका हर शिष्य पुत्र के ही समान होता है। परंतु स्मरण रखो, ज्ञान किसी की बपौती या अधिकार से नहीं मिलता, वह तो केवल निष्ठा और निरंतर अभ्यास की दासी है। जब अन्य शिष्य विश्राम करते हैं तब अर्जुन गुरु सेवा और धनुर्विद्या के अभ्यास में अपना एक एक क्षण लगाता है, समझे?
1: पिता की बात सुनते ही अश्वत्थामा पश्चाताप में अपना सिर झुका लेता है और इस बार वह अपने पिता को पिता न कहकर गुरुदेव के रूप में संबोधित करता है और कहता है, मैं समझ गया गुरुदेव।
0: अर्जुन, तुम्हारी इस निस्वार्थ साधना, गुरु आज्ञा पालन और कठोर परिश्रम के कारण आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, मैं तुम्हें धनुर्विद्या के ऐसे ऐसे गुप्त अस्त्र और रहस्य सिखाऊंगा कि संपूर्ण संसार में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई दूसरा योद्धा नहीं होगा, नहीं होगा।
1: अर्जुन की लगन और कठिन परिश्रम ने द्रोणाचार्य के इस कथन को सिद्ध कर दिया कि योग्य शिष्य अपनी निष्ठा से ही गुरु का प्रिय बनता है। समय बीतता गया और राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनवाकर अपना पुराना अपमान भी चुकता किया और फिर वर्षों बाद महाभारत का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म पितामह के धराशायी होने के बाद दुर्योधन ने कौरव सेना का नेतृत्व आचार्य द्रोण को सौंपा। आइए अब कुरुक्षेत्र के उस भीषण सम्रांगण में प्रवेश करते हैं जहां द्रोणाचार्य का अद्भुत युद्ध कौशल देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान सजा हुआ है, विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने डटे हुए हैं। पितामह भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करता है। चारों ओर युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। दुर्योधन बहुत ही उत्साहित होकर कहता है, आचार्यवर, भीष्म पितामह के पतन के बाद अब कौरव सेना की बागडोर आपके हाथों में है, परंतु मुझे भय है कि पांडवों के प्रति आपका स्नेह हमें विजय नहीं प्राप्त करने देगा। आप अर्जुन को बंदी क्यों नहीं बना लेते गुरुदेव?
0: दुर्योधन, अपनी मर्यादा में रहो। यद्यपि पांडव मुझे प्रिय है, किंतु जब तक मैं तुम्हारा अन्न खा रहा हूं, इस सेनापति के पद के साथ तनिक भी छल नहीं करूंगा। जब तक मेरे हाथ में यह गांडीव तुल्य धनुष है और मेरे पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, पांडवों की विशाल सेना भी कौरव दल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे?
1: तो फिर आचार्य, कल आप ऐसी कोई रचना कीजिए जिसे युधिष्ठिर बंदी बनाए जा सके और यह युद्ध यहीं समाप्त हो जाए। चार यहीं पर समाप्त हो जाए।
0: ठीक है दुर्योधन, कल मैं समरांगन में चक्रव्यूह की रचना करूंगा।

0: एक ऐसा अभेद्य व्यूह जिसे भेदना केवल श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न और अभिमन्यु ही जानते हैं। यदि अर्जुन को किसी भांति संसप्तक योद्धा दूर भटका दे तो मेरी इस चक्रव्यूह रचना को भेदना पांडवों के लिए असंभव होगा।
1: अगले दिन रणभूमि में चक्रव्यूह की रचना होती है। द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्रों की गर्जना से पांडव सेना थर थर कांपने लगती है। युधिष्ठिर इन सभी स्थितियों को देखने के साथ कहता है, हे वासुदेव, हे भीम, गुरुदेव द्रोण का आज का रूप अत्यंत भयानक है। उनका चक्रव्यूह हमारी सेना का काल बन रहा है। इस वृद्ध अवस्था में भी उनका यह युद्ध कौशल और बाणों की गति अद्वितीय है और गुरु द्रोणाचार्य रत्न जटित रथ पर बैठे हुए हुंकार भरते हुए पांडवों की सेना का संहार करते हुए कहते हैं,
0: पांडवों आगे बढ़ो, आज तुम्हें ज्ञात होगा कि आचार्य द्रोण केवल आश्रम में विद्या देना नहीं जानते बल्कि रणभूमि में विनाश का तांडव करना भी भली भांति जानते हैं।

0: कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आचा द्रोण के प्रचंड युद्ध कौशल और अभेद्य चक्रव्यूह ने पांडव सेना में खलबली मचा दी थी। उसी चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, किंतु अंततः महारथियों ने छल से उसका वध कर दिया। पुत्र अभिमन्यु के वध से क्रोधित अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया, जिससे युद्ध और अधिक भयंकर हो गया। 15वें दिन के युद्ध तक आते आते वृद्ध आचार्य द्रोण का काल रूप कौरव सेना की विजय का मार्ग प्रशस्त करने लगा। जब द्रोणाचार्य को परास्त करना संभव हो गया, तब पांडवों को युद्ध जीतने के लिए एक विशेष नीति का सहारा लेना पड़ा। देखते हैं आगे क्या होता है। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। रणभूमि में आचार्य द्रोण का भयंकर रूप देखकर पांडव सेना में हाहाकार मचा हुआ है। पांडव शिविर में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर चिंतित खड़े हैं। श्री कृष्ण पांडवों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पार्थ, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र हैं, तब तक तीनों लोकों में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए अब हमें एक नीति अपनानी होगी। यदि द्रोण को यह समाचार मिले कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो वे शोक में अस्त्र त्याग देंगे। अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनकर व्यथित हो उठता है। नहीं माधव, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के साथ ऐसा छल नहीं कर सकता। भीम भी अपनी गदा उठाकर कहता है, भैया अर्जुन, धर्म युद्ध जीतने के लिए आवश्यक है। मैंने अभी अभी अश्वत्थामा नामक एक भयंकर हाथी का वध कर दिया है। अब मैं जाकर गुरुदेव के समक्ष इसकी घोषणा करता हूं। भीम द्रोणाचार्य के रथ के समीप जाकर प्रचंड स्वर में चिल्लाता है, आचार्यवर, हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य बाण चला रहे हैं। अचानक भीम की बात सुनकर चौंक उठते हैं।
1: क्या, मेरा पुत्र अश्वत्थामा? नहीं भीम, तुम्हारी बात पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज हो, कभी असत्य नहीं बोलती। तुम मुझे बताओ, क्या मेरा अश्वत्थामा

0: मारा गया?
1: द्रोणाचार्य की बात सुनकर युधिष्ठिर पेशोपेस में पड़ जाते हैं। उन्हें संकोच होता है, लेकिन जी करा करते हुए ऊंचे स्वर में वे कह भी बैठते हैं, हे आचार्य, अश्वत्थामा हतो हता। और फिर धीमे स्वर में वे कहते हैं, नरो वाह कुंजरो वाह। युधिष्ठिर के नरो वाह कुंजरो वाह कहते ही पांडव सैनिकों ने शंख और नगारे बजा दिए, जिससे गुरु द्रोण अंतिम शब्द नहीं सुन सके। युधिष्ठिर की बात सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष बाण छूट जाता है और वे अत्यंत ही अश्रुपूरित नेत्रों से कह उठते हैं,
0: हा हा पुत्र, हा अश्वत्थामा, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा।
1: पुत्र शोक में व्याकुल होकर आचार्य द्रोण रणभूमि में ही अपने समस्त अस्त्र शस्त्र फेंक देते हैं और रथ के आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। अश्वत्थामा हतो हतः का समाचार सुनते ही महान गुरु द्रोणाचार्य का हृदय पुत्र शोक में विदीर्ण हो गया है। जिन हाथों ने जीवन भर धनुष बाण को धारण किया था, वे हाथ निष्प्राण से होकर गिर पड़े हैं। धर्म और नीति का पालन करने वाले आचार्य द्रोण ने रणभूमि के मध्य ही अपने समस्त अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और परम ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। कुरुक्षेत्र के भयानक कोलाहल के बीच उनका मन सांसारिक मोह से मुक्त हो चुका था। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार एक निहत्थे और ध्यान मग्न महागुरु का महाप्रस्थान हुआ और उनकी अमर गाथा इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गई। रणभूमि में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। पुत्र शोक में डूबे आचार्य द्रोण रथ पर ध्यान मुद्रा में आंखें मूंदे बैठे हैं। उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट कर भूमि पर गिर चुके हैं। तभी द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न नंगी तलवार लेकर द्रोणाचार्य के रथ की ओर झपटता है। क्रोध और प्रतिशोध से हुंकार भरते हुए वह कहता है, आचार्य द्रोण, आज मेरा वह जन्मसिद्ध उद्देश्य पूर्ण होने जा रहा है जिसके लिए मैंने यंग कुंड से जन्म लिया था। आज मैं अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लूंगा आपसे। अर्जुन दूर से घबरा कर दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, रुक जाओ धृष्टद्युम्न, अधर्म मत करो, गुरुदेव ध्यान मग्न है और उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए हैं। अस्त्रहीन और निहत्थे गुरु पर प्रहार करना शास्त्रों के विरुद्ध है, उन्हें जीवित बंदी बना लो, परंतु मारो मत। भीम वहीं खड़े हैं। वे धृष्टद्युम्न को रोकते हुए कहते हैं, धृष्टद्युम्न, अर्जुन सत्य कह रहा है, आचार्यवर हमारे पूज्य गुरु हैं, उन पर शस्त्र उठाना महापाप है। लेकिन धृष्टद्युम्न किसी की सुनने वाला नहीं था, वह अपने ही उन्माद में था। वह कहता है, नहीं पांडवों, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। द्रोण ने ही मेरे पिता का राज छीना था और आज रणभूमि में हमारे अनगिनत योद्धाओं का संहार किया है। और यह कहकर धृष्टद्युम्न झपट कर ध्यान मग्न द्रोणाचार्य के सिर पर तलवार से वार कर देता है और उनका मस्तक धड़ से अलग कर देता है। पांडव सेना में सन्नाटा छा जाता है और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। युधिष्ठिर अत्यंत व्यथित होकर नेत्रों में अश्रु लिए चिल्ला पड़ता है, हा गुरुदेव, हा, यह क्या अधर्म हो गया। आपके महाप्रस्थान से आज आर्यावर्त ने अस्त्र शस्त्र विद्या का सबसे बड़ा स्वामी और श्रेष्ठ आचार्य खो दिया। श्री कृष्ण भी वहीं खड़े हैं, बिल्कुल शांत और गंभीर। वे पांडवों को ढारस बंधाते हुए कहते हैं, शोक मत करो धर्मराज, गुरु द्रोणाचार्य का भौतिक शरीर

भले ही शांत हो गया हो, परंतु उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। दृष्टद्युम्न की तलवार उनके शरीर को स्पर्श करने से पूर्व ही आचार्य योग विद्या से अपने प्राणों को त्याग चुके थे। और श्री कृष्ण के इतना कहने भर से ही आकाश से दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगती है। फिर श्री कृष्ण सभी की ओर देखते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि एकाग्रता, त्याग, अनुशासन और अपने शिष्य को योग बनाना ही एक सच्चे गुरु की वास्तविक पहचान है। जब जब पृथ्वी पर गुरु शिष्य परंपरा, धनुर्विद्या और निष्ठा का स्मरण किया जाएगा, तब तब महान गुरु द्रोणाचार्य का नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा।

तो हां प्रिय श्रोतागण, महर्षि द्रोणाचार्य की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार एकाग्रता, अनुशासन, सत्य और गुरु के प्रति श्रद्धा है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को केवल धनुर्विद्या नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें आत्मसंयम, नैतिकता और लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व भी समझाया। अर्जुन की सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थी, बल्कि गुरु के मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और अद्भुत एकाग्रता का फल थी। यह कथा हमें सिखाती है कि स्पष्ट लक्ष्य और अटूट एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। सच्चा गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की

0: एक कला भी सिखाता है। अनुशासन, परिश्रम और निरंतर अभ्यास से साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल कौशल अर्जित करना नहीं, बल्कि उत्तम चरित्र और नैतिक मूल्यों का निर्माण करना है। गुरु पूर्णिमा हमें अपने जीवन के उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होने का अवसर देती है जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कार और सही दिशा प्रदान की है। और हाँ प्रिय श्रोतागण, आज हमारे साथ गुरु बिस्वा भी बैठे हैं जो निरंतर संस्कृत में बच्चों को शिक्षित ही नहीं करते, बल्कि उन्हें संस्कृत भाषा के माध्यम से संस्कारित भी करते हैं, यानी उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। तो गुरु बिस्वा से मेरा एक प्रश्न है कि क्या गुरु बिस्वा आप इसमें विश्वास करते हैं कि बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व को संवारने और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आप जो जो कार्य करते हैं उससे हमें भी अवगत कराएं?
1: जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों को सिर्फ ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए बल्कि उनको यह भी सिखाना चाहिए कि उस ज्ञान का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है संस्कृत में, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धना धर्मम तथा सुखम। अर्थात यदि आपके पास विद्या है तो विनम्रता आपके पास होनी चाहिए। विद्या विनम्रता देती है और अंततः उसी से हम सुख की प्राप्ति करते हैं। तो यदि आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञानी बन गए, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं हो पा रहा है तो आप सफल नहीं माने जाएंगे। द्रोणाचार्य के पास ज्ञान था, धनुर्विद्या थी, शस्त्रों का ज्ञान था, इसीलिए उनको देखा गया इन राजकुमारों के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वे बहुत कुशल थे, बहुत दक्ष थे। ज्ञान था उनके पास और ज्ञान को, ज्ञान का प्रयोग, उसको अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं उसका भी ज्ञान था, इसीलिए वे श्रेष्ठ शिक्षक भी कहलाए।
0: तो गुरु बिस्वा, आपको पता है कि जो हमारे श्रोतागण हैं उसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं और ऐसे छात्र हैं जिनको आपने पढ़ाया भी है।
1: जी हाँ।
0: और आप लगातार बच्चों को यहाँ पर 20 साल से ऊपर आप शिक्षित करते आ रहे हैं। मैं थोड़ा परिवर्तन देखता हूँ जब कक्षा में पहुँचता हूँ तो कभी कभी बच्चे अपने शिक्षकों के सम्मान में खड़े नहीं होते।
1: जी हाँ।
0: क्या यह उचित है?
1: यह उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षक के प्रति एक सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। अगर आप शिक्षक आपके सामने आ जाए और आप उठकर उनका अभिवादन करें तो शिक्षक को भी अच्छा लगेगा और उनको भी पसंद आएगा कि हाँ, मेरे जो छात्र हैं एक प्रकार से मेरा आदर कर रहे हैं और अच्छी तरह से वे अपनी कक्षा का आरंभ कर पाएंगे।
0: जी, और कहते हैं कि बड़ों का सम्मान कीजिए जिससे उनका आशीर्वचन और आशीर्वाद मिले।
1: जी हाँ। और एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, देखिए गुरु बोलते हैं हम, लेकिन अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। आप लोगों को श्रोताओं पता ही होगा, कबीर जी ने कहा है, जाका गुरु अंधला, चेला खरा निरंत, अंधा अंधे ठेलिया दुनिया को परंत। कहने का यह तात्पर्य है, यदि गुरु स्वयं अज्ञानी हो, अंधा हो, तो वह अपने शिष्य को भी अंधा बना देता है, अज्ञानी बना देता है और उसको लेकर दोनों कुएं में गिर पड़ते हैं। तो इसीलिए गुरु को भी सच्चे रूप में ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है ज्ञान से भारी होना। तो सच्चा गुरु बनना आसान नहीं, उसके लिए अध्ययन बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे गुरुओं की आवश्यकता नहीं, हमें सच्चे गुरुओं की आवश्यकता है, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, ऐसा जब बनेंगे तब हम समाज का कल्याण करेंगे।
0: और मैं आपको बता दूं कि यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो गुरुओं का सम्मान जरूर करना चाहिए।
1: एकदम।
0: मैंने अपने जीवन में कई बार बहुत सारे जब सफल व्यक्तियों से मिलता हूँ जो बड़े बड़े पद पर आसीन हैं,
1: जी हाँ,
0: तो उनको देखता हूँ बहुत विनम्र हैं,
1: विनम्र,
0: और वे अभी

0: भी उम्र में भी
1: जी
0: बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो रहे हैं,
2: इसीलिए कहा गया
0: और यदि उनका गुरु उनके सामने आता है तो वो तुरंत पैर छूकर प्रणाम करते हैं, इसीलिए है विनम्रता,
1: इसीलिए बोलते हैं विद्या ददाति विनयम।
0: जी हाँ, तो गुरुओं का सम्मान करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हों और एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करने में जो गुरु की भूमिका है उसे अपने जीवन में कभी भी ना भूलें।
1: एकदम।

0: मुहावरे का। तो इस बार के जो मुहावरे हैं वह है गुरु पर
1: जी,
0: गुरु से जुड़े मुहावरे। गुरु गुड़ और चेला चीनी होना।
1: ओके,
0: तो इसका अर्थ आप लोग खोजिएगा, अगली बार इस मुहावरे पर हम लोग चर्चा करेंगे
1: जी।
0: दूसरा और एक मुहावरा है गुरु मंत्र देना। तो गुरु गुड़, चेला चीनी और गुरु मंत्र देना, इस दो मुहावरे पर हमारे प्रिय श्रोतागण ध्यान दें,
1: विचार करेंगे।
0: आपको पता भी होगा, आप इसका अर्थ भी खोजिएगा। पिछली बार नाक से जुड़े मुहावरे पूछे गए थे, जिसका अर्थ गुरु विश्वा बताएंगे, नाक ऊंची होना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है मान प्रतिष्ठा बढ़ना या गर्व होना। श्रोताओं, यदि इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, जिले में प्रथम आने पर बेटी ने अपने माता पिता की नाक ऊंची कर दी।
0: बहुत बढ़िया
1: जी।
0: और नाक में दम करना,
1: नाक में दम करना का अर्थ हो गया बहुत अधिक परेशान या तंग करना। जैसे गर्मियों की छुट्टी में बच्चों ने घर के बड़ों की नाक में दम कर दिया।
0: अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं
1: जी।
0: जी
1: श्रोताओं, इससे संबंधित, इस मुहावरे से संबंधित एक छोटी सी कथा है, इस कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। रवि एक मेहनती छात्र था, लेकिन कुछ शरारती सहपाठी प्रतिदिन उसकी नाक में दम करते थे। वे उसकी पढ़ाई में बाधा डालते और उसका मजाक उड़ाते थे। फिर भी रवि ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा और निरंतर मेहनत करता रहा। जब परीक्षा के परिणाम घोषित हुए तो रवि पूरे विद्यालय में प्रथम आया। उसकी सफलता देखकर वही सहपाठी उसकी प्रशंसा करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की परेशानियों से विचलित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर अडिग रहना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।
0: हर बार की भांति मुहावरे पर सुंदर स्वरचित छोटी सी कहानी सुनाने के लिए गुरु विश्वा का हृदय से आभार,
1: धन्यवाद।
0: श्रोतागण, आपके लिए एक आमंत्रण संदेश भी है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुरु, शिक्षक, माता पिता या मार्गदर्शक अवश्य होता है, जिसने हमें गिरने से बचाया है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और जीवन का सही मार्ग भी दिखाया है। इस गुरु पूर्णिमा पर हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अपने जीवन के उस गुरु से जुड़ी कोई प्रेरणादायक घटना या कहानी हमें लिख भेजें, जिसने आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों या आपके जीवन को नई दिशा दी हो। अनकही एक कहानी आपके अनुभवों को स्वर देने का एक सुंदर मंच है। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करें तथा यह संकल्प लें कि उनके बताए ज्ञान, अनुशासन और सदाचार के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अपनी रचनाएँ इस मेल पर भेज सकते हैं professorrajshekhar@gmail.com। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है आपके गुरु की प्रेरणा से जुड़ी आपकी कहानी किसी और के जीवन में भी ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दे। धन्यवाद, नमस्कार।
1: प्रोफेसर राज जी, इन सुविचारों और सूचनाओं के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है, ध्यानम मूलम गुरोर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। अर्थात गुरु का स्वरूप ध्यान का आधार है, गुरु के चरण पूजा का आधार है, गुरु का वचन मंत्र का आधार है और गुरु की कृपा मोक्ष का आधार है। श्रोताओं, कहने का यह तात्पर्य है कि एक सच्चे गुरु के आदर्श जीवन को याद करके शिष्य या विद्यार्थी धैर्य, एकाग्रता और सकारात्मकता पाता है। गुरु का व्यक्तित्व उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि एकलव्य अपना अभ्यास शुरू करने से पहले जो द्रोणाचार्य की मूर्ति उसने बनाई थी उसके चरण स्पर्श करता था। यही गुरु के प्रति सम्मान का प्रतीक है। सच्चे गुरु के अमृत तुल्य वचन सुनकर ही दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है और उनकी कृपा से आत्मोत्थान भी होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसे

0: सबसे पहले आज की सुर्खियां नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के लिए पानी और सीवरेज सेवाओं की दरें बढ़ेंगी सरकार का कहना है कि इस राशि से जल व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा और सीडब्ल्यूए में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी विजन 2050 के तहत मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी ब्लू इकोनॉमी और लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टरों के सहारे वर्ष 2050 तक अर्थव्यवस्था को 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है एमसीसीआई में कंपनियों के बीच एआई के उपयोग पर राष्ट्रीय सर्वे शुरू इसके आधार पर ट्रेनिंग और नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके मॉरिशस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में 22% की बढ़ोतरी पहली तिमाही में निवेश बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए पहुंचा जिसमें सबसे बड़ा योगदान रियल एस्टेट सेक्टर का रहा देशभर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर सम्मान व्यक्त किया जापान के क्यूशु द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप अब तक 13 लोगों की मौत 100 से अधिक लोग घायल बताई जाती है पानी और सीवरेज सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को जल्द ही ज्यादा शुल्क देना होगा शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में नए योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाएगा
1: ये वृद्धि सेंट्रल वाटर अथॉरिटी और वेस्ट वाटर

0: मैनेजमेंट अथॉरिटी के गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इन उपभोक्ताओं के लिए नए नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से व्यापारी और ऐसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं जो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी की खपत करते हैं। CWA के बिल में 10% से 25% तक की वृद्धि की जाएगी। वहीं स्मार्ट सिटीज और इंटीग्रेटेड रिजोर्ट स्कीम्स के लिए ये बढ़ोतरी लगभग 75% होगी। CWA के अनुसार इस वृद्धि से मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
1: Nous prenons une tarification graduelle. Auparavant, c'était flat, donc c'était N prix par mètre cube. Aujourd'hui, plus vous consommez, plus vous pouvez pénaliser. Nous avons un manque d'environ plus de 400 personnes. Vous imaginez, c'est énorme. Si nous avons une rentrée d'argent, nous avons une situation financière raisonnable, donc ça vous permet de nous faire recrutement. Donc là, nous saluons un petit peu l'initiative du gouvernement qui peut donner CWA la possibilité pour faire ce qu'il nous besoin de faire.
0: इस घोषणा ने व्यापारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। एक हेयर और ब्यूटी सैलून की संचालिका का कहना है कि अतिरिक्त वित्तीय भार उनके लिए काफी कठिन होगा।
2: Nous pouvons bien faire avec. Pour besoin voir justement avec la clientèle parce que voilà tous les jours nous servent de l'eau.
0: Saint-Martin स्थित अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में प्रतिदिन लगभग 50,000 क्यूबिक मीटर अपशिष्ट जल का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप शोधन किया जाता है। WME के अनुसार नई शुल्क व्यवस्था से उसके बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।
3: Ben, station d'épuration de la WMA, je traite ben, de l'eau à différents niveaux. Donc, nous avons un niveau primaire, secondaire, tertiaire. Et il bon nous dire aussi que la ben, station qui traite au niveau tertiaire, nous sommes capables de servir ce bandeau usé qui est traité là, par exemple pour arroser la canne à sucre ou bien même pour un terrain de golf. Nous améliorons le service, donc ça va ben, augmentation là nous permet d'améliorer un petit peu le service qui nous peut donner le public en général. Après 14 ans, qui nous paye une augmentation pour tarif wastewater. Donc, comme on connaît, ben, le coût hein, d'opération pour traiter ça de l'eau usée, il coûte très cher. Il y a environ 5000 clients hein, qui sont connectés avec le réseau wastewater. Donc, ce ben, client-là, c'est le ben, business, ben, la banque, ben, la clinique. Donc, à 5000 clients-là, il y a à peu près 80% qui nous ben, clients qui ont une augmentation pas pour dépasser 15%.
0: शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में वृद्धि की घोषणा की गई थी जो अगले महीने से लागू होगी।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने अपना पहला मेडल पक्का कर लिया है। ये उपलब्धि मुक्केबाज मर्विन क्लेयर ने हासिल की है। क्वार्टर फाइनल में उसने गाना के प्रिशियस अकाई नेटी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ मर्विन क्लेयर ने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो सुनिश्चित कर ही लिया है। ये मुकाबला MBC 11 पर सीधा प्रसारित किया गया। अब नजर होगी सेमीफाइनल पर जहाँ मर्विन क्लेयर स्वर्ण पदक की दौड़ को आगे बढ़ाने उतरेंगी। कई दशकों तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष व्यापारिक सुविधाओं, कम टैक्स व्यवस्था और सस्ते श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन समय के साथ ये लाभ धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए विजन 2050 के तहत एक नए आर्थिक मॉडल पर जोर दिया जा रहा है। इसमें ब्लू इकोनॉमी और लाइफ साइंसेज एवं फार्मास्यूटिकल जैसे सभी अभी कम विकसित सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार $15.2 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन तक पहुंचाया जाए। मॉरिशस में कंपनियों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन के जरिए ये जाना जाएगा कि स्थानीय कंपनियां AI का कितना और किस तरह उपयोग कर रही है। अध्ययन के नतीजों के आधार पर ट्रेनिंग और सहयोग की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। इस सर्वे का आरंभ पोर्टली में ICT मंत्री अविनाश राम तोहल की मौजूदगी में किया गया। सुनिए रिपोर्ट।
5: मॉरिशस की कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का स्तर जानने और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए एक सर्वे शुरू किया गया है। मॉरिशस

0: चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MCCI की ये पहल देश की राष्ट्रीय AI रणनीति और बजट में घोषित उपायों के तहत की जा रही हैं। MCCI के अध्यक्ष पैट्रिस मारी कहते हैं, हर एक उद्योग को एक जरूरत होती है उत्पादकता, ऑटोमेशन या कारगरता की। हम जानना चाहते हैं कि डिजिटल बदलाव के सफर में वे कहां स्थित हैं। इससे हमें बाधाओं को जानने में मदद मिलेगी और हम कहां मदद दे सकते हैं, कहां सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, संचालन और सुरक्षा में हम किस तरह योगदान दे सकते हैं। इस सर्वे की शुरुआत के अवसर पर मौजूद ICT मंत्री अविनाश रामतोहल ने इस पहल का स्वागत किया। वे कहते हैं, संचालन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम इसका स्तर नहीं जान सकते। ये एक पहला कदम है AI को अपनाने में समझने के लिए। जितना उद्योग AI का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्पादकता बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। कई नीतियां तैयार की गई हैं। अगर उद्योग इसे और बढ़ाना चाहते हैं या सुधार चाहते हैं तब हम इस पर विचार करेंगे। उत्तम और कपफोर मॉरिशस के सहयोग से किए जा रहे इस अध्ययन में ये भी देखा जाएगा कि स्थानीय कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से रूप सबसे उपयुक्त हैं। इस सर्वे में लगभग 450 कंपनियां शामिल होंगी।
1: मॉरिशस में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़कर 5.9 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 4.8 बिलियन रुपए था। सबसे अधिक निवेश रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख निवेशक देशों में शामिल। वहीं मॉरिशस की ओर से विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा आज देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। ये दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनके मार्गदर्शन को नमन करने का अवसर माना जाता है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। वहीं श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। विधि मासीपुरन की विशेष रिपोर्ट पेश है।
2: गुरु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वो जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रकट करता है, और पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा। इसलिए गुरु पूर्णिमा उस गुरु के सम्मान में हिंदू महीने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो छात्र का मार्गदर्शन करते हैं, उनके संदेहों को दूर करते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा रात के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार गुरु अपने उपदेशों और उदाहरण द्वारा शिष्य के जीवन को आलोकित करते हैं। ये विचार एक प्रसिद्ध संस्कृत प्रार्थना में व्यक्त किया गया है।

0: ये प्रार्थना गुरु को तीन महान दिव्य कार्यों सृष्टि करना, रक्षा करना और रूपांतरित करना के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार गुरु वे हैं जो ज्ञान को जन्म देता है, उसकी रक्षा करता है और अज्ञान का नाश करता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये महान गुरु महर्षि वेदव्यास को समर्पित हैं, जिन्होंने वेदों के मंत्रों का संकलन किया और मानवता के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की।
1: एक शिष्य के जीवन में जब तक शिष्य की चेतना होती है, तब तक गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आविर्भाव सूक्ष्म रूप से शिष्य के जीवन में होता है, चाहे स्मृति के रूप में, ध्यान के रूप में, बोध के रूप में, ज्ञान के रूप में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब से दया भई सदगुरु की सूरति न अंत चली, अर्थात जब से सदगुरु की एक शिष्य पर कृपा होती है तो उनकी सूरति इधर उधर भटकती नहीं है, अर्थात सूरति स्थिर रहती है।
0: गुरु पूर्णिमा उन सभी शिक्षकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो विश्वास, सम्मान, अनुशासन और शिक्षक तथा छात्र दोनों की जिम्मेदारी पर आधारित गुरु

0: शिष्य परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का संचार करते हैं।
1: आज के युग में देखा जाए तो दो प्रकार के गुरु हैं मेरी दृष्टि में, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक मार्ग में छात्रों को, चेलों को अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि शिक्षा गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। किस प्रकार का ज्ञान? केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, अपने अनुभव को भी भली भांति गुरु बांटते हैं। सद्गुरु कबीर का कथन है, जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंत, अंधे अंधा कूप ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अर्थात यदि गुरु ही ज्ञानी न हो तो वो चेले का सही अर्थ में मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, और परिणाम क्या होगा, दोनों जा करके कुएं में पड़ जाएंगे। इसीलिए किसी को भी जब हम गुरु बनाते हैं दीक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए कि वो गुरु एकदम ज्ञानी होना चाहिए, उसमें दया का भाव होना चाहिए।
0: प्रार्थनाएं, पवित्र मंत्रों का पाठ, ध्यान सत्र और आध्यात्मिक भाषण इस दिन को विशेष बनाते हैं, जहां गुरुओं द्वारा सिखाई गई मूल्यों सत्य, आत्मसंयम, दया, सम्मान, साहस और पारस्परिक सहायता को जीवन में उतारने पर जोर दिया जाता है। माता पिता को अक्सर बच्चे का पहला गुरु माना जाता है, क्योंकि वे उसे बोलना, चलना, अच्छे और बुरे में अंतर करना तथा समाज में रहना सिखाते हैं।
2: पहला हमने के गुरु है हमने के माँ बाप, जो हमने के शिक्षा प्रदान करलक, जो हमने के मार्गदर्शन करलक, उन लोग के एगो रिमेसिमा करेला सर अपन गुरु के हम आज है माध्यम से अपन गुरु के बहुत धन्यवाद करत हैं कि हमरा आज इतना सक्षम करलक कि हम आज सकते हैं तू लोग के सामने बताई।
0: इसके बाद शिक्षक आते हैं जो उसके ज्ञान और क्षमताओं का विकास करते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते हैं जो उसे खुद को बेहतर ढंग से जानने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। कोई अनुभवी व्यक्ति, सलाहकार, बुजुर्ग या जीवन की कोई परीक्षा भी शिक्षा का स्रोत बन सकती है।
3: और श्रावणी मास के दौरान इन दिनों भारत में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, सुनिए ये विशेष रिपोर्ट।
4: सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में तैयारियां मजबूत की जा रही हैं, जहां हजारों कांवरिया का स्वागत किया जाएगा। विशेष ध्यान सुरक्षा, यातायात और भीड़ के संचालन तथा तीर्थ यात्रा सुविधाओं पर दिया जा रहा है। प्रयागराज में तैयारियां तेजी से चल रही हैं, सड़कों पर मरम्मत कार्य किए गए हैं, सैनिटेशन सुविधाएं स्थापित की गई हैं और महत्वपूर्ण जगहों पर घेरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की मदद और सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस अफसरों को तैनात किया जा रहा है।
5: जो प्रमुख हमारा मार्ग है वाराणसी मार्ग, उस पर घाट से लेके जो हमारा बॉर्डर है वहां तक पूरा रूट पर एक जो लेन है वो कावड़ यात्रियों के लिए रिजर्व की गई है, जिसपे कावड़ियों का मूवमेंट रहेगा।
4: गंगा घाट और अन्य तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा तेज की गई है, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। साथ ही कई मेडिकल कैंप्स बिठाए गए हैं, जहां 24 घंटे टीमें कार्यरत रहेंगी। कांवरिया लोगों के लिए कांवर रखने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जहां आवश्यक सुविधाएं होंगी, जैसे आराम करने के लिए बिस्तर, पीने का पानी, शौचालय तथा सुरक्षा। इस बीच अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है, इसलिए सरयू नदी के बढ़ते जल स्तर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में भी हर की पौड़ी के घाट पर सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सावन महीने के दौरान कांवर यात्रा उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है।
3: SBM Holdings Limited के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल क्लोद निकोला गुफले को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि आंतरिक जांच के बाद उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक मुनि सिंह जाना नायकनी को ग्रुप के कार्यवाहक CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक वन ने अल्जाइमर और डिमेंशिया एसोसिएशन को अपना सहयोग दिया है। ये बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास

0: विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इनके मरीजों, उनके परिवारों तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करना है। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित क्यूशू द्वीप पर मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस आपदा में कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। कुमामोटो क्षेत्र में एक शॉपिंग सेंटर और कागज के कारखाने में दबी कई लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। सुनिए,
1: जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आज सुबह भी बचाव अभियान जारी रहा। कल रात आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल रहे हैं। भूकंप पश्चात 100 झटके भी महसूस किए गए हैं। बचाव कर्मी खास रूप से उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो एक शॉपिंग सेंटर के मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता का ये भूकंप मंगलवार को क्यूशू द्वीप के कुमामोटो क्षेत्र में आया। इसके कारण भारी तबाही मची, कई घर ढह गए, पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा कई स्थानों पर आग लग गई। 9,000 से अधिक लोगों ने रात केंद्रों में बिताई, वहीं हजारों घरों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित रही। बचाव कार्यों और नुकसान का आकलन करने के लिए लगभग 3,600 जापानी सैनिकों के साथ कई विमानों को भी तैनात किया गया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उसे जल्द ही वापस ले लिया गया। क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी प्रकार की असामान्यता की सूची नहीं मिली है।
0: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज रात को और कल सवेरे के दौरान देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। ऊंचाइयों और पूर्व में शाम को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:51 पर, सूर्योदय 6:40 पर।

प्रदेश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड प्लैन दे रोश में 82 ईयर्स ओल्ड के 82 साल के रामदत्त सुमाका की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी बेटी दोमन सुमाका के मकान प्लैन दे रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचियो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। जागृति रोड सेमी 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की जानकी गोकुला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पुनसोमी, लोग उन्हें सोनी के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज शाम को 4 बजे उठाई गई। रिवायो रोड क्रेव क्यों में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड के सुनील गोविंद की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें स्वामी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हें के मकान क्रेव क्यों से उठाकर अंतिम संस्कार

0: Արկելի քրեվկյա հիկի շմշանդումի լիջայջայքի կրմիշն թյուդի ատ 11 AM։ Singapore Street, Vieux Grand Pomme, Batti Salgi, 32 years old, Saksha Gundori Chitaman, Kimriti Hogai hai. Unki arthi kal din ke 11 baje unke pita Rajesh Gundori ke makan Vieux Grand Pomme se uthakar antim sanskar ke liye ilake hi ki shmshan bhoomi le jaya jayegi cremation tomorrow at 11 AM. Kongrosh Oyetami, 83 years old ki Achama Tumia kimriti hogai hai paidaish nam Kuna Yeru Kunondu लोग उन्हें देवी उड़ने के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान ओयता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: RM2 Radio Musty.
3: Allons chez Lolo.
4: Pour Lolo, ce 17e anniversaire. Du lait Omega 1 kg. Acheter 10 sachets, gagne un spaghetti en cadeau. Pour 6, 399 roupies. Saucisse, qu'est-ce qu'il nous glue 340 grammes, 37 roupies 95. Tweet, ice cream 1,8 litre à 204 roupies 95.
5: Lolo Hypermarché.

जय श्रोताओं नमस्कार आप सबको MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभा रही हूँ और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप साथ दे रहे हैं 7 बजे तक और नई सोच कार्यक्रम जहाँ हम चलाते हैं एक से बढ़कर एक गीत, फिलोसॉफिकल सॉन्ग। और हमें पता है इस समय आप घर पर हैं या फिर गाड़ी चलाकर घर जा रहे हैं तो आपको हम कहेंगे बोकुगाज। बस ऐसे हमेशा आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज का जो पहला गाना है, ज़िंदगी बहुत ही हसीन है दोस्तों, बस जीना चाहिए। और जीना कैसे चाहिए और दूसरों को कैसे खुश रखना है ये भी जानना चाहिए। शोर फिल्म से लिया गया, चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा तराना लता जी की आवाज़ में और साथ में है मुकेश साहब।

राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर जहां चार औरतों का एक अधूरा सा परिवार रहता था। अम्मा थी 60 से ऊपर की, कुछ सठियाई हुई सी, कुछ बहकी हुई, अपने आप ही से बातें करती रहती थी। और उसकी तीन बेटियां निमकी, मिट्टू और चिंकी। शादी किसी की नहीं हो पाई। लोग कहते हैं माँ बाप के छींटे ना पड़े होते

तो तीनों ब्याही जाती, देखने में भी तो आखिर अच्छी खासी हैं। बड़ी शादी की उम्र से गुजर चुकी है और छोटी लड़कों की तरह रास्तों में ठुड्डे मारती चलती है। शादी की उम्र को बस पहुंची कि अब पहुंची, और मंजली बेचारी गूंगी है। गेरूलाल ने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना है, बहनें कहती हैं कि वो गीत लिखा करती है।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: जय श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। और आज बुधवार 29 जुलाई 2026, और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, वो जीवन को सही दिशा देने की कला भी सिखाते हैं। और हमारे सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है, वहाँ हर कठिन राह भी आसान लगने लगती है। तो चलिए, आप सभी लोगों के नाम ये गाना हम चला रहे हैं, फिल्म सर से लिया गया। और आपको याद दिला दें, हमारा जो नंबर है 4028074028070। और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5250620। हमें आपका इंतज़ार है, बहुत धन्यवाद।

0: दिलों की आवाज
1: जी हाँ, दिलों की आवाज प्रोग्राम दिलों की आवाज प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस खूबसूरत महफिल में। जी हाँ, आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमें पता है कि आप 90s और 80s के गाने को बेहद ही पसंद करते हैं, इसीलिए एक से बढ़कर एक गीत आप लोगों के नाम हम चलाएंगे। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं सुनीता जी फ्रॉम गुडलैंड्स। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। गाना आप मांग रही हैं अपने पति विमल के लिए और बेटा अक्षय के नाम। तो चलिए सैनिक का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में।

जय श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और यहाँ पर हम गाना चलाने जा रहे हैं रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा। अभी आप सुन रहे थे मोहब्बते फिल्म से लिया गया ये प्यारा गाना, और एक गाना है यहाँ पर हम चलाएंगे लेकिन ये फिल्म मोहब्बत से लिया गया। जी हाँ, और आवाज़ें हम सुनेंगे विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। ये गाना आपके लिए रोहित जी और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमें सुन रहे हैं बहुत ही प्यार से, ऐसे हमेशा गुनगुनाते रहिए।

कभी कुछ खोया कभी कुछ पाया यही जिंदगी की रीत है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी जरूरी है कुमार सानू की आवाज में चलिए ये गाना हम सुनेंगे और गाना खासकर सूरज जी के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम ट्रियोले गाना उनके लिए और हमारे सभी सुनने वालों के नाम

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 8:09 हुए हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पर अगला गाना गुलशन भोला के लिए, और उनके फैमिली में दो दो शादियाँ हैं और डेडिकेशन वो कर रही है उनकी भतीजी लवना और शेखर, जो शादी के बंधन में बंधे हुए हैं और साथ ही साथ में अभी तो वो गीत गवाए जा रहे हैं, क्या बात है। और कल आलिशा की हल्दी विधि है और ढेर सारा प्यार टू लवना, आलिशा, आकेश और शेखर, और साथ ही साथ में उनकी मामा आयेशा, पूरे भोला फैमिली की ओर से ये गाना चल पड़ा।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: जी हाँ, जैसे कि हमें पता है चारों ओर वेडिंग सीजन है और यहाँ पर अगला गाना आरजू फिल्म से लिया गया गाना जाएगा सोनल के लिए जो इस समय हमें सुन रही है और गाना खासकर वो मांग रही है अंतिश राम सरन के लिए। वो रहते हैं स्विट्जरलैंड, भाई श्रावण, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान, नव्या और तिलक फैमिली के लिए।

0: RM3 Radio.
1: अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो. 8:42 हुए हैं तो चलिए यहाँ पर चांदनी पुरुषोत्तम जी जो रहती हैं बैतानिया और हमें सुन रहे हैं, हमेशा साथ देती है इस कार्यक्रम में. बहुत धन्यवाद आपको. और साथ में हमारी प्यारी संगीता जी जो रहती है क्यूपिप, आपके नाम ही ये गाना जाएगा. फिल्म का नाम है पन्ना. कुमार सानू, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में.

0: जाने के जिद।
1: आज 8:50 हुए हैं श्रोताओं, आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में, आपको हम धन्यवाद कहते हैं। चलिए आशा जी की मधुर आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल, और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द, आप अपना ख्याल रखें।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music.
3: Radio Mauritius.
4: Continuous music. RM3
5: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस.
6: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर. कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर.
7: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: रेडियो मॉर्शस यानी कि 819 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95.6 98.2 FM पर यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल MBC के रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस सब संगत यालो के अजय प्रताप सिंह के उसे प्यार भरा नमस्ते और सलाम। रात की 9:01 हुआ था आज बुधवार की रात 29 जुलाई साल 2026 और बेशक हमने के तो लोग साथ है अभी से लेके रात के 11 बजे ले तो हर पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का में जहाँ पर ही तुलकबन भोजपुरी गीत की फरमाइश करेला सब फोन करके नंबर है काट जाओ दे विद जगह विद सैंक और जी हाँ काट जगह दे विद जगह विद सैंक और SMS करके नंबर है 52 51 70 05 पर सक वजह SMS करे और टेलीफोनिक करके नंबर का जो दे विद जो विद सैंक पर तो जितना रेडियो मॉर्शस रेडियो मॉर्शन के संगत यारों हमने की सुनता जितना भोजपुरी लवर्स को हमने की सुनता ये पहल का गाना तुल के नाम जोड़ी छोकरी से प्यार करी रहा कुणाल हेरीलाल की आवाज़ में।

आज 29 जुलाई के हमने मनावत इस विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे और है दिवस की शुरुआत हो रहा है साल 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान। इस दिवस के उद्देश्य है बाघ की सुरक्षा के प्रति बाघ की सुरक्षा करे खातिर और लोगन में जागरूकता फैलाए के कैसे हमने की चेना टाइगरों की रक्षा करे की और ये हमने की बाघ जाति की संख्या की बढ़ाई की। और थोड़ा बता दिला जा कि शेर एगो सबसे शक्तिशाली और सुंदर जानवर है और ये हमने के जंगल के संतुलन बनाए रखेला। तो आज मनाते हैं दिवस और दिवस के नाम वर्ल्ड टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस। और शेर से तो सबको ही डरेला पर अगर दुबई में तू जेबा तो ये मना प्रिंस लोग बा राजकुमार लोग बा जोन शेर के अपन लगे पोसे रहसा वो पालतू जानवर लिखा क्या बात है और तो जानना कि शेर इंसान के खाला पर वहाँ पर शेर के डोमेस्टिके कर ले वनसा टेम कर ले वनसा और उस शेर वालों के बात सुने ला। अगला कि मॉरिशस में भोजपुरी की भाषा बहुत ही खूबसूरत गाना है गीत हमने चाहते ईसा इस सब संगतिया के नाम जो उनके साथ जुड़ा लोग वंचा लाहौसा से वन संगीता मीरन और एक गीत चली रीता जी के नाम फिर संगीता की ओर से कर माँ कर भाई दान आजी जुन हिरन कास्टेल कर बहिन हेमा शांति मंच का रक्षित और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम है गीत चली रीता की ओर से कर दुगो बहिन अमृता और रेणुका के नाम बहुत प्यार के साथ। और जितना भी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगतिया लोग सुना था वो लोग के नाम भी है गीत चली मॉरिशस में भोजपुरी भाषा और सैंक देख सकते हैं पर अपन एसएमएस विदा करते रहिए रात के 11 बजे रही

हमनी के भोजपुरी भाषा हमनी के अपन भाषा धर्म संस्कृति के भाषा पूर्वजों के भाषा ई भाषा के कबो नहीं जाए भुलाई के ई भाषा के चला हमेशा बतिए भाषा में बतियाते रह के लिखते रह के रात के 9:13 होता और हमने सब कोई में भगवान कोनो न कोनो गुण दे लगबा कोनो न कोनो कारी चीज लगबा वो गुणवा के चला हमने के उभारे के तो कोई अच्छी तरह से गीत गावेला कोई अच्छी तरह से खाना बनावेला कोई घर की साफ सफाई करेला तो सब कोई में कोनो न कोनो गुण बा तो अपन आपके कबो अंडर एस्टिमेट नहीं करिया दुनिया में जितना कोई हमनी है सही दुनिया में भगवान से पीजा कर लगबा हमनी के तो हमनी में गुण दबा कोई में ढेर माना गुण बा और ये गुण के चला हमेशा उभारे के हिडन टैलेंट्स रात के 9:14 और अगला गीत सुरमा लगा के रानी सुदाम की तो अगले वन और गीत हम चलावते इसे सब संगतियालों के नाम राधा शिवालक हवन मोहताबाद से कर बेटा प्रशांत पतु बेटी शिल्पा दामाद और सब शिवालक परिवार के नाम देविका राम गत्या गीत हो खातिर तोहर सब परिवार के नाम चंपा राम गत्या गीत हो खातिर तोहर सब परिवार के नाम कमला जीनू तोहर चीजों फो आरोही के नाम अनिता पांचू गीत तोहर घरोला तोहर भाई भौजी निवेन्यस सब पांचू परिवार के नाम एक साथ सुनब जाए गीत सुरमा लगा के अब के सुरमा लगा के सुना दे गीत चल एक साथ सुनब जाए रानी सुदाम की जुबानी

संगठन हम दिखले हैं ढेर मना जगह में जब ढेर कोई वेजिटेरियन खाना बनावलन से वेजिटेरियन तो सबसे पहला जो है भगवान के भोग लगावलन से गो बनान के पत्ता में या गो बोल में भगवान के चढ़ावलन से जो भगवान की तरकारी तू चढ़ेबा वो तरकारी महाप्रसाद बन जाला। चल अच्छी बात है आजकल पूजा पाठ होता और बेशक अगर तू भी वेजिटेरियन खाना बनाओ तो और प्रभु की पूजा पाठ करे रहा तो ज़रूर भगवान के भोग लगैया हो जिन खुआ के पकैले हुआ वो महाप्रसाद बन जाला और जिन व्यक्ति महाप्रसाद खाला उनके ध्येय मन आशीर्वाद मिलेगा। रात के 9:19 और अगला गीत पानी नहीं बा जी हाँ सबको जाना था कि पानी नहीं बरसता हमने कि देश में जितना चाहे आप बरस सके उतना नहीं बरसता तब प्रार्थना कर अब से इंद्र भगवान से कि हे इंद्र भगवान हमने कि देश में पानी बरसा हुआ कहे कि पानी नहीं बरसी तो हमने कि जलाशय जो है वो कमती हो ले जाए और मैं पानी तही नहीं अच्छा बा और अगला गीत पानी नहीं बा कि जो हमने चलाओ अब से संगतिया के नाम यीशु नायको कर माता पिता कर भाई भौजी कर घरोला को लेकर सब नायको परिवार के नाम सब जिले और प्रोफेसर के नाम जो आजकल स्कूल की छुट्टी मनावत उनसे हैप्पी स्कूल हॉलीडेज छुट्टी के भरपूर मजा ला और हमने के गीत सुना है गाना चला अफसर अनिता लाल जी के नाम आप हन मोदाल बैसे चित्र और ज्ञान विश्राम वैसे हवंजा कमला गणेश पीतों से अमृता माफ करिए अमृता गणेश पीतों से वंजा और अनिता हवन फ्रीकॉन फ्लैग से चले साथ सुने गीतवा पानी नहीं बा

जीवन में कोई पर भी भरोसा करे के कठिन बा आजकल कोई बा भरोसा के लायक जेकर पर भरोसा कर बा वही तोरा धोखा दे देवेला एक हद तक चल अपन गोर हाथ पर भरोसा करे के और कोई पर नहीं सक भाई दुनिया में तोहर लेका कबूतर अपन नहीं होता तोहर घरोला तोहर अपन घरोली कहो कबूतर अपन नहीं होता ये कहती दुनिया में हम चला नहीं सब कलयुग है भैया यहाँ पर इस नहीं हो ले एक बोला कलयुग घोर कलयुग रात की 9 बज के आधा हुआ था और एक जोरी गीत तन्ने सब जोरी जोरी गीत चलते रही रात की 11 बजे पर एक जोरी गीत था सरिता भूतू गैरवन लाकुब के महीना और एक गीत हम चला हुआ सा साइलेंट के उसे कर घरोली रानी को प्यारी सिंह बिटिया परी और कुछ परिवार के नाम सत्यवे SSS कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम खासकर मिस्टर सौजू मिस्टर ओसाई ओसाल मिसेस केट मिसेस डीना डीना मिस्टर व्यापन मिस प्रतिमा के नाम शास्त्री बनवाली जी कई सेवा समाचार है गीत और खाते तोहर पत्नी तोहर बेटा विवेक बेटी दामाद और सब बनमाली परिवार के नाम और आशा जानू हवन को तेज से गीत शुभम दिद्यार्थी जीजाजी चीजाफों माँ कुमारी और सब जानू परिवार के नाम नटराज रामकुरन आप नोएल फ्रांसे गीत तोहर खातिर तोहर पिताजी तोहर माताजी तोहर भाई बहन और सब रामकुरन परिवार के नाम और है गीत चलावते प्रताप की ओर से कर संगत्याल के नाम चिबुग लोंग राजा स्टीव प्रवीण भैरव श्याम मंगल संजीव राज मन्ना के नाम भी तो चल एक साथ सुनाए गीत लाकुब के महीना कौन चेला

लकुब के महीनवा। आज की दुनिया में दिख बता स्ट्रेस ही स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, काम पे स्ट्रेस, चारों ओर स्ट्रेस ही स्ट्रेस, और दो प्रकार के स्ट्रेस है ना, एगो पॉजिटिव स्ट्रेस और निगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो हमने की मदद कर रहा है जीवन में आगे बढ़े के, और निगेटिव स्ट्रेस है जो हमने की कमजोर कर देवे रहा। ओके नहीं तो स्ट्रेस से बच्चे का तीर चेहरा मेडिटेशन करे के, योग साधना करे के, पूजा पाठ करे के, कसरत करे के, व्यायाम करे के, एक्सरसाइज करे के, तभी स्ट्रेस दूर हो। सबके जीवन में स्ट्रेस बा है, हमारे जीवन में तो लोग के जीवन में कोनो न कोनो त्राका रहेला, कि कोई के पैसा के त्राका बा, कोई के लैका के, कोई के स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम बा, तो सब कोई के कोनो न कोनो प्रकार के स्ट्रेस रहेला। पर स्ट्रेस से उनके चाह सामना करे के और चला आगे बढ़ते जाए के, गमट करे जाएला। सुख का नीलो माथुर की जगह ले वन की चाहो तो ऐसा मेविन खातिर, मेविन की ओर से कर गर्लफ्रेंड जानवी के नाम आप रहलन बनते हैं, और गाना चली उन सब लोगों के नाम जिके नया नया शादी हुलवा, और बेशक भगवान से प्रार्थना कर सकी तो लोग के शादीशुदा जोड़ी हमेशा सलामत रही। राम सीता लिखा, कृष्ण राधा लिखा, तो चले एक साथ सुनब जाए गाना गमत करे जाइला।

0: रात के पौने 10 बजे तक तू सुनता है रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पोचवीटर का प्रोग्राम लाइव एमबीसी मोका से। और जब भी थोड़ा मन करे शॉपिंग करे के तेगो लाली से बना दिया वो लाली स्वाद लेके जया शॉपिंग करे ताकि हैने होने की चीज़ नहीं किन हम तो बड़ी शॉपिंग कर ले भैया पैसा मिल रहा था हम खुशिया किने के पर गैस प्याज नहीं घर के चीज़ मतलब घर में कौन चीज़ कमी हुई थी जहाँ किने के तेगो लाली से बना दिया तब जया शॉपिंग करे और लाली स्वामी जैसे जैसे चीज़ वहाँ किन्ने जया उसे उसे एगो टिक कर ले जया हो लाली स्वामी ताकि जान जब क्या ये चीज़ किना गलबा और लड़का लोग भाभी घरे तब माँ बाप संग जान से शॉपिंग करे तब बेशक शॉपिंग करिया भरपूर और हमके साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। अभी कुछ संगत या लाइन पे कर से मिला जाए का जगह दे विद जगह विद सैंक पर। हेलो हेलो हेलो
1: नमस्ते
0: प्रताप
1: जी।
0: नमस्ते जी क्या वजह
1: श्रीमती
0: सुयाक से
1: सुनिया
0: कैसे समाचार श्रीमती अच्छा हुआ ना
1: सब ठीक है सब ठीक है।
0: और परिवार सब कुशल मंगल
1: सब कुशल मंगल। और हमारे भाई यहाँ गैली दिमाग के
0: हाँ
1: भाई से भेंट हो
0: कैसे बा भैया अच्छा हुआ ना
1: भैया ठीक बा ठीक बा। तो संदेशा पहुँचा दे दी
0: बहुत धन्यवाद।
1: और
0: संगीत काम करते हैं आगे संगीत काम करते हाँ
1: कौन इंद्रासन से ढोलक मंगाईला
0: इंद्रासन से ढोलक मंगाईले।
1: हाँ तो गमत करे जाए के गमत करे के बीरा हो गल बाना
0: चहला गमत करके ना।
1: अब गमत कर सर अब 10 11 बजे ले
0: 11 बजे ले।
1: हाँ।

0: दाल दिया कि तो
1: हम केकर खाती चाहते हो सब महेश परिवार के नाम
0: सब परिवार खातीन महेश परिवार नमुरी परिवार सब खाती दाल दिया
1: आली दाल दिया फिर क्या 11 बजे रेम के साथ दिया गमटवा चलती रही है रात
0: चलती रही हां चलती रही जब ले गमत चली तब ले चलती रही
1: हां जी बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद आपको
1: शुभ रात्रि तेरे हर माता जी के साथ देवतवन इंद्रासन से ढोलक मकर लागे को संजय बलग ओ बलमा की त्वच रात चला दो बलमा के गीत श्वेता बाबूलाल गैलेवन साथ में वन किशोर खेमिया ते वो खास इंसान के नाम है गीत ओ बलमा

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
4: रात के 10:05 हुआ था तो सुना तो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रात के 11 बजे ले अगला गीत तू ले ले नीरज कुप मधु गीत अकेले वन और एक गीत चलाओ खासम खास सब संगत्यारों के नाम जिन्हें विराट के नाइट शिफ्ट में काम करते हैं सर जैसे स्थाश्रमितियो बा पुलिस फोर्स बा अस्पताल बा क्लिनिक बा सौंदापेल बा जहाँ कहीं भी अभी तू काम करते हो तो थोड़ा बोलो चाहबों को आशा गीत तो हर नाम

रात के 10:20 हुआ था और तू सुना था भोजपुरी तड़का प्रोग्राम लाइव एमबीसी रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस पर। और बेशक एक से एक बेहतरीन गीत चलाता है बस तुलुक के नाम। और बोला चला कि कोई नहीं सकेला कोई के घामा बागे करी, घामा सब कोई खतिर हो गया। अगर तुहर भाग में कौन चीज बा, अगर तुहर भाग में बा कौन चीज बने के, अगर भाग में बा कौन चीज बाई के, लाख कोशिश करे इंसान तो लोग के घामा बारी करे के, पर कोई नहीं सकेला कोई की घामा बारी करे। ये हमेशा बतवा याद रखिया। और ऐसे ही उनके साथ देते रहिए रेडियो मोशन से जी मनोरंजन पर, और काजा देवी जो विद सैंक पर तो लोग के फोन कॉल्स और एसएमएस करके नंबर 52 51 70 05 52 51 70 05 पर तो लोग के एसएमएस। और अगला गीत था कहाँ छोड़ के, और है गीत जुनहा गई ले हवन शुभा रामचरण फकीर कहाँ छोड़ के। और गीत हमने चलावा था इस विनेश के नाम रेडन कैटरबोर। हाय विनेश जी, गीत और कहते तोर पत्नी तोर लेकालो के नाम। और एक गीत चलाते इस प्रेमिला जी के नाम, प्रेमिला बुबा सिंह के अवंजा बहुत बहुत प्यार के साथ प्रेमिला गीत और खाते। और रहे गाना जुन चौधरी काहे कहाँ छोड़ के है गीत चलावा तैसा वो सब संगतियारों के नाम जो घर पे अवंजा और अम्मी के प्यार से सुना था वन कहाँ छोड़ के।

0: इतना ऊपर मत चढ़ो कि उतारने वाला हो न कोई, ऐसे उड़ो नहीं नील गगन में कि थामने वाला हो न कोई।
1: कौपत हुए गे, कौपत हुए।
0: आग देखने वाला बहुत मिले पर बुझाने वाला एक ना मिले।
1: गीता पानी हगे पानी।
0: डराने वाला करोड़ मिले पर समझाने वाला एक ना मिले।
1: हम अकेले बस हैं चोर खातिर।
0: का बोले?
1: हम अकेले बस हैं चोर खातिर। हम अकेले।
0: का बोले? फिर से बोलता बोले। हम तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाना से गायला, याद बातों के तू तो अब ना शुरू कर ले हवे। हम तो शादी के पहले से गायला, तू तो शादी के बाद से।
1: हम तो जन्मते से गायला, जन्मते से।
0: तो के तो खूब बोली ना अपन माँ के पेट में से सुना तले। का बोला तू बोल, कुछ बा बोले के? तोर तक कान में कोई फूस फास बोला था बड़ा था, कोई कुछ नहीं बोला था। हम अकेले बस
1: शुरू करेला।

ट्विटर का प्रोग्राम चलाया रोज रात के लिंडी से लेकर दिमाग से रात के 9 बजे से 11 बजे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और दुनिया भर में के डॉक्टर लोग बोले लंसर की अच्छा स्वास्थ्य में खातिर जितना सब्जी जितना फल खाइबा वो अच्छा स्वास्थ्य खातिर ये खातिर देखे सा यूरोप में भी ढेर मना लोग आजकल वेजिटेरियनिज्म की ओर बढ़त हो जा और लेगिम जितना खाइबा वो अच्छा रास्ता होते कई बात सच है। और डॉक्टर अभी बोला बट के हमने के जो इंटेस्टाइन है जो हमने के लिए को में के अंतरे हतरे फा वो बनल बा ऐसे खाए के जो खाए सकल जाए पचाए कह के कोनो कोनो खाए के ढेर शरीर रहेगा तो वो लेटा ले बेला जिस जगह के पर लेगिम खाइबा तो निमन से डाइजेस्ट हो जा रहा तो लेगिम खाया से ढेर माना लावताज बाए तो स्वास्थ्य अच्छा रही और बेशक दूसर बार जीवन के एंजॉय करे पर जब स्वास्थ्य नहीं अच्छा रही तो कौन चीज एंजॉय कर बा। और अगला गाना जो है लाल चिरैया योगेश विनोद गैलियावन गीत सरिता जी के नाम सरिता होवन कैटोबोन से बहुत प्यार से हमके सुनत होवन और गीत चली ओकर सब परिवार के नाम हाय सरिता भाई अबू होवन वाकवा से कैसे भाई अबू सलाम वालेकुम अच्छा वना गीत और खाते तो हर सब परिवार के नाम राफिक मोहित होवन तायाक से रिहाना नोटरडाम से होवन के साथ होवत होवन आफिस होवन सैपिया से और बेशक मेहजबीन नौफ इब्राहिम साहब पोर्ट से उनके साथ देवत होन और इबकत ढेर संगठिया लोग उनके साथ देवतन थे कोई टीवी देखा था साथ में रेडियो भी सुना था तो चला अच्छी बात है। चाची ललिता कुशल वन थोरी से और चाची प्रभावती लोल नोवेल फ्रांस से चाचा आत्मा राम गीत हो नाम और जितना कोई उनके साथ होता है इस समय रात के वक्त रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर गीतों के नाम लाल चिरैया

0: जीवन में सब कुछ खोजबता सब कुछ नहीं मिली और प्लाटो में तक कोई चीज नहीं मिली रहा कोनो चीज पाए खातिर चेहला बहुत मेहनत करके प्रयत्न करके तब कोनो चीज मिली रहा अब देखा तू प्यासा हुआ थोड़ा चला रूबिने लेके जाके रूबिने अपन से चल के तो लगे थे नहीं आई सोचो वाला बात है और बेशक बड़ी ठंडा कर रहता है बखत में जानी ना सर और कहूँ कहूँ पर 13 degrees, 12 degrees, 11 degrees Celsius कर लगभग लोई हुई मन से होड़ लिया सुते जाए बखत कहे कि जो ठंडा है हड्डी हड्डी में हिलेला और जैसे 12 बज जला तो ठंडा उजला और हड्डी में हिला था तो ठंडा के दूर भगा सर अगला गीत के साथ गीता का चादर गावल गीत है मन के जीत और गीत चाहिए रामभाजी के नाम रामभाजी अवन स्विट्जरलैंड में और करती उनकी बेटी घरोला और जानकी परिवार गुडलैंड्स के संजय हरिचंद गीत और खातिर तो सब परिवार के अंत पत्नी संध्या तो और बेटी हुविष्का गीत और नाम चली और राजन साहब होवन कैटोभवन से उनके साथ देवत होवन और यहाँ पे राजन लक्ष्मण जी आप लोगों से होवन हेलो राजन जी शुभ नमस्ते
1: प्रणाम
0: भाई जी कैसे समाचार
1: ठीक है
0: बड़ी ठंडा कर रहा था आप लोगों में
1: बड़ी ठंडा
0: एक ही बोला कप कपी बोला आज के
1: समय हो तो भाई प्रताप जी
0: हाँ बोला
1: समय

0: अयोध्या के राज
1: आले समय रही था पास गीत क्लासिक गल बा आले तो नाम जोड़ दे अब जा राजन लक्ष्मण लाफलोगा से
0: तो परिवार
1: तो सब परिवार ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद का बोले तो हाँ हाँ भाभी यार दस मिनट में आठ मिनट में हाँ ताली शुभ रात्रि बहुत धन्यवाद जैसे बोली ठंडा के जो है चारों ओर है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम खासकर अरे लाफलोगा पगल मोहताबा लाफलोगा रिविया जिपोस गांव बासें क्यूपी फोरसाइड ये सब ठंडा के ठट है बढ़िया ठंडा कर जाता है जैसे बोली अब ठंडा वाके भगाप सा गीत के साथ गीता का चादर गावल गीता मन के मीच लग साथ सुने

यशवीर सरतन के गावल हरी गीत के संगे भोजपुरी तर का प्रोग्राम यह पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभिलियम के साथ राजा लोग फोन कॉल सुन के एसएमएस करते धन्यवाद शुक्रिया। 11 बजे सुन बचा अगला प्रोग्राम सुनहरी पल, फिर रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिर मित्र आने हमने की जरूर के मुला

पे आपका बिफे के बिफे 30 जुलाई कल हले थॉन्सुएट तक थॉन्सुएट की मिलाप सा सांस के 4 से 5 बजे रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही दिल से मिले दिल तक तक हमने की इजाजत और जी प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल नमस्ते।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और मैं हूँ आपकी अपनी आवाज़ गिनिशा। लेकर आई हूँ वो महफिल जहाँ यादें भी हैं, जज्बात भी हैं और पुराने बॉलीवुड गानों की वो मिठास जिसका कोई मुकाबला नहीं। शो का नाम है सुनहरे पल और हम चाहेंगे कि इस पल को हम खास बना दें आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

रात का ये वक्त कुछ खास होता है ना, दिन भर के ये भागदौड़ के बाद जब सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है तब दिल की आवाज़ थोड़ी और साफ सुनाई देती है। कभी किसी अपने की याद आ जाती है तो कभी बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं और कभी कोई पुराना गाना हमें एक पल में सालों पीछे लेके जाते हैं। तो आज रात बस अपने दिल को हल्का कर लीजिए, अपनी यादों को मुस्कुराने दीजिए और पुराने बॉलीवुड गानों के साथ इस खूबसूरत सफर का आप हिस्सा बन जाइए। हो सकता है अगला गाना आपका किसी खास इंसान की याद दिला दे या फिर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आए। तो बने रहे हमारे साथ सुनहरे पल में सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों कभी कभी हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अल्फाज नहीं मिलते है ना, अक्सर होता है ना हमारे साथ। और फिर अचानक रेडियो पर कोई पुराना गाना बजता है और लगता है जैसे उस गाने ने हमारे दिल की बात कह दी है। शायद इसीलिए पुराने बॉलीवुड गाने कभी पुराने नहीं होते। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, जिंदगी के रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन कुछ धुने और कुछ अल्फाज हमेशा दिल के पास रह जाते हैं। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारी तरफ से आपके नाम आपके इस खूबसूरत शो के अंदर हम लेकर आए हैं बहुत ही आपके प्यारे प्यारे बहुत ही फेवरेट गाने।

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से

आज की इस खूबसूरत रात में अगर आप किसी अपने को याद कर रहे हैं तो उनके लिए दिल से एक मुस्कान भेजिए और अगर वो आपके पास हैं तो उनकी अहमियत ज़रूर महसूस कीजिए क्योंकि ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल अक्सर वो होते हैं जिन्हें हम उस वक्त समझ नहीं पाते लेकिन बाद में यादों में संभाल कर रखते हैं मैं हूँ निशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर चलिए अब वक्त है एक और ऐसे गीत का जो शायद आपके दिल को छू जाए

उम्मीद करते हैं that you had a good day. और अगर नहीं तो हम हैं ना आप लोगों का साथ देने के लिए खूबसूरत खूबसूरत नगमे हम पेश कर रहे हैं ताकि आपकी होंठों पर हम मुस्कुराहट लेकर आए. बिल्कुल जी, थोड़ा स्ट्रेसफुल था अगर आज आपका दिन, तो आप बस भूल जाइए, आपको हम परेशान नहीं करेंगे. तो चलिए इस रात कुछ देर के लिए सब भूल जाते हैं, अपनी फेवरेट जगह पर आराम से आप बैठ जाइए. चाय पीनी हो या कॉफ़ी पीनी हो, एक कप ले लीजिए अपने हाथ में और पुराने बॉलीवुड गानों की इस महफिल में बस खो जाइए. क्योंकि सुनहरे पल सिर्फ गानों का शो नहीं है मेरी जान, ये उन यादों का सफ़र है जहां हर गाना हर गाने के साथ कोई चेहरा, कोई कहानी और कोई एहसास जुड़ा होता है. और आज रात में आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी चाहे जितने भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए.

तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला चलाते चलाते आपका आपके और हमारे बीच में फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाई टू यू। लेकिन ऑफ कोर्स वादा करते हैं कल रात को फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: I love you.

0: NBC Radio, your music companion.
1: श्री आर डी बर्मन जी हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
2: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है, पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आदाब जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है और गाना स्मूथली निकल गया। देखिए

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या

एक साथ धड़के हैं।